प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: संध्या सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे विधिमा, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नितुषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। पानी के गंभीर संकट के कारण कोंलोवियो, एमिटाज, कोंफुको और सैंपल के निवासी सड़कों पर उतर आए। 6 दिनों से पानी न मिलने और प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल को संभालने के लिए पुलिस और एसएमएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति को शांत करने और टैंकरों की व्यवस्था के लिए चुनाव क्षेत्र नंबर 15 की जूनियर मंत्री फौजे अलीमन और सांसद कुशल लुबिन रात भर मौके पर डटे रहे। मॉरिशस में सभी क्षेत्रों में प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल में चर्चा के बाद श्रम मंत्रालय ने इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए कंसल्टेंट्स के माध्यम से एक अध्ययन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विशेषकर आईसीटी, हॉस्पिटैलिटी और वितरण क्षेत्रों की विशिष्टताओं का आकलन करना है और अप्रैल 2027 तक एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना है, ताकि अगले कदम पर निर्णय लिया जा सके। ब्लैक रिवर में बानियानी स्क्वायर परियोजना के तहत एक पुराना बरगद काटने और कार्यकर्ता पर्सी यिपटोंग की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ गया है। सीनियर काउंसिल रामावलायदेन ने परमिट की प्रशासनिक जांच की मांग की है, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष केमराज ओतू का कहना है कि विकास कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया था और मामले की जाँच जारी है। आज सगायतों जुवाल का 96वां जन्मदिन है। पीएमएसडी के प्रवक्ता ओलिविए बॉब ने एक मानवतावादी और देशभक्त के रूप में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर आज शाम 6 बजे पोटवी नगर पालिका में पार्टी द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। गुरुवार 8 अक्टूबर को श्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसकी शुरुआत पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में हुई। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने फेसबुक पर एक संदेश के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने मॉरिशस और भारत के बीच मजबूत होते संबंधों पर प्रकाश डालते हुए श्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा और उनके नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने उनके सफल कार्यकाल, अच्छे स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुख समृद्धि की कामना की। 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस के अवसर पर मॉरिशस में डाक विभाग की ऐतिहासिक भूमिका और समाज व अर्थव्यवस्था को जोड़ने में इसके योगदान को याद किया जा रहा है। और विदेश में इंडोनेशिया में हफ्तों से भीषण जंगल की आग लगी हुई है, जिसका धुआं मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक फैल गया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह 5:44 पर सूर्योदय और शाम 6:10 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। News on NBC Play.

की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

0: प्रणाम शुभ प्रभात श्रोतागण घड़ी मिलाते चलिए इस समय सुबह के 6:05 हो चुके हैं इस शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 को साथ निभा रही है पूजा ये एमबीसी रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है श्रोताओं परिस्थितियां नहीं हमारी मनःस्थिति हमें दुखी या सुखी बनाती हैं अच्छी सोच सच्चे विचार और सरल व्यवहार ये तीन चीज़ें मिल जाएं तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से हिंदू महासभा की ओर से आइए श्रवण करते हैं आचार्य गिरीश की प्रस्तुति में
1: महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवं

प्रपद्ये श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हरिस्मरण के साथ हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्राइडे 9 अक्टूबर के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में। श्रोताओं, कल शनिवार 10 अक्टूबर को आश्विन मास की अमावस्या है, जिसको पितृपक्ष की पूर्णा होति अर्थात सर्व पितृ अमावस्या माना गया है, और उसके तुरंत बाद आरंभ होते हैं शारदीय नवरात्र का महापर्व। हम जानते हैं कि आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के स्मरण और श्राद्ध के लिए विशेष माना जाता है। इन दिनों हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अपने समस्त पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। और जब पितृपक्ष का अंतिम दिन आता है तब हम मनाते हैं सर्व पितृ अमावस्या। श्रोताओं, सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन उन सभी पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं है अथवा जिनका नियमित तिथि श्राद्ध किसी कारण से नहीं हो पाया। विशेष रूप से अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को दिवंगत हुए परिजनों के लिए इस दिन श्राद्ध करने की परंपराएं मिलती है। पूर्णिमा को दिवंगत हुए पितरों का महलय श्राद्ध भी पितृपक्ष की अमावस्या के दिन किया जाता है। इसी कारण इसे सर्व पितृ अमावस्या, महालय अमावस्या और कई परंपराओं में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है।

जाता है। यदि कोई परिवार पितृपक्ष के प्रत्येक तिथि पर अलग अलग श्राद्ध करने में समक्ष ना हो तो अपने सामर्थ्य और कुल परंपरा के अनुसार सर्व पितृअमावस्या के दिन अपने समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और तर्पण कर सकता है। इस दिन हम अपने उन पूर्वजों को भी स्मरण कर सकते हैं जिनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए किसी भी परिवार को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास मृत्यु तिथि की जानकारी नहीं है तो हम अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करके अपने नित्य कर्म पूर्ण करें, भगवान का स्मरण करें, अपने कुल आचार के अनुसार देव और पितृ तर्पण करें और पितरों के निमित्त अन्न वस्त्र अथवा यथाशक्ति दान करें। जहां संभव हो अपने कुल पुरोहित के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करें। यदि पिंडदान की अवस्था संभव ना हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करवाएं, अन्नदान करवाएं, जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें तथा पितरों के नाम से धार्मिक पाठ और सत्संग करवाना भी श्रद्धा और सेवा की भावना से किया जा सकता है। पितृपक्ष हमें अपने अतीत से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि आज हम जो कुछ है उसके पीछे हमारे माता पिता और अनेक पीढ़ियों का योगदान है। पितरों का ऋण संतान उत्पत्ति तथा श्राद्धों के द्वारा चुकाया जाता है। पितृपक्ष श्राद्ध के लिए निश्चित तिथियों का एक समूह है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्र आदि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध आदि की आशा से जाते हैं। यदि वहां उन्हें पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलते तो वह निराश होकर चले जाते हैं और उनकी वह निराश की भावनाएं हमारे लिए श्राप का कार्य बन जाते हैं। अथवा एकदम श्राद्ध का परित्याग ना करें, पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। जो पार्वन श्राद्ध ना कर सकें पितृ अमावस्या के दिन कम से कम पंच बलि अवश्य करें। पंच महाबली का मतलब होता है कि इन पांचों के लिए भोजन चराया जाता है, इन पांचों के लिए भोजन निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग गौ बलि करते हैं यानी गौ माता के लिए अन्न अर्पण करना। फिर उसके बाद श्वान बलि होता है यानी कुत्ते के लिए हम लोग अन्न अर्पण करते हैं। फिर उसके बाद होता है काग बलि, काग यानी चिड़िया या फिर कौवे के लिए हम लोग अन्न अर्पण करते हैं जिसे पितरों का प्रतीक माना जाता है। फिर एक होता है देव बलि यानी देवताओं के निमित्त हम लोग अन्न अर्पण करते हैं। और पांचवा आते हैं पिपलिका बलि यानी छींटी अथवा छोटे जीव जंतुओं के लिए हम लोग अन्न अर्पण करते हैं। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः का स्वभाव है, हम लोग इस आधार पे चलते हैं। तो जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं तो उसमें केवल मनुष्य नहीं आती अपितु प्रकृति एवं पशु पक्षी भी आते हैं। इसलिए यहाँ पंच महाबली हम उन सब के प्रतीक अन्न अर्पण करते हैं। श्रोताओं, पितृपक्ष की पूर्णाहुति के साथ ही हमारे धार्मिक जीवन की एक नया और अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक पर्व आरंभ होता है, शारदीय नवरात्र। 2026 यानी इस साल जो है मॉरिशस में यह सर्व पितृ अमावस्या 10 अक्टूबर शनिवार को होगी और उसके अगले दिन 11 अक्टूबर संडे 11 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ होगी। इसी दिन घट स्थापना अथवा जैसे कहें कलश स्थापना की जाती है। शारदीय नवरात्र को सभी नवरात्रियों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी कारण इसे हम महानवरात्र भी कहते हैं। यह नवरात्र शरद ऋतु में आते हैं इसलिए शारदीय नाम भी शरद ऋतु से ही संबंधित है। इन 9 दिनों में हम आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों नवदुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्र

केवल व्रत रखने का पर्व नहीं है, यह शक्ति की साधना, आत्मसंयम, भक्ति, जप, ध्यान और आत्मशुद्धि का पर्व है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंदमाता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। नवदुर्गा के प्रत्येक स्वरूप की अपनी विशेष महिमा है और भक्त अपनी श्रद्धा तथा कुल परंपरा के अनुसार माँ को विभिन्न प्रकार के नैवेद्य भोग अर्पण करते हैं। लोकप्रिय धार्मिक परंपरा में इन नौ दिनों के लिए कुछ विभिन्न विशेष भोगों का भी उल्लेख मिलता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आने वाले नवरात्रियों में प्रत्येक दिन आप यह भोग माँ को अर्पण अवश्य करें। प्रथम दिन हम लोग माँ को देसी घी का भोग लगाते हैं, दूसरे दिन शक्कर का, तीसरे दिन खीर का, चौथे दिन मालपुआ, पांचवें दिन केला, छठे दिन शहद, सातवें दिन गुड़, आठवें दिन नारियल और नवें दिन तिल अर्पण करने की परंपरा बताई गई है। इन भोगों का उद्देश्य केवल भोजन अर्पित करना नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा और भक्ति को माँ के चरणों में समर्पित करना है। श्रोताओं, नवरात्र के पहले दिन घर में अथवा मंदिरों में कलश स्थापना अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। स्वच्छ स्थान पर वेदी तैयार करके अपने कुलाचार अनुसार कलश स्थापना की जाती है। कलश में जल भरकर आम के पल्लो, नारियल आदि स्थापित किया जाते हैं और माँ भगवती का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापना के साथ हम संकल्प लेते हैं कि अगले नौ दिनों तक हम अपनी शक्ति के अनुसार माता की आराधना करेंगे, जप करेंगे, व्रत करेंगे, दुर्गा सप्तशती अथवा अन्य देवी स्तोत्रों का पाठ करेंगे और अपने मन, वचन और कर्म को अधिक से अधिक पवित्र रखने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के लिए पूर्ण उपवास संभव नहीं है वे अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार फलाहार अथवा सात्विक आहार लेते हुए माता की आराधना कर सकते हैं। भक्ति का मूल आधार शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि मन की श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण है। श्रोताओं, पितृपक्ष हमें अपने पूर्वजों के याद दिलाती है और नवरात्र हमें आदि शक्ति की आराधना की ओर ले जाती है। एक ओर हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और दूसरी ओर माँ भगवती से शक्ति, ज्ञान, साहस और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। यही सनातन धर्म की सुंदर परंपरा है। पूर्वजों का सम्मान, देवताओं की उपासना और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार। आइए सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक नमन करें और उसके अगले दिन शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे माँ भगवती, आप समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। माँ दुर्गा, हम सभी के परिवार में सुख, शांति, आरोग्य, सद्बुद्धि और धर्म की भावना प्रदान करें। हमारे घरों में भक्ति की दीप जलता रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सनातन संस्कारों से जुड़े रहें और सर्व पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर हमारे सभी पितरों को भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हो तथा उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है हम इसको विराम की ओर लेके चलते हैं। अपनी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को सर्व पितृ अमावस्या की श्रद्धापूर्ण शुभकामनाएं और आगामी शारदीय नवरात्रि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं।

0: सबों का अनुष्ठान सफल हो, इस भावना के साथ आज की कार्यक्रम को विराम दूं। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से पिछड़े काफ़े के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर पिछड़े काफ़े मसेश एआउआस्तोरों और मोमास्काल और काजा जुला के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 11 अक्टूबर 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

6:21 हो चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर कार्यक्रम जारी है और श्रोताओं, कहा जाता है कि शांतिपूर्ण मन ही हमें सच्ची खुशी देता है, इसीलिए शांतिपूर्ण मन रखिए। आइए इसी के साथ आनंद फिल्म से मुकेश जी की आवाज़ में इस सुंदर गीत को हम सुनते हैं और जो भी लोग अभी सुबह सुबह साथ दे रहे हैं उन सभी का स्वागत है।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

6:25 हो चुके हैं और श्रोताओं, कहा जाता है कि जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। आइए साथ रहिए, 6:30 आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक आप सभी को शुभ शुक्रवार। ज्ञान वो प्रकाश है जो हर अंधकार, जिसे हम भ्रम कहते हैं, उसे भी मिटा देता है।

0: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पानी के गंभीर संकट के कारण कॉलोव्यू, एमिटाज, कॉम्फुको और सैंपोल के निवासी सड़कों पर उतर आए। 6 दिनों से पानी न मिलने और प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल को संभालने के लिए पुलिस और एसएमएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति को शांत करने और टैंकरों की व्यवस्था के लिए चुनाव क्षेत्र नंबर 15 के जूनियर मंत्री फौजी अलीमन और सांसद कुशल लुबिन रात भर मौके पर डटे रहे। मॉरिशस में सभी क्षेत्रों में प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल में चर्चा के बाद श्रम मंत्रालय ने इसकी व्यवहार्यता की जांच के लिए कंसल्टेंट्स के माध्यम से एक अध्ययन शुरू किया है। ब्लैक रिवर में बनियानी स्क्वायर परियोजना के तहत एक पुराना बरगद काटने और कार्यकर्ता पर सी यिपटोंग की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ गया है। सीनियर काउंसिलर रामा वालादे ने परमिट की प्रशासनिक जाँच की मांग की है। आज सगाई तोंजुवाल का 96वां जन्मदिन है। पीएमएसडी के प्रवक्ता ओलिविया बर्ब ने एक मानवतावादी और देशभक्त के रूप में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर आज शाम 6 बजे पोटवी नगर पालिका में पार्टी द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन। 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस के अवसर पर मॉरिशस में डाक विभाग की ऐतिहासिक भूमिका और समाज व अर्थव्यवस्था को जोड़ने में इसके योगदान को याद किया जा रहा है। और विदेश में इंडोनेशिया में हफ्तों से भीषण जंगल की आग लगी हुई है, जिसका धुआं मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक फैल गया है। पानी के संकट को लेकर तनाव बना हुआ है। कल शाम कॉलोव्यू, एमिटाज और कॉम्फुको के निवासी पानी की आपूर्ति में समस्याओं का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सड़कों के अवरुद्ध होने, वस्तुओं में आग लगाई जाने और तनावपूर्ण माहौल के कारण पुलिस और स्पेशल मोबाइल फोर्स को हस्तक्षेप करना पड़ा। सैंपल में भी गुस्सा बना हुआ है। कुछ निवासियों का कहना है कि वे लगभग 6 दिनों से पानी से वंचित हैं और उनके अनुसार वे अभी भी पानी के टैंकरों के आने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव क्षेत्र नंबर 15 से चुने गए जूनियर मंत्री फौजी अलीमन और उनके सह उम्मीदवार सांसद कुशल लुबिन स्थिति को शांत करने और पानी के टैंकरों की व्यवस्था करवाने के लिए पूरी रात लगभग सुबह 3 बजे तक स्थल पर डटे रहे। मॉरिशस के सभी क्षेत्रों के लिए प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करने का विचार विचाराधीन है, लेकिन इसे अमल में लाने पर अभी अध्ययन किया जाना बाकी है। सरकारी कार्यक्रम में शामिल इस मामले पर पहले ही नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल में चर्चा की जा चुकी है, विशेषकर आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाओं के मुद्दे पर। श्रम प्रतिनिधि चाहते हैं कि इस कदम को सभी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए, इसलिए श्रम मंत्रालय ये निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन शुरू कर रहा है कि क्या ये वास्तव में संभव है, विशेष रूप से आईसीटी, हॉस्पिटैलिटी और वितरण क्षेत्रों में जहां उत्पादकता और कार्य संगठन से संबंधित बाधाएं अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए कंसल्टेंट्स को प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताओं की जांच करनी होगी, संभावित कठिनाइयों की पहचान करनी होगी और ये निर्धारित करना होगा कि किन शर्तों के तहत 40 घंटे का कार्य सप्ताह लागू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अगले कदमों पर निर्णय लेने से पहले अप्रैल 2027 तक एक व्यापक मूल्यांकन तैयार करना है। श्रम मंत्रालय से सीनियर एडवाइजर जूही देसाई इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं। उनसे बात की आशी बाचू ने, विवरण गीता सुनारायण का है।
1: Les représentants d'employeurs ont aussi fait une représentation qui nous bien n'est pas considéré essentiel non essentiel.
2: Malik Varg ke pratinidhiyon ne presentations kiye, sirf zaruri aur gair zaruri baaton par dhyan nahi dena chahiye balki ye bhi dekhna chahiye ki aarthik roop se kaun sa sector zyada nazuk hai. Vitt mantralay ke sujhav bhi

0: मिले जिसने एक फिजिबिलिटी स्टडी करने को कहा है ताकि अर्थव्यवस्था के और सामाजिक प्रभावों का पता चल सके और सेक्टरों पर क्या असर होगा। इसके बाद हमने एक कंसल्टेंट के लिए एक टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस जारी किया जो एक फिजिबिलिटी स्टडी करेगा ये देखने के लिए कि सप्ताह में 40 घंटे काम करना सभी सेक्टरों में लागू कर सकते हैं या नहीं, या अगर ऐसा नहीं हो सका तो कौन से सेक्टर में इसे लागू कर सकते हैं, सरकार को कौन से कदम उठाने होंगे, क्या कुछ सेक्टरों को समर्थन देना होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कई अन्य प्रश्न हैं, कंसल्टेंट को हमारी मदद करनी पड़ेगी।
1: question qui nous mettait dans nos terms of reference qui consulte en impôts bien aide nous.
2: ब्लैक रिवर में बनियानी स्क्वेयर परियोजना के निर्माण स्थल पर 100 साल पुराने बरगद के पेड़ को काटे जाने और कार्यकर्ता पर सीयिप टोंग की गिरफ्तारी के बाद ये मामला एक नया मोड़ ले रहा है। सीनियर काउंसलर रमा वालेदे ने पेड़ काटने के परमिट दिए जाने की प्रशासनिक जांच की मांग की है, जबकि दूसरी ओर पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने प्रोमोटर से स्थल पर मौजूद बाकी 5 पेड़ों को संरक्षित करने का आश्वासन प्राप्त कर लिया है। ये मामला कृषि उद्योग के अंतर्गत आने वाले वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में भी आता है। वकील रामा वालादेन को सुनते हैं जिनसे बात की शैली बन्नी।
3: C'est très très grave qu'il arrive, c'est qu'il nous donne pays. Quand là, un moment qu'on peine à l'appli, nous tout conscient qui pied joue un grand rôle dans attirer l'appli. Mais malheureusement, ben des gens qui pas connent notre rôle qu'on a besoin, c'est-à-dire ministère de l'Agriculture, Forestry Department, ils donnent l'ordre à un groupe privé pour couper un pied qui puisse qui s'en tenir. Un pied bagnant, non seulement il est bon pour l'environnement, deuxièmement, nous tout connaît, il y a tiers oiseaux, les oiseaux font de ta case. Troisièmement, nous connaît aussi qui beaucoup d'hindous prennent sa place là pour prier et faire ben, une cérémonie. Et mon envoyé une lettre, ministre Bagwan, mon cause après l'eau au téléphone, et il dit à moi que je vais mettre un comité interministériel entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture pour capable s'il y a un changement dans la loi qui peut amener et m'espérer une chose bouger dans la direction.
2: दूसरी ओर ब्लैक रिवर जिला परिषद के अध्यक्ष केमराज ओतू का कहना है कि सतर्क किए जाने के बाद उन्होंने निर्माण स्थल की जांच करवाई थी। उनके अनुसार इस परियोजना से जुड़ी अनुमतियों के संबंध में जिला स्तर पर एक जांच की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से 2021 में जारी किए गए एक परमिट और 2023 में हुई एक कानूनी चुनौती का जिक्र किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि अंततः प्रोमोटर को विकास कार्य रोकने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। इन तथ्यों की पुष्टि संबंधित अधिकारियों द्वारा की जानी बाकी है, उनको सुनते हैं।
4: Bon, inspecteur fin a fait une visite, il constatait que effectivement et développement fin commencé, tout de suite mon fait une enquête au niveau district council, mon guité quand il fin gagne sur billet du pays et quand il supposé commencer parce qu'il quand il gagne billet du pays, il partit de mon présidence, il gagne billet du pays en 2021 et en 2023, quand les finances disent bon, bien loupé, bien valide. Et alors, les supposés, d'après la loi, et quand on gagne bien loupé, auparavant, avant 2025, on gagne 10 ans pour commencer au projet, maintenant les 3 ans, et l'État m'a fait l'enquête, valait 10 jours, so bien loupé n'est plus valide. Et les typisins commencent au projet et arrivent 6 mm. Et moi, je fais une décision, c'est bien une notice qu'il est besoin de tout ce développement.
2: बुधवार 7 अक्टूबर से भावी लाभार्थी स्टेट एज पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल गुरुवार 8 अक्टूबर शाम 4 बजे तक प्लेटफॉर्म musab.gov.mu.org पर लगभग 1000 आवेदन दर्ज किए जा चुके थे। सामाजिक सुरक्षा मामलों के जूनियर मंत्री कुगान पहापेन का कहना है कि मंत्रालय को लगभग 20,000 ऑनलाइन आवेदन मिलने की उम्मीद है। वे स्पष्ट करते हैं कि ये नई व्यवस्था जिसके तहत 1 जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन मिलना शुरू होगी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जो इस साल 60 वर्ष के हो रहे हैं। आवेदन उनके 60 वर्ष के होने से 3 महीने पहले किया जाना चाहिए। जो लोग पहले से ही रिटायरमेंट पेंशन का लाभ उठा रहे हैं उन्हें कोई नया आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कुगान पहापेन ने यह भी कहा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 15 मिनट का समय लग सकता है। वे कल फ्रेंच समाचार बुलेटिन के दौरान हमारे सहयोगी दैविक राजकुमार के सवालों का जवाब दे रहे थे, उनको सुनते हैं।
5: Un ajustement qui n'a mené le budget 2026 par rapport à la réforme de la pension. Il y a 3 possibilités par rapport à la pension. Soit vous décidez de prendre une pension à l'âge qui n'est prescrit par la loi, c'est un qui appelle pension age, et c'est un qui peut être relevé progressivement de 60 à 65 ans. Zorosien Zimoun qui est né en octobre 1966, ce pension age, c'est à l'âge de 62 ans. Donc, les Tibisins atteignent octobre 2028. Il est capable à 62 ans gagner ce full SRP.

0: Mais seulement, il y a la possibilité, s'il y a envie, en janvier même, il y a des propres octobre 2028, il y a envie de prendre sur SAP en janvier. Et s'il y a envie de faire dire, l'application est déjà ouverte, il vient commencer à soumettre sur une application. Mais par contre, s'il y a envie d'atteindre octobre 2028, ce n'est pas maintenant qu'il est soumette sur l'application, c'est 3 mois avant octobre 2028 qu'il est soumette sur l'application.
1: Julien Ministre, place à une démonstration.
2: 18वें यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट में 2 महीने से भी कम समय बचा है. ऐसे में मॉरिशस में तैयारियां तेज हो गई हैं. कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका इस सप्ताह अपना दूसरा तकनीकी दौरा कर रहा है. कार्यक्रम सहभागिता, सुरक्षा, कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल आगामी 6 से 9 दिसंबर तक SBICC में होने वाले इस बड़े आयोजन से पहले हर चीज की बारीकी से समीक्षा की जा रही है. सरकार का कहना है कि वे अंतिम चरणों में प्रवेश कर चुकी हैं, जबकि सम्मेलन केंद्र में अभी भी काम चल रहा है. मध्य अफ्रीका में इबोला वायरस के प्रकोप के कारण जुलाई से दिसंबर तक के लिए स्थगित किए गए इस शिखर सम्मेलन में लगभग 3,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है. मंत्री रितेश रामफल को सुनते हैं.
3: Le sommet était supposé être en juillet, ça a été renvoyé pour décembre à cause de l'évolution des Ebola. Mais Moka Diao qui nous en contact permanent avec WHO, son représentant à Maurice, pour suivre l'évolution de Ebola. Pour le moment, on n'a pas de restriction sur DRC, mais nous prenons mal mesure qui bien prend dans l'éventualité une aggravation de sa épidémie. Moka Diao que nous presque prêts pour nous capables entamer une dernière étape, le sommet qui le du 6 au 9 décembre.
2: लेकिन मॉरिशस में सरकार आर्थिक लाभ चाहती है. अमरीकी निवेशकों को आकर्षित करना, जॉइंट वेंचर्स स्थापित करना और अफ्रीकी बाजारों के लिए खुद को एक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना. पिछला उदाहरण बहुत बड़ा है. लुआंडा में आयोजित 2025 के संस्करण में लगभग 2,800 प्रतिभागी एकत्र हुए थे और $4 बिलियन से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट्स और निवेश प्रतिबद्धताएं उत्पन्न हुई थी. और सितंबर से अगवा को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अमरीकी बाजार में निर्यात करने वाले की निर्यातकों को अधिक स्पष्टता और स्थिरता मिली है. मंत्री आदिल आमियामिया को सुनते हैं.
4: C'est une opportunité pour nous attirer un investisseur et un businessman américain qui peut venir investir pas seulement en Afrique, mais aussi et surtout à l'île Maurice. Donc nous nous préparons nous pour faire un joint venture côté capable un américain investi à l'île Maurice, mais aussi côté nous secteur financier car jouer un rôle prépondérant, ce qu'on appelle un gateway to Africa. Mon investissement channel à travers l'île Maurice par en Afrique. Comme nous connaissons, Maurice, c'est une plateforme financière de réputation internationale et nous donne une économie stable. Nous avons ce qu'on appelle rule of law, nous avons un système légal hybride et nous designons un traité de non-double imposition à travers beaucoup de pays.
2: गुरुवार 8 अक्टूबर को श्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसकी शुरुआत पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में हुई. इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने फेसबुक पर एक संदेश के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी. उन्होंने मॉरिशस और भारत के बीच मजबूत होते संबंधों पर प्रकाश डालते हुए श्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा और उनके नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने उनके सफल कार्यकाल, अच्छे स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुख समृद्धि की कामना की. सगायतों चुवाल यदि जीवित होते तो इस शुक्रवार 9 अक्टूबर को अपना 96वां जन्मदिन मनाते. पर्सी मॉरिशियन सोशल डेमोक्रेट PMSD के पूर्व नेता का 1996 में निधन हो गया था, लेकिन वे आज भी कई मॉरिशस वासियों के दिलों में बसे हुए हैं. PMSD के प्रवक्ता ओलिविए बॉब के अनुसार सगायतों चुवाल एक मानवतावादी और देशभक्त दोनों थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के पूर्व नेता ने मॉरिशस गणराज्य के इतिहास में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है. इसके अलावा PMSD द्वारा इस शुक्रवार को शाम 6 बजे पोटवी नगर पालिका में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में मॉक हैन, बेनो सामिनादेन, सेरी शातू और जायद नानहक सगायतों चुवाल के जीवन और उनके सफर पर अपने विचार रखेंगी. पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल आज दोपहर अपने अडोप्टिव पिता की मूर्ति के सामने पुष्पांजलि अर्पण समारोह का नेतृत्व करेंगे. ये समारोह शाम 4:30 बजे क्यूपिप नगर पालिका के प्रांगण में आयोजित किया जाना है. किशोर जुवाल का कहना है कि जब भी सगायतों जुवाल का नाम लिया जाता है वे भावुक हो जाते हैं. वे इस राजनीतिक हस्ती के सफर को याद करते हुए मानते हैं कि युवा पीढ़ी उनके इतिहास और विरासत के बारे में बहुत कम जानती है. मंत्री विशेष रूप से मॉरिशस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और फ्रीपोर्ट के विकास में सगायतों जुवाल के योगदान को रेखांकित.

0: करते हैं, उनको सुनते हैं जिनसे बात की राजमिला सीतामणि ने।
1: सर गायतों जुवाल को पर्यटन क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उनके कार्यों से मुझे प्रेरणा मिली। आज जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे उनसे मार्गदर्शन मिला। आज मैं उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जिनमें मानवता की भावना भरी हुई थी। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई गरीब लोगों की मदद की। मॉरिशस और रोड्रिग्स के लोग उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। वे एक एकजुट मॉरिशस में यकीन करते थे। वे एक सच्चे देशभक्त थे, एक अद्वितीय मॉरिशन थे।
0: नौ अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। मॉरिशस में डाक विभाग ने हमेशा राष्ट्र के जीवन में एक विशेष स्थान रखा है। पहली चिट्ठियों और पोस्टकार्ड से लेकर आज की आधुनिक सेवाओं तक इसने हमारे समाज के बड़े बदलावों में साथ निभाया है। पीढ़ियों तक डाकिया परिवारों, दोस्तों, व्यवसायों और उनके प्रियजनों के बीच की कड़ी रहा है, जो कभी कभी मीलों दूर अलग रहते थे। इन वर्षों में आबादी की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी सेवाएं और भी विविध हो गई हैं। अधिक जानकारी उर्वशी भिखारी और गीता सुनारन के साथ।
2: 1772 से डाक सेवा मॉरिशस के इतिहास और विकास का हिस्सा रही है। फ्रांसीसी शासन के दौरान शुरू हुई मॉरिशस पोस्ट देश की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। दो सदियों से ज्यादा समय में डाक सेवा ने मॉरिशस के समाज के साथ खुद को बदलते हुए केवल चिट्ठियां पहुंचाने की सेवा से आगे बढ़कर नई आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी जरूरतों के अनुसार कई सेवाएं शुरू की हैं। मॉरिशस पोस्ट के CEO अनिल सिरतन के अनुसार ये बदलाव हर पीढ़ी के साथ खुद को नए रूप में ढालने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि जनता की सेवा उसका मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। 250 से ज्यादा साल हो गए हैं। लोग जब डाकघर में पार्सल लेने जाते हैं तब पता चलता है कि उन्हें डाकघर पर विश्वास है। ये न सिर्फ चिट्ठियाँ बांटता है बल्कि ये लोगों, समुदायों, बिजनेस और देशों को जोड़ता है। 150 रुपए का टैक्स हम पर लगाया गया है जिसका 43% प्रभाव हम पर पड़ रहा है। मॉरिशस पोस्ट के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट डॉक्टर जयराज इतु का कहना है कि समय के साथ डाक सेवा केवल चिट्ठियां पहुंचाने वाली संस्था नहीं रही। इसने लगातार बदलती आबादी की जरूरतों के साथ साथ नई आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला है। आज ईमेल और टेक्नोलॉजी से खबर देते हैं। डाकघर ई कॉमर्स की ओर बढ़ रहा है। अमेज़न आया है, घर पर पोस्टमैन डिलीवरी करने जाते हैं। इससे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लोगों को डाकघर नहीं आना पड़ता। डाकघर के लिए ई कॉमर्स को एक नींव बनाना चाहिए।
0: विश्व डाक दिवस का ये दिन 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। डाक सेवाएं न केवल पत्रों और पार्सल को वितरित करती हैं बल्कि ये दुनिया भर के लोगों और व्यवसायों को जोड़कर सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस दिवस का उद्देश्य आम जनता और मीडिया के बीच डाक क्षेत्र की भूमिका और गतिविधियों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। गीता सुनारायण।
2: डाक सेवा का इतिहास काफी पुराना है। एक समय था जब लोगों के बीच संदेश पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद माध्यम चिट्ठियां और डाक होती थीं। दूर दराज रहने वाले परिवारों, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच संपर्क बनाए रखने में डाक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के डिजिटल दौर में ईमेल, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने संचार को बहुत तेज बना दिया है। इसके बावजूद डाक सेवाओं का महत्व कम नहीं हुआ। चिट्ठियों के अलावा आज डाक विभाग पार्सल्स, दस्तावेज, वित्तीय सेवाएं और कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। विश्व डाक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि डाक सेवा केवल पत्र पहुंचाने का माध्यम नहीं है बल्कि ये समाज के विभिन्न वर्गों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये दिन डाक कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने का भी अवसर है जो हर दिन हजारों पत्रों और पार्सल्स को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। विश्व डाक दिवस संचार, सेवा और लोगों के बीच जुड़ाव के महत्व को दर्शाता है।
0: और विदेश में इंडोनेशिया के कई हिस्सों में हफ्तों से जंगल की आग लगी हुई है जिससे धुआं पूरे देश के साथ साथ पड़ोसी देशों मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस

तक फैल रहा है। इस साल का जंगल की आग का मौसम इंडोनेशिया के सबसे खराब मौसमों में से एक है और इसका मुख्य कारण किसानों और कंपनियों द्वारा वनस्पति को साफ करने के एक सस्ते तरीके के रूप में अपनाई जाने वाली अवैध स्लैश एंड बर्न प्रथा है। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 5:44 पर और शाम 6:10 पर सूरज ढल जाएगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम यूसुफ को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय सुबह के 6:50 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC+.

लीजिए शोक समाचार सुनिए। स्कूल इन लविनिया सेंपिया में 82 साल के 82 years old की श्री हरिदत्त रामबरन, जो गुरुजी नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी विमला रामबरन के घर स्कूल इन लविनिया सेंपिया से उठाकर कॉन्स्टेंस सेंपिया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। ब्रांच रोड खुशनुआ में 85 साल के 85 years old के श्री मणिक चंद जिंगरी, श्री मणिक चंद जिंगरी, जो मणिक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे खेमराज जिंगरी के घर ब्रांच रोड खुशनुआ से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। काली लेन बॉम्बू में 77 साल के 77 years old के श्री लक्ष्मी नारायण अल्होदा, जो देवदास नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके बेटे प्रवेश आलोहर के घर काली लेन बॉम्बू से उठाकर मोहताए सेंपिया बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30। सीते बालीसों रोजबेल में 76 साल की 76 years old की श्रीमती वसंती देवी नितुरिया, पैदाइशी नाम दुखी और जो बसंती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे राजेश नितुरिया के घर सीते बालीसों रोजबेल से उठाकर महेशानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। सेट क्वाजे ट्रूडोडूस में 52 साल के 52 years old के श्री विनोद अंगुतिया, जो सुंदर नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके भाई आत्मानंद अंगुतिया के घर सेट क्वाजे ट्रूडोडूस से उठाकर बोशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30। आपानालीन शामुनी में 75 साल के 75 years old के श्री मर्दे कतों, जो वासेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर आपानालीन शामुनी से उठाकर कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। लाशापेल ओडोंट एलियनसन स्ट्रा रोड बुबासे में 85 साल के 85 years old के श्री मोहन माधु, जो मोहन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे लाशापेल ओडोंट एलियनसन स्ट्रा रोड बुबासे से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। ब्लॉक 2B01 NHDC बोवालो में 46 साल के 46 years old के श्री गजानन भुजावन, जो विशेष नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती आलती बुझावन के घर ब्लॉक 2B01 NHDC बोवालों से उठाकर तोंबोलेन मेबर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रंगो रोड रोशनो में 50 साल के 50 years old के श्री महेन सुकिरा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर रंगू रोड खुशनुआ से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM।

इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। 5 मैचों के इस T20 सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। ये मैच रांची में खेला जाएगा। और मॉरिशस की महिला फुटबॉल टीम लेडी डोडो की कल हार हुई 3-0 से गाना

0: को आखा में रिटर्न लेग का मैच होगा। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: pranam, namaskar. A very good morning to all of you. 7:05 हो चुके हैं और इस शुक्रवार को साथ निभा रही है पूजा. सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं. श्रोताओं, मनुष्य क्यों डरता है जिंदगी में कि क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा अवश्य होगा, अनुभव अवश्य होगा, और इसी अनुभव से आप और भी मजबूत होते जाएंगे. आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से. आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर शांति मुहाबियर जी की प्रस्तुति में.
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति. आइए सुनते हैं आज का चिंतन.
2: मानव जीवन में ही चारों युग समाया हुआ है. सोते रहना घोर कलयुग है, हाथ पैर हिलाना द्वापर युग है, उठकर बैठ जाना त्रेता युग है, और चल पड़ना सतयुग है. परिश्रमी व्यक्ति परिश्रम से अपने जीवन में सतयुग उतार लाता है.

चलिए, अब वक्त हो चला है आपको उस दौर में ले चलने का जहाँ पर फिल्में जो हैं रंगों के मोहताज नहीं थे, जब फिल्में ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, मगर उनकी कहानियाँ में जज्बातों के हज़ार रंग हुआ करते थे। ना आज जैसी चमक धमक, ना टेक्नोलॉजी का इतना कमाल, फिर भी कहानियाँ दिलों में उतर ही जाती थी और गीत जिंदगी के वो अनमोल लफ्ज समझा देते थे जहां पर इंसान अपने आप को ही भूल जाता है। वो दौर जब अल्फाजों में गहराई थी, आवाजों में मिठास थी और गीतों सिर्फ सुनने की नहीं महसूस किया किए जाते थे। और जब बात उस सुनहरे दौर की वो समय था, तो सैगल जी को हम कैसे भूल सकते हैं। उनका ये गीत जो बीत चुकी सो बीत चुकी हमें एक खूबसूरत पैगाम देता है कि गुजरे हुए कल को यादों में रखिए, मगर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने का मौका भी दीजिए। तो आइए आज की सुबह को सजाते हैं गुजरे हुए कल की मीठी यादों के साथ, उसी सुनहरे दौर के एक सदाबहार गीत के नाम। और जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है। 7:13 हो चुके हैं, सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। कहा जाता है ना, जो लफ्ज नहीं कह पाते ये गीत कहे जाते हैं।

कहते हैं बातें भूल जाती हैं, हम भूल जाते हैं बातों को, पर गायक की वो आवाज कभी नहीं भुलाया जाता। भले ही वो आज हमारे बीच ना रहे, परंतु उनके गीत आज भी उतने ही सुनहरे हैं, उतने ही प्यारे हैं जितने कि कल थे। आज भी लोग जब भी ये गीत सुनते हैं तो अपने पुराने दौर की वो समय याद करते हैं। तो चलिए एक और सुंदर सा गीत शमशाद बेगम जी की आवाज़ में।

0: ये पुराने दौर के गीत केवल गीत ही नहीं थे, हमारी जिंदगी के वो सार थे जो कुछ ना कुछ अवश्य कुछ ना कुछ कहानियां लेकर आते थे। हमारी इस जिंदगी से लेकर ही कुछ पन्ने और कुछ किस्से। तो आइए एक और सुंदर सा गीत लता जी और मुकेश जी की आवाजों में, इचक दाना बीचक दाना। और साथ निभा रही है अनीता खिदनी जी,
1: बीचक दाना दाने ऊपर दाना।
0: आपका स्वागत है।

0: बूम
1: हम
2: फिल्म है मेला और मुकेश जी और शमशाद बेगम जी दोनों मिलकर डुएट कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं मैं भावरा तू है फूल। और अभी साथ निभा रहे हैं अंगिरा दुबलाल जी। नमस्ते दादा जी, आपको हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ में है नीता खिदनी जी, दोनों बीमार ही हैं पर साथ निभा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना भी करते हैं। मौसम बदल रहा है इसीलिए सर्दी जुकाम तो होते ही रहते हैं, पर अपने आप का ख्याल रखना भी आवश्यक है। शांति सुकारी जी हैं, शांता सुकारी जी हैं और वो भी साथ निभा रही हैं। गायत्री जी हैं नुवेल फ्रांस से, कमला जी हैं, कमला दीनू जी प्यारी आरोही और आशा जानू जी हैं उनकी मामा कुमारी और उनके पूरे जानू परिवार के नाम। और साथ में हैं लक्ष्मी जी बॉम्बू से, आप सभी का दिल से स्वागत है। सुरेश जी हैं मोतालोंग

0: MRIP et Infom ban contribuable individuel qui prend offert au return income tax pour ça l'année là qui deadline c'est le 15 octobre. Pas tarder, allo site web MRI www.mri.mu, clique le e-filing season 26 et suive ban instruction. Ou bien aide, prend un rendez-vous, le e-appointment, un officier MRI pour aide ou remplir au return à travers un WhatsApp video call. Et puis, si vous soumettez ou return au plus tard le 10 octobre, ou pour éligible pour un tirage au sort, côte ou capable gagne un des 5 cash prizes de 25 000 roupies. Pas attendre dernier l'air, faire ou return income tax au plus vite.
1: Subhaga Nazrana, Lai Khushya Hazar, Radio Mauritius Bird.
2: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से विलाज डे मेलरोज, खासतौर पर रेजिडेंस अगाते, मो सेलमेंट मो प्लेजिर, एनएचडीसी मेलरोज, रू डे लिकोल, मो सेलमेंट कोऑपरेटिव मेलरोज और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 को सुपहर के 3:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, यह है रेडियो मॉरिशस।

दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कई सितारे आते हैं अपनी चमक बिखरने और वक्त के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शख्सियत ऐसी होती है जो सिर्फ पर्दे पर अपनी पहचान नहीं बनाती, बल्कि अपने किरदारों, अपनी आवाज़ और अपने अंदाज से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही कलाकार की जिनकी आंखों में गुस्सा भी नजर आता था, अल्फाजों में आग भी और खामोशी में भी एक पूरी कहानी छुपी होती थी। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर जी के। एक ऐसा नाम जिससे किसी बड़े फिल्मी अंदाज की ज़रूरत नहीं थी। उनकी आवाज़, उनका चेहरा और उनका अभिनय ही उनकी सबसे बड़ी पहचान था। भले आज हमारे साथ नहीं रहे, परंतु उनकी फिल्में और उनकी आवाज़ आज भी हम याद किया करते हैं। उनकी याद में आइए खामोशी फिल्म से, जिस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे किरदार निभाए जहां पर मुंह से कुछ नहीं कह पाते थे पर उनके अल्फाज बहुत कुछ कह जाते थे। ये बहुत ही सुंदर फिल्म थी। इसमें नजर आए थे सलमान खान और मनीषा कोइराला और स्वयं नाना पाटेकर जी। खामोशी भी एक आवाज है, बस से सुनना आप पर निर्भर करता है।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर जी का, जिनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखा और मेहनत के बल पर अपनी अलग पहचान भी बनाई। उनकी एक्टिंग की खासियत थी कि वो अपने किरदारों को सिर्फ निभाते नहीं थे बल्कि उनमें जान भी डालते थे। आइए एक और सुंदर सा गीत हम सुनते हैं, राजू बन गया जेंटलमैन, लवेरिया हुआ।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, आइए एक और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। लामारी के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर रुई लाब्रास्टरी, रुई पालमिस एक और दो, रुई गोयाविये, रुई लक्ष्मी, रुई इटू, rue de la forêt, rue Cypros, rue Saille, rue Béateau, rue Kids, Mont-Saint-Mont, Desjardins, rue Kebla, rue Lila, Mont-Saint-Mont, सादुल और रुत रॉयल के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि 11 अक्टूबर रविवार 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हम सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। साथ रहिए, 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।

फजर के 8 बजे मां। नमस्ते, आवाजा भोजपुरी में समाचार सुने जा। पानी के गंभीर संकट के कारण कॉल

पुल के निवासी सड़क पर उत्तर आलहवन से 6 दिन से पानी न मिले के और प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल की संभाली खातिर पुलिस और एसएमएफ के हस्तक्षेप करे के पड़ल। स्थिति के शांत करे के और टैंकर के व्यवस्था खातिर चुनाव क्षेत्र नंबर 15 के जूनियर मंत्री फौजिया अलीमन और सांसद कुशल रुबीन रात भर मौके पर ही डटल रहलन। मॉरिशस में सब क्षेत्र में प्रति सप्ताह 40 घंटा काम करे के प्रस्ताव पर विचार करल जाता। नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल में चर्चा के बाद श्रम मंत्रालय एकर व्यवहार्यता की जांच खातिर कंसल्टेंट्स के माध्यम से एगो अध्ययन शुरू करता। ब्लैक रिवर में बनियान स्क्वायर परियोजना के तहत एगो पुरनका बरगद काटे के और कार्यकर्ता पर से यिपटोंग के गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ गल बा। सीनियर काउंसिलर हमा वाला दिन परमिट के प्रशासनिक जांच के मांग करता, जबकि जिला परिषद के अध्यक्ष बोलेलन की विकास कार्य रोके खातिर नोटिस जारी करल गल रहल और मामला की जाँच जारी बाटी। बीफे के 8 अक्टूबर के श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में अपन 25 बरिस पूरा हो के जश्न मनैलन, जकर शुरुआत पहल का गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर भारत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में होल। ये अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फेसबुक पर एगो संदेश के माध्यम से ओकरा शुभकामना देलन। ओ मॉरिशस और भारत के बीच मजबूत होल संबंध पर प्रकाश डललन। आर श्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक यात्रा आर उनकर नेतृत्व की सराहना करलन। वो उनकर सफल कार्यकाल, अच्छा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुख समृद्धि के कामना करलन। आज सगायतों जुवाल के 96वां जन्मदिन बाटे पीएमएसडी के प्रवक्ता बोलन मानवतावादी और देशभक्त के रूप में उनकर योगदान के याद करलन। ये अवसर पर ही आज सांझ 6 बजे पोटली नगर पालिका में पार्टी द्वारा एगो संगोष्ठी के आयोजन करल जाए। 9 अक्टूबर की मनावा जाए होला विश्व डाक दिवस के अवसर पर ही मॉरिशस में डाक विभाग के ऐतिहासिक भूमिका और समाज और अर्थव्यवस्था के जोड़े में एक योगदान के याद करल जाता। दूसरा देश के खबर में इंडोनेशिया में हफ्ता से भीषण जंगल के आग लगल बाटी, जकर धुआं मलेशिया सिंगापुर और फिलीपींस ले फैलल गल बाटी। और पूर्वी मोर्चा के क्रामोटोस्क शहर में 2 नागरिक बस पर होल रूसी ग्लैड बम हमला में कम से कम 30 जना की मौत हो गल बा। ई हमला में अन्य 18 जना घायल हो गल बा। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्ते। आवाजा मरनी और मैयत के खबर सुना जाए। स्कूल लेन लाविनिया सेंट पियर में 4 गोरी 2 बरिस के 82 के श्री हरिदत्त रामबरन जी गुरु जी नाम से जस्ते जानते जाथ रलन जाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 11 बजे ओकर बेटी विमला रामबरन के घरे स्कूल लेन लाविनिया सेंट पियर से उठा के सैकौस्तों सेंट पियर की शमशान भूमि ले जावा जाए। ब्रांच रोड घोष 9 में 4 गोरी 5 बरिस के कथों सैकों के श्री मणिक चंद जिंगरी जे मणिक नाम से जस्ते जानते जात रलन जाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 1 बजे ओकर बेटा खेमराज जिंगरी के घरे ब्रांच रोड घोष 9 से उठा के घोष 9 के शमशान भूमि ले जावल जाए। काली लेन बॉम्बू में 3 गोरी 17 बरिस के सुसंजी से तौके श्री लक्ष्मी नारायण अलहोद जे देवदास नाम से जस्ते जानते जात रलन जाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 3:30 ओकर बेटा प्रवेश अलहोदा के घरे काली लेन बॉम्बू से उठा के मोताएं सैंपिया बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। सीते बालिसों रोज बेल में 3 गोरी 16 बरिस के सुसन सेजों के श्रीमती वसंती देवी नितुरिया पैदायशी नाम दुखी आर जे बसंती नाम से जस्ते जानते जाथरा रंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 11 बजे ओकर बेटा राजेश नितुरिया के घरे सीते बालिसों रोज बेल से उठा के मारिशानी रोज बेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। सेट क्वासे ट्रू डू डूस में 2 गोरी 12 बरिस के 52 के श्री विनोद अंगुतिया जी सुंदर नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर कर हवन। ओकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा ओकर भाई आत्मानंद अंगुतिया के घरे सेट क्वासे ट्रू डू डूस से उठा के बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। अपना लेन शामुनी में 3 गोरी 15 बरिस के सुसन कैसों के श्री मोदी कातों जे वासन नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 3 बजे ओकर घरे अपना लेन शामुनी से उठा के कौगोपाल शामुनी के शमशान भूमि ले जावल जाए।
La chapelle ardente est liée en sur la route pour passer mes charcuteries panchbariske 85 ans qui Shri Mohan Madhu Ji Mohan Nam Sijasti Janet Jatran Jaugus

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से ब्लू बे के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर मोसेलमान ब्लू बे, एवेन्यू ले एंग्रेट, एवेन्यू मौलै, एवेन्यू पायंक्यू और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
3: एक ऐसा बम बना जो फटे।
4: सुना है आपके यहाँ एक शूटर की पोस्ट खाली है।
5: सर, मैंने तो अपनी जिंदगी में मक्खी नहीं मारी है सर, आदमी क्या मारूंगा सर।
6: अल्बर्ट, इसको मक्खी मारना सर।
2: रविवार 11 अक्टूबर को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म 1-2-3 2008 की मूवी तुषार कपूर और सुनील शेट्टी पर फिल्माई गई कॉमेडी से भरपूर मूवी 1-2-3। एमबीसी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
7: ये देश राम के भरोसे चलता है।
8: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है।
7: उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक।
2: रविवार 11 अक्टूबर को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म राम सेतु अक्षय कुमार और नुसरत भरूचा पर फिल्माई गई राम सेतु।
0: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। 8:20 हो चुके हैं रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। स्वागत है आप सभी का कुछ दिमागी कसरत के लिए। तो आपको डायल करना है 4028085 पर 402-80-85 पर। पहला सवाल कुछ इस प्रकार, ध्यान से सुने। क्या कहते हैं

है इस इंसान को जिसका काम लोगों से प्रश्न पूछना है? क्या कहते हैं उस इंसान को जिसका काम लोगों से प्रश्न पूछना है? 4028085 पर।

0: अरे भाई इतने भी क्या मुश्किल है कि क्या कहते हैं उस इंसान को जिसका काम है लोगों से प्रश्न पूछना। वो प्रश्न पूछता है लोगों को, उस इंसान का नाम बताइए। प्रश्न ना पूछे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा उसको। तो चलिए बताइए इंसान का नाम बताइए जिसका काम है लोगों को प्रश्न पूछना। 4028085 पर जाइए। लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है इस प्रश्न के लिए। तो चलिए सुनते हैं। हेलो, मैं ठीक हूँ। गीता जी कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, सुबह से सुन के और फिट एंड फाइन हो गया? मैं कोशिश कर रही हूँ शायद टीचर।
0: एक और जवाब?
1: पता नहीं,
0: टीचर के बाद एक और इंसान है जो प्रश्न पूछता है।
1: दिमाग में नहीं आता होगी।
0: कोई बात नहीं गीता जी, आपने कोशिश की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी। बाय बाय, शुभ दिन। भाई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो चलिए मैं आप लोगों को एक टिप्स दे ही देती हूँ। क्या छापेगा वो अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो? उस इंसान का नाम बताइए जिसका काम है लोगों से प्रश्न पूछना। तो चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो हेलो,
2: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: मैं श्रीमती हूँ वाकवा से।
0: श्रीमती जी वाकवा से आपका स्वागत है। श्रीमती जी, सुमती जी आपका स्वागत है।

0: शुक्रिया।
1: और रसुमति जी, आपके पास क्या जवाब?
0: पुलिस।
1: पुलिस
0: जी।
1: नहीं, एक और जवाब।
0: वकील।
1: एक और।
0: मजिस्ट्रेट। नहीं
1: नहीं
0: तो
1: वो अगर उसको इन्फॉर्मेशन ना मिले तो क्या छापेगा? क्या बात है, सही जवाब दिया आपने। देखा, मैंने क्लू दे दिया और आपको बधाई कहती हूँ सुमति जी। और एक बार फिर से, और आपने भाग लिए हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो।
0: जी, धन्यवाद
1: धन्यवाद, नमस्ते और शुभ दिन।

तो चलिए एक और प्रश्न आप सभी के नाम, एक पैर पर खड़े होकर तीन नैनों से देखने वाली चीज का नाम बताइए। एक पैर पर खड़े होकर तीन नैनों से देखने वाली चीज का नाम बताइए। बड़ा ही आसान है, हम रोज देखते हैं उन्हें, ना देखें तो गड़बड़ हो जाती है। जी हाँ, एक पैर पर खड़े होकर तीन नैनों से देखने वाली चीज का नाम बताइए। 4028085 पर 92.85 पर आप सभी का इंतजार है। 8:27 हो चुके हैं, बताइए हमें एक पैर पर खड़े होकर तीन नैनों से देखने वाली चीज का नाम बताइए। गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉर्शस के लहरों पर।

0: हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। चलिए एक लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते देवी जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ,
0: ठीक हूँ। चलिए बताइए, आपके पास क्या जवाब है?
1: त्रिनेत्र है, त्रिलोचन।
0: फिर से?
1: त्रिनेत्र।
0: हाँ,
1: त्रिलोचन।
0: अरे नहीं रे बाबा, नहीं है, ये गलत जवाब है, गलत जवाब। एक और देना चाहते हैं आप? एक पैर पर खड़े होकर तीन नैनों से देखने वाली चीज का नाम बताइए।
1: नहीं, नहीं
0: पता। नहीं होता, कोई बात नहीं, कोशिश किया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। आपको कहेंगे बाय और शुभ दिन। चलिए एक और टिप्स मैं दे देती हूँ आप सभी को। एक पैर पर खड़े होकर तीन नैनों से देखने वाली चीज का नाम बताइए। अरे नहीं होगा ये, तो ट्रैफिक पड़ जाएगा सब कुछ। चलिए बताइए क्या है। एक पैर खड़े होकर तीन नैनों से देखने वाली चीज का नाम बताइए। तीन नैन है उसके और पैर है एक, नजर डालता है, रोकता है, क्या है वह? चलिए जगाइए। क्या जगाना

0: हैं अपने दिमाग का बल्ब, क्योंकि प्रश्न तो है बहुत ज्यादा तगड़ा। एक पैर पर खड़े होकर तीन नैनों से देखने वाली चीज का नाम बताइए। हेलो हेलो हेलो, लाइन पर शायद कुछ खराबी है। एक और श्रोता को हम लेते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। चलिए, हेलो।
1: दिल से प्यारा नमस्कार, मेरी लवली लवली लवली प्यारी सी पूजा जी, कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है गीता जी।
1: शायद होबो,
0: शायद नहीं, ये तो सही जवाब है।
1: और
0: शुभ दिन आपको भी। बाय बाय।

0: ऐसी क्या चीज है जिसको टुकड़े टुकड़े करने पर भी उससे खून नहीं बल्कि मीठा रस निकलता है? ऐसी क्या चीज है जिसको टुकड़े टुकड़े करने पर भी उसे खून नहीं बल्कि मीठा रस निकलता है? बड़ा ही आसान है भाई। मॉरिशस में रहते हैं हम सभी, चारों ओर ही है सब कुछ। ऐसी क्या चीज है जिसको टुकड़े टुकड़े करने पर भी उसमें खून नहीं बल्कि मीठा रस निकलता है?
1: जल्दी से ले लो, चाय ठंडी हो गई।
0: चाय ठंडी नहीं, यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। मैं तो कहूंगी कि नवीन जी के प्रश्नों से सबकी निकल पड़ती है भाई। आज प्रश्न कुछ टगरे हैं। लाइन पर श्रोता हैं, तो चलिए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार बसंती जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: और नाश्ता कर ली आपने?
2: जी कर लिया।
0: कर लिया, चलिए प्रश्नों का नाश्ता करते हैं। बोलिए आपके पास क्या जवाब। शुगर केन नहीं, या सही या क्या है बोलो।
2: शुगर केन नहीं।
0: ये तो है गन्ने है? का सही जवाब दिया आपने बसंती जी। आपको बधाई हो, चलिए शुभ दिन आपको।
1: मैनेजर कहाँ गया?
3: वो तो ऑफिस गया है।
4: ओए छोटू आया है, क्या चाय लाया है?
1: ये आवाज किधर से आया?
0: गर्मा गर्म नाश्ता लाया है और कैसा कैसा सवाल है, चलिए
4: मुझे पकड़ा दे।
0: एक और प्रश्न आप सभी के नाम बताइए। वह क्या चीज है जो मिट्टी में पैदा होती है, हवा के सहारे आसमान में उड़ने लगती है, लेकिन पानी में मर जाती है? बताइए वह क्या चीज है जो मिट्टी में पैदा होती है, हवा के सहारे आसमान में उड़ने लगती है, लेकिन पानी में मर जाती है?
5: कई बार बोला
0: भाई, सही सजाया आपने नवीन जी सवाल को।
4: मैंने कब लिया बे, तुझसे पूछ।
0: दिमाग लगाइए भाई।
4: मैं मैनेजर, मेरा साबुन तूने लिया?
0: फिर से सुनिए। मिट्टी से पैदा होती है, हवा के सहारे में आसमान में उड़ने लगती है।

0: लेकिन पानी में मर जाती है।
1: सारा दिन झगड़ा ही कर रहा
0: है। क्या है वह? मरा ही तक रहा है। सोचिए, वो मिट्टी से ही पैदा होती है, हवा में, हवा के सहारे आसमान में उड़ने लगती है, लेकिन पानी में जाकर मर जाती है। भाई क्या है वह?
2: दुनिया नीचे खड़ा है, साला पैसा मांगेगा।
3: लगता है आज तो
2: छूटी हो गई।
0: पैसा नहीं, हमें तो जवाब चाहिए। नंबर दो वही है 4028085 पर।
2: मेरा चुप्पा करो, बाद में चाहे जहां रास्ता करो।
4: अरे देता है ना, एक दो दिन में देता है ना।
0: हेलो हेलो
5: हेलो पूजा जी, मैं राधा।
0: राधा जी, आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। और राधा जी, आपके पास क्या जवाब?
5: जी मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद ढोल।
0: शायद नहीं, ये तो सच में ढोल है। सही जवाब देने के लिए आपको बधाई हो। शुभ दिन और बधाई हो आपको एक बार फिर से। बाय बाय।
2: बाल भी ले जाएगा, माल भी ले जाएगा, धंधा तेरा अच्छा हर हाल में कमाएगा। और अपन को देखा आटा भाई, साला रोज लगाएगा, रोज हार जाएगा।
0: हारने की बात नहीं है भाई, बताइए एक और प्रश्न आप सभी के नाम।
6: पंडित जी नमस्ते।
7: नमस्ते, नमस्ते भाई।
0: बताइए किस नदी का पानी नहीं बहता? बताइए किस नदी का पानी नहीं बहता?

0: बताइए किस नदी का पानी नहीं बहता। 4028085 पर
1: यही कुछ होने वाला है।
2: बढ़िया
3: देखा मरवा दिया ना कले को।

हम भी तो कहें उठाइए चाची मौसी, फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए 4028085 पर। बताइए किस नदी का पानी नहीं बहता। 4028085 पर।

0: भाई किस नदी का पानी नहीं बहता, लाइन पर कुछ लोग हैं, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी।

0: जी आपका शुभ नाम?
1: बाद में।
0: अच्छा बाद में, अच्छा पहले आप जवाब दे दीजिए।
1: झील का पानी।
0: झील का पानी?
1: हाँ, नहीं नहीं बहता।
0: नहीं ये गलत जवाब, कोई बात नहीं आपने कोशिश की।
1: और एक उत्तर दूं?
0: अच्छा दीजिए।
1: समुद्र?
0: नहीं एक और देना चाहती हैं? नहीं कोई बात नहीं, आपने कोशिश की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कहेंगे शुभ दिन। भाई वो नहीं तो रास्ता नहीं मिलता, वो नहीं तो रास्ता नहीं मिलता और जगह का भी पता नहीं चलता क्या है वह। इसके बिना उस जगह पर जाने का कोई नामो निशान नहीं होता, क्या है वह, किस नदी का पानी नहीं बहता। उसमें पानी ही नहीं है इसीलिए तो नहीं बहता। आप लोग बोल रहे हैं समुद्र समुद्र में पानी नहीं है, उसमें नदी जैसा आकार है, मतलब शेप है, पर उसमें पानी नहीं होता। 4028085 पर बताइए वह क्या है भाई। हेलो
2: हेलो
0: हेलो हेलो भाई अली जी, आपका स्वागत है। सलाम
2: सलाम सलाम, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: मैं तो बिल्कुल महफूज हूँ।
0: चलिए महफूज तो होनी चाहिए, आप भाग ले रहे हैं अभी गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। बताइए आपके पास क्या जवाब?
2: मालूम है जवाब ठीक रहेगा या नहीं, मेरे पास जो जवाब है
0: और दूसरा जवाब नहीं। इसका मतलब सूख गया पानी। नहीं नहीं ये भी गलत जवाब भाई, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने कोशिश की भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन आपको भाई अली जी। चीज बड़ी मस्त है, क्या है? अरे भाई उसके आकार नदी जैसे हैं, पर उसमें पानी नहीं है, उसके बिना हम जगह में नहीं पहुंच सकते। क्या है वह, कौन सी नदी है?

0: हेलो हेलो हेलो, शायद लाइन में कुछ खराबी है। कोई बात नहीं, एक और श्रोता को हम लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम सीता है।
0: सीता जी, आपका स्वागत है। और आपके पास क्या जवाब?
1: रास्ता, रास्ता, रोड।
0: रास्ता, आप बहुत करीब हैं। रास्ते में और एक और चीज है।
1: रास्ते में,
0: रास्ते जैसा है उसका शेप
1: जी।
0: क्या है? एक और आइडिया
1: जी, सोचना पड़ेगा।
0: चलिए सोचिए सोचिए, गर्मा गर्म नाश्ता तो है ही।
1: करूंगी।
0: फिर से फोन कीजिए, क्यों नहीं। चलिए, आपको कहेंगे शुभ दिन।
1: आपको भी।

0: भाई नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, बताइए क्या है वह। किस नदी का पानी नहीं बहता, बताइए किस नदी का पानी नहीं बहता।
1: जी हाँ, मैं हूँ खलनायक।
0: हेलो,
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: हाँ, मैं बोल रही हूँ, रमीला।
0: आपका स्वागत है, और आपके पास क्या जवाब?
2: वो

0: रास्ते किनारे वो जो नाली है ना,
1: हाँ?
0: नाली का पानी शायद,
1: तो उसमें पानी है ना, मैंने कहा उसमें पानी नहीं बहता, उसमें पानी ही नहीं है।
0: पसीना?
1: नहीं, पसीना पसीने में तो पानी होता है।
0: तो पहाड़?
1: नहीं पहाड़। अच्छा अच्छा पहाड़ में आप बहुत करीब है। पहाड़ में जाने के लिए मान लीजिए आपको एक एक जगह जाना है, तो आपको कुछ चीज चाहिए ना पता बताने के लिए,
0: वो
1: क्या है
0: पहाड़
1: वहाँ
0: के ऊपर वो जो पत्थर होते हैं ना चढ़ने के लिए, वो पावाज जिसे कहते हैं शायद।
1: नहीं
0: पहाड़ से पानी गिरता है तो वह पानी ठहरता नहीं ना।
1: नहीं ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहेंगे शुभ दिन। मैं बराई आसान है, आपको मुझे बताना है कि उस नदी का पानी नहीं बहता, उस चीज का नाम बताइए। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्ते जी।
2: नमस्ते
1: नमस्ते, आपका स्वागत है सुदेवी जी।
2: मैं कोशिश करती हूँ।
1: कौ? नहीं, एक और? नहीं नहीं आ रहा है?
2: नहीं।
1: कोई बात नहीं सुदेवी जी, आपको कहेंगे शुभ दिन।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते बीना जी, कैसी हैं आप?
1: अरे बाप, मैं थक गई, कितने परत तक उतर मालूम थे, अब तो उठा ही नहीं रही।
0: चलिए चलिए चलिए, आपको लगी लाइन, अभी बोलिए।
1: हाँ मैं बोलती हूँ जवाब। पगडंडी
0: पगडंडी नहीं,
1: ये पगडंडी नहीं है नहीं। पगडंडी तो होता है ना, जिस तो सुखी रहती है, जिसे हम चलते हैं पतली सी।
0: नहीं, मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ, बताइए किस नदी का पानी नहीं बहता? वो एक चीज़ है, मान लीजिए उसके बिना हम उस एक रास्ते में नहीं जा पाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे, उसका होना चाहिए। मान लीजिए आप अगर घूमने जा रहे हैं या फिर किसी चीज़ को ढूंढने जा रहे हैं, तो उसका होना ज़रूरी है। और उसमें ना वो लाइन जो होते हैं, वो नदी के जैसा ही है, उसका शेप आकार जो है वो नदी के समान है, पर उसमें पानी नहीं है।
1: लेकिन अभी तो दिमाग टकरा रहा है, अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सोच ही रही थी कि ये शायद पगडंडी ही होगी, लेकिन आप बोल रहे हैं और भी कोई चीज है, तो वो तो नहीं आ रहा है अभी मुझे।
0: नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बिना जी आपको कहेंगे शुभ दिन, मैं ही बता दूंगी अभी। अच्छा,
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद, बाय बाय। भाई मान लीजिए किसी चीज को ढूंढना है, तो आपको उस चीज की आवश्यकता है ना। अच्छा मैं एक टिप्स दे देती हूँ, वो एक कागज़ का टुकड़ा है, उसमें उसके जो आकार हैं नदी के समान ही हैं, पर उसमें पानी नहीं है, क्या है वह? 4028085 पर। बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे खेलने में, क्योंकि किसी को भी नहीं आ रहा है। हेलो
2: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते शोभा जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। और शोभा जी के पास क्या जवाब?
2: बस मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा जवाब है माप।
0: अरे क्या बात है भाई, ब्रावो। आखिर में मुझे जवाब मिल गया, और आपको बधाई हो शोभा जी।
2: धन्यवाद पूजा जी।
0: और कैसे आपने अंदाजा कर दिया, इतने लोगों ने कोशिश पर मिला नहीं।
2: लाइन तो माप तो चारों ओर लाइन ही है ना।
0: क्या बात है, सही दिमाग।

सही खलनायक तो शोभा जी निकले वाकवा से, उनको कहेंगे बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, इतनी कोशिशों के बाद भी मिला जवाब। तो इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं और साथ रहिए, हमारी धरोहर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे किरण जानकी जी द्वारा, फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे और जितने लोगों ने गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और ख़ास तौर पर नवीन लक्ष्मण जी को जिन्होंने इस गर्मा गर्म नाश्ता ऐसे ऐसे सवाल ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे लिए तैयार किया है। और पूजा को अनुमति दीजिए, मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आप सबको के स्वागत बा। हर 9 अक्टूबर के दिन विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे मनावल जाला और ई मौका है हमने के पुराना दिन याद करे के, जब कम्युनिकेशन यानी संपर्क के साधन खाली चिट्ठी पत्र रहल। वो चाहे देश के अंदर यही या विदेश में, खत और पोस्ट कार्ड ही संपर्क रखे के एकमात्र माध्यम रहल और बहुत सुंदर माध्यम रहल। आज भले ही एगो बटन दबाते ही दुनिया के एगो कोना से दूसर कोना तक संपर्क मुमकिन हो गल बा, पर आगे के समय में डाक सेवा के बहुत बड़ा भूमिका रहल। अपन सगे संबंधी या मित्र से अपन प्यार और अपनापन जतावे खातिर पोस्ट कार्ड या खत भेजल जात रहल। और ये सब पोस्ट कार्ड और खत कितने समय लेवत रहल उ लोग तक पहुँचे के, और एकर से जोन आपस में प्यार बा, जोन आपस में अपनापन बा, वो और भी गहरा हो जात रहल। डाक सेवा के इतिहास बहुत पुराना है। पुराना इजिप्ट में 2500 बीसी में डाक सेवा रहल। ओकर रूप बेशक दूसर रहल। ईरान में 550 बीसी में सबसे पुराना डाक सेवा रहल। अलग अलग सभ्यता सिविलाइजेशंस अपन अपन तरीका से खत, संदेश, समाचार या पार्सल एगो साम्राज्य से दूसर में भेजत रहलन सा। अमेरिका के जोन पोस्टल सर्विस बा डाक सेवा बेंजामिन फ्रैंकलिन के जमाना से रहल, जे 1775 में पहला पोस्टमास्टर जनरल रहलन। 9 अक्टूबर 1874 के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के स्थापना करा गल और ई सदस्य देश के बीच में सहयोग और साझेदारी के एगो माध्यम रहल। मॉरिशस के पहला पोस्टल सर्विस 1772 से कायम है, जब ई टापू फ्रेंच प्रशासन के तले रहल। उ जमाना में गुलाम लोग खत के हिया से हुआ ले जात रहलन सा। अंग्रेजी प्रशासन के दौरान 1835 में फिर से डाक सेवा शुरू करा गल। एक सप्ताह में 3 हला ये डाक सेवा देवल जात रहल। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस तब लाशोसे में रहल और देश के पहला पोस्टेज स्टैंप 1847 में जारी करा गल। शहर के राजधानी पोर्टलुई में नवा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कॉलोनियल जमाना से बा। पोर्टलुई के बंदरगाह और कोदों के बीरी ये इमारत 1810 में

0: गवर्नर फौकवा द्वारा शुरू करा गया रहा। 1868 में गवर्नर सर हेनरी बार्कले द्वारा एकर उद्घाटन करा गया। 1875 में देश में 33 गो पोस्ट ऑफिस रहा। ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में सब गतिविधि केंद्रित रहा। यहीं से टेलीग्राफ लाइन, टेलीफोन और अंडरवाटर केबल मॉरिशस में शुरू होल। 1958 1958 में ई जनरल पोस्ट ऑफिस के नेशनल मॉन्यूमेंट राष्ट्रीय विरासत के लिस्ट में शामिल करा गया। 19वीं सदी के ई कॉलोनियल इमारत के आर्किटेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ई इमारत के छत, एकर घड़ियाल और फसाद, साथ में एकर 5 गो आर्क मध्य विक्टोरिया युग के दौरान मॉरिशस में बरतानी हुकूमत के विकास के कुशल कारीगर के चिन्ह, पोर्टलुई और ओल्ड सुयाक पोस्ट ऑफिस के इतिहास कुछ ऐसा ही बा। 2008 में पोर्टलुई के जनरल पोस्ट ऑफिस के हेरिटेज वैल्यू, विरासत मूल्य और ऐतिहासिक मूल्य और बढ़ गए और यहाँ पर पोस्टल म्यूजियम कायम करा गए। और आज भी ये जो ला पोस्ट सेंट्रल बा वो एगो नेशनल मॉन्यूमेंट के तरह देखल जाला। एकर जो आर्किटेक्चर जो ढांचा बा वो बहुत ही महत्वपूर्ण बा। पत्थर के बनल इमारत पोर्टलुई के शोभा बढ़ावे में भी एगो अहम भूमिका निभावेला। आप सब कोई के विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे के बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है विधिमा, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते विधिमा जी।
2: नमस्ते रत्ना, सभी को नमस्कार। पानी के गंभीर संकट के कारण कॉलोव्यू एमिताज कॉन्फुको और सैंपल के निवासी सड़कों

मॉरिशस में सभी क्षेत्रों में प्रति सप्ताह 40 घंटे काम करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और नेशनल ट्रापोटर काउंसिल में चर्चा के बाद एक अध्ययन शुरू किया गया है। ब्लैक रिवर में बनियान स्क्वायर परियोजना के तहत एक पुराना बरगद काटने और कार्यकर्ता पर सीईपटों की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ गया है। सीनियर काउंसलर रामा वालादेन ने परमिट की प्रशासनिक जांच की मांग की है। आज सगायतों जुवाल का 96वां जन्मदिन है। पीएमएसडी के प्रवक्ता ओलिविए बॉब ने एक मानवतावादी और देशभक्त के रूप में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर आज शाम 6 बजे पोटली नगर पालिका में पार्टी द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व डाक दिवस के अवसर पर मॉरिशस में डाक विभाग की ऐतिहासिक भूमिका और समाज व अर्थव्यवस्था को जोड़ने में इसके योगदान को याद किया जा रहा है। और विदेश में आईआईटी बॉम्बे कैंपस में गुरुवार शाम एक हॉस्टल में गैस लीक के कारण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है, आगे की जाँच चल रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Your news on NBC Play.

0: की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को लेकर। 9 तारीख अक्टूबर महीना शुक्रवार का दिन है और बिल्कुल एक घंटे के आज के सफर में आप हमारा साथ दे सकते हैं। रेडियो मॉरिशस पर इसका सीधा प्रसारण आप सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच ये कार्यक्रम पुनः रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा रेडियो मनोरंजन की लहरों पर, और साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर दिन के 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच आप इस कार्यक्रम को पुनः देख पाएंगे। तो आइए शुक्रवार के दिन हम कानून के विषय में बात करते हैं, और आज हमारे साथ जुड़े हैं बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी, जो स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते रघुनंदन जी।
1: नमस्ते जी।
0: आज के कौन टॉपिक पर आज बात बतिया?
1: हाँ, आज हम बात करब से एगो स्पेशल टॉपिक। हाँ। जो ढेर भाई कभी कदर नहीं कर ले से अब, और हम आनब से तोर संगे नया नया चीज जो मैं कुमार जो जो कैसे जी वो सही शादी से भूल जाए अब सर, अब नया चीज जो हमने के भाई लोग नहीं सुन ले बा। अरे आज हमने बात करब से प्रेतनो। प्रेतनो एगो मो फ्रांसे है, मैं हमने के सब भाई बहन लोग जाने ला। ओकर दूसरा नाम हमने नॉम दे पाई। नॉम दे पाई का एगो आदमी जो लापाई के है। हाली एकर कहानी कहाँ से शुरू हो रहा? पहले तो जाने ला एक बार हमने के भाई बहन लोग के उ लोग के जमीन बा, तब जमीन में रहेला तो का करेलन सन, प्लांटे करेलन सन कुछ न कुछ, तो डरेलन सन पंगार चिराई आके ऊ जाके जो जिन प्लांट ले वन सन खा ले। तो का करेलन सन कब्जा लन सन घर, तो सोचेलन सन अरे तो हुआ तो कोई नहीं बा गार्दी करे के अब, तो कैसे मजा करब सर? तो एगो नॉम दे पाई अपन लापाई से एगो बोलोम नियर बना के ओकर सापो डाल दी, ओकर हाथ में 2 चीज डाल दी, ताकि कब ऊ नहीं रही चिड़ैया आई तो ऊ बोलोम दे पाइवा कब देखी तो डर जाई। जान एगो आदमी, हाँ एगो आदमी खड़ा हुआ था वे ये करता हुआ तो ओकर नाश नहीं करी, ओकर मजा कारो के जोन जोन चीज प्लांट ले बा। नॉम है एगो नॉम दे पाई है। मैं हमने का कर ले हैं सर, ले ले हैं सर हमने के है मजा कानून बगल से नॉम दे पाई। ये के है एगो आदमी है जो उनके माँ दाते करेला एगो दूसर आदमी है। बोले एग्जाम्पल दे ला हमारे तौर में से बोझो हम एगो चीज करे खोजत हैं, एगो जमीन खरे खोजत हैं, से बोझो मिलियों के वो बा मिसल में हम नहीं चाहते हैं कि हमर नाम चली कि उ जमीनवा हम किनत हैं। बस का करब तोहरा नो में करब एगो मदाते नियर, मैं मदाते नहीं मदाते नहीं एगो एग्जाम्पल देवत हैं एगो थर्ड पर्सन जैसे हमने बोला सर हम तोहरा स्वागत कलें कि देख उ जमीनवा जोन बेचाता कुमा जे जा तू किन ल, हम अपने नाम में कोतरवा बनाब, अपने ही नाम में कुमा जी हैदब सब कोई जान जाए। तो कुमा जे नहीं बा हमके चा मन बा कुमा जे कोई नहीं जानी उस जमीन वहाँ के किन ले बा, मैं तू जाके तोहर नाम में किन लिया। तो उस कुमा जे एकरे नाम है एगो प्रेतनो, मतलब हम स्वाजी कर लें एगो दूसरा आदमी के ऊ आदमी यहाँ हमर नमुआ में नहीं कि नहीं ओकरे नमुआ में जाके उ जमीन वहाँ
0: पैसवा ऊ दे पैसवा ऊ देखिने खातिर।
1: आई का जोली बोली अभी देखब सगर कौन से कांस मैं खूब बोला पैसवा हम दे ऊ आदमी कैसे बुझो तो तोरा कि जाके किने के मैं कब कोतरवा करब, तो तू तो अपन नाम में है है है करब कोतरवा, बस तू तो न जाके सीए ऊ सब करब, हम तो कुमा जे एक बगल कुएं में है कोई नहीं जानी हमारे दाँचीते कुमा जे है कुमा सिखे रही।

0: तो देख ल मॉरिशस में हमने बोलिए सा नोम दिपाई इपनो बहुत सा आदमी करे पहले अभी कि हई जोन बा माले बा कॉन्फियंस नहीं बा दूसन हौ नोम दे पैवा में हई प्रतनोवा के अदमिया में ओकर नाम में तो कोतरवा कर दे अरे जाके का करी ऊ नमुआ बितारे देखब से एगो कहानी कैसे लाखू सिपाही में आल बा का हो रहल ऐसे बस ऊ का करेला अदमिया जोन पैसवा देवेला हौ जोन अदमिया खड़ा रही ओकर प्रतनोवा के ओकर संगे चाहे लगो कोतरा बनाई के एगो कोतरा बनाई कि देख हम तोरा देवत हई एगो कुमा जे पैसा इतरवा जैसे बोल हम देवत हई पैसा हमर नाम में नहीं तोहर नाम में किनिय ऊ है चीजवा या कुमा जे सोसाइटी में हुई सुष्क्रिय करे के आक्षो या खींच खूच खरीदे के या कोनो चीज करे के अपन नाम में तू करिय काहे ये पोत एगो कोतरा करे के ऊ माँ दाते हुआ जोन करी आर हो अदमिया से न त काल तो बोली वो कर मिहिया एगो पापिए कर लेबा एगो कोतरा बनई लेबा कि ओके नो में करता है एगो आदमी हाँ तो ये देख ला एगो बड़ी मजे एगो चीज है ए पोत ये विजाफिज लाजिस्टिस बा ये एगो अंगाजम हुएला कंसिडर हुएला एगो प्रेतनो जहाँ एगो आदमी रिस्पॉन्सिबल हुएला अंगाजे हुएला एगो ट्रांजेक्शन करे के ओकरे ही नाम में
1: आइजिस जमीन जायदाद किने खातिर करे लंस या दूसर कुनो काम में भी प्रेतनो के
0: हाँ, बहुत चीज करे राजा विचार देखब से है मैं एगो एग्जाम्पल हम नहीं लेवत हैं जमीन में पस की पहले तो तीन कार भाई लोग बोले ये जो किन जाने हम नहीं जानते हैं हमारे परिवार जाने या कुछ जाने तो कोई लोग न जाने तो बोले सर अरे दे कहाँ पैसा बा सिपाही पैसा कहाँ से अनले बा कि देख बड़ा बड़ा महल गिना था बड़ा बड़ा जमीन खरीदता ऊ में तो ये कोरेक नहीं हुई तो ओकर पैसो ना लेते ओकर नाम कुमा जे रखे खोजता कि कोई नहीं जाने ऊ के कर रहे तो यही काम में अभी सिर भी भी अभी तारेल देखब से कौन सी होता हमने के देश में कैसे कैसे नो प्रित नो सर्वी करते हो सर बड़का बड़का फूड करे के बड़का बड़का ट्रांजेक्शन करे के तो उफो मजे कैसे अब आर के रही रिस्पॉन्सिबल में तो एगो केस लाखू सिपाही में आ रहा फिर एगो केस जहाँ एगो पति शादी कर ले रहे पत्नी से पति पत्नी से रहल में का करे दोनों में काम मजे नहीं बने ली मन से बस का कर लग पटिया जाके एगो दूसर मामसिल के खुशी से एगो मादाम के खुशी हो गल तो एगो कोंकबिन जैसे हमने बोले सा एगो मित्रेस नियर जैसे है एक बान आदमी बोले ला बस का कर लग ओके बोले जाने ले हम देख हमर बुढ़िया के नहीं जनइए बस हम तो के देवत हई पैसा जाके बड़का एगो घर जाता जमीनवा बड़ी बोमासे में देखत हैं पहले के कुमा जे नहीं बा एगो जमीन रहल वेंसैक पेस लाते रहल थनसैक मिल के बेचाल कहला मतलब कोई नहीं किने तो बस शायद वो खड़िया में हो या कुछ तो नहीं जान सको किस वाला कुर में आल तब तो मदमुआ बोले कुरेक बा तो बोले पैसा कहाँ रही पैसा देवत हुए ना बोले हाँ तो पैसा हम दे तू अपने से कहाँ से सकबे कि नहीं मैं हमारे बुढ़िया के नहीं जनई है तो का करलक मैडम हुआ वो पैसा थन सैंक मिलवा लेके अब गर्ल कुमा जी जहाँ बेचाल जाता नुते रही सब कोतरा करके ओकर नाम में करलक ओकर नाम में बनैलक अब हुआ ओकर नाम में बनी देलक एगो पैतनो कैसे सर्वे करलक हौ मैडम हुआ के तो हिया का होल अरे बस एगो पापिए कर ले रहा ना ओकर से एक कौवा में नहीं कर ले रहा कौन पापिए तो हम कहा कर लग मिशेवा बोले हे तू नहीं कर कुमा जमीनवा भमर ये पाँच छः बरिस हो गल कोई नहीं जाने अजय अब तू बेचत हुए उस जमीनवा हमर से बस कोतरा था तोर ना मेबा ना तू तो पोपिए रहे बोले नहीं हम नहीं हम तो के नहीं देख मटिया मटिया हमरे खातिर रखब तो बोले तू तो खाली एगो पैतनो रही एगो काम करे के तोर तो पैसा नहीं रहा हम दिली तो एगो केस दलक लाकुर मिशेवा दलक एगो केस लाकुर तो लाकुर में ओके बोले को जता कि देख हम दिले रही पैसा ऊ मित्रेश्वा के हब मजे तो ऊ जाके किन ले रहल ओकर हियाँ तो कुछ पैसा नहीं रहल अब हियाँ मदमुआ बोले नहीं आके लाकुर में बोला था हम किन ले हई मिशेवा नहीं तो ओ केस लड़ाई होल तो यही में आल प्रेतनो हमने के कोद है सिविल बा डालोज बा फ्रांसे के लालुआ बा मोरिशियन के लालुआ कोड सिविल सब में लिखल बा प्रेतनो के ओकर पुवा का है कौन चीज सकेला करे और का है मिसेल में पहला चीज एगो गलत कर लग मिशेवा बोले तो करता कुमा जो कर कौन मित्रे सो कर में कॉन्फियंस बा एको पापिए नहीं कर लग
1: कि हये जाने खोजत हई कि मान ल कोई के तू फितनो करत हव एगो काम करे खातिर तू ओकरा विदा करत हव तो चाहिला एगो कानूनी देने से एक मजा एगो कागज पत्र कुछ बनाई के चाहिला जेकर में तोहर पास एगो एगो फेव रही कि तू ओकरा एगो काम करे के।

0: दिले हुआ पैसा
1: खूब बोलल हाँ तो यही से बोलल जला एगो चाहेला के बैसे एगो थ्रसाक्षों करब तो एगो कोथरा बनाई के कोथरा बनाई के कुमा जो पैतनुआ से अर्जुन आदमिया पैसवा देवा था के जो मदाते कर ले बा ओके पैतनुआ के कमुआ करेगे न तो कौन पैबा जैसे बोलत हो और कानूनों के तनिया प्रॉब्लम हो जाला ना उ लोग के नहीं लौके मजा कौन चीज करी कि बताई के चला आर उ तो बोलबे करी पैसा सिलमो कर अब का पूछी ना हाँ ले उठना तो बोले तन सैंक मिलवा से किन ले कहाँ से तो कि मिलल अरे एगो बोली के ओकर यहाँ रहल तो एक बार आदमी के तो पैसा रहेला तो बोले नहीं बा अच्छे तो गो मित्र नहीं बोली ना मिशुआ के हमारे यहाँ तन सैंक मिल बा तो अपमा जो हिया तो सखी उ बिला जाए कानून पेब मांगेला तो हियाँ एगो कोथवा जैसे बोल जो कोथवा हुआ रहत तो उ कोथवा से बगल से उ सखत कुमा जे ओकर केस मिल जाए जमीनवा के साइड लाकू ओ दोने करी कि जो भाई पैतनवा के ऐसा एगो कोथरा रहल उ दे रहल पैसा ओके हो तू ने कर तो हियाँ तो नहीं बा पेबुआ और कानून बिना पेब के तो नहीं सखी को न कों दाने करे ना आकीते करे ना कुछ सा फिर आली तो ये हमने देखी ला सर एगो फैतनो हो अब हम देखे ना सब मॉरिशस में कौन ओकर का लीगल है इ फैतनो के विषय हुआ में अरे एगो आदमी कब एगो फैतनो सर्वे करेला या एगो बनेला वही एगो फैतनो रहेला तो हमने के कानून बोलेला ई लीगल है लीगल है आर एक कौशल में चाहेला एगो आकोहित बताई के इसे कैसे बोल तू भी चाहेला गो कोंथरा लीगल हो कोंथरा बा और कोंथरा बनाई के चाहेला दू गो आदमी के एगो कोंसेंटमेंट करे के
0: एगो विटनेस चाहे
1: हाँ नहीं विटनेस के नहीं नेसेसरी बा मैं चाहा बन भाई में तो विटनेस है तो जस्टिस तो और वैलिड बा जस्टिस सॉलिड बा बस कब एगो केस आई लाकुर में इसे तेमो बुलावेला छ ना तेमो आके कन्फर्म करी कि हाँ हमारा आगे से बुझो पैसा दे रहा है ओकर का ज्यादा सॉलिड कर देवेला मैं हियाँ नहीं नेसेसरी बा से बुझो कोंथरावे कर ले बा तो कोंतवा में कंसेंटमेंट दे लेबा ना हम तो क्या अपॉइंट करत हैं ऐ तेल चीज करिए तो वो एक्सेप्ट हो लेबा दोनों हियाँ सीए कर लेबा तो देखबा एगो कंसेंटमेंट दोनों पक्षिया में कबर रहेला तो एगो कोंतरा बा जब एगो आदमी कुमा जब बोली हाँ हम एगो चीज़ है देख एक्सेप्ट हैं ये चीज़वा करे के और कुमा जहाँ उफे करता जब पक्षिया लोग दोनों डाको हो गल तो हियाँ देखबा बा उ फैतनवा में एगो कोंतरा जो सकल जाए इसीलिए करे जहाँ एगो मद नहीं चाहता ओकर नाम पाखित हो देवता एगो दूसर आदमी के ओ आदमिया के ओकर नाम में पारित हुई के ओकर काम में ये वालिद बा तब ले फोड नहीं बा एगो चीज फोड के चीज करी तो देख बा ऊ कोंतरा हुए तो कुमार जब बिगड़ मिल ए नो आवे नहीं हो ऊ कोंतरा के ओकर वालेर नहीं बा तो यहाँ देख ला एगो कोंतरा वालेर दो आदमी में तब ले एगो कंसेंटमेंट बा और तब ले फोड नहीं बा तो यहाँ देख ला एगो पोतनो खड़े के कुमार जी सब काले एगो पोतनो तू भी खड़ा हो जाइए तो चाहे ला एगो आदमिया के नाम
0: मतलब जानब सा कैसे कैसे हाई काम करे खातिर एगो नाम के तू सेवी करे सकबा एगो व्यक्ति के नाम के तू सेवी करे सकबा
1: हाँ जी तो ई देखे ला तब ले हमनी के है कुछ सिविल बा हमनी के अच्छी 108 बोले ला कुछ सिविल के तब ले एगो मजे आदमी सकी है रहे एगो पोतनो इचिलिजे करे तब ले कुमा जे फोड नहीं बा ओकर लैटेंशन नहीं बा एक बार तो लैटेंशन कुमा जे फोड रहेला ना कि देखिए हम ऐसे करब तो एगो एगो फोड करके उकमा जे उच्ची जुआ ले ले तो हियाँ नहीं चाहेला दोनों में फोड नहीं कंसेंटमेंट हो के लिमन आर हमने के अचिक 108 हमने के कुछ सिविल वो बोलेला चार गो कंडीशन इम्पोर्टेंट है जब एगो मजे पैतनो रही पैतनो हुई नम दे पाई आदमिया और वो जो के माँ दवा बा जो ओके देवता पेमिशवा खड़ा हुई के कुछ खरीदे के या कुछ करे के पहला बोलेला दोनों में चाहेला कंसेंटमेंट ये कंसेंटमेंट ओब्लिगेटरी है बस ये चीज में करबे करे कोनो चीज करब जे कंसेंटमेंट नहीं हुई तो उता कोंथवा के वैलिड नहीं बा दूसरा चाहेला एगो कैपेसिटी दे कॉन्ट्रैक्टे मतलब दोनों में चाहेला कि मजे इहू सके कॉन्ट्रैक्टे करे ओ मतलब कि कावेला अरे हम हैं कालीगो मिने से हम मजे एगो कॉन्ट्रैक्ट करत हैं तो मिनेवा तो एगो कोंथरा जे अब जीवित हो तो नहीं सकी
0: हाँ
1: मिनेय तो सदियों नहीं सकी करे एगो बोली के तो सब चीज में जब आवेला एगो मिनेय कोंथराते करे तो जब फोदे ओके जीवित रही तो सकी अब एगो आदमी ओके पगला बा आइनजाइमे बा ओकर कपार नहीं अच्छा बा वो भी नहीं सकी कुमार जब

0: माफ करिए बोलन जन पगला बा तो उ तो पगला रही तो कुमा
1: जे मेंटली ओकरा चाही ला कुमा जे कैपेबल होई के
0: हाय का चाहे लोग के कैपेबल होई के तो उ कब कैपेसिटी बा कर संगे कैपाब बा तो उ में दिख बा कॉन्ट्रा होला तो या देखे था इसा कंसेंटमेंट और कैपेसिटी बा आ हर एगो चाहे ला एगो ऑब्जे जोन के करत हंसन उ लंगजमेंट ले ले हंसन ऑब्जे वा का ई का वा में जन सी बुझो मिशवा बोला जो हो जमीन वा किन तुरना में तो जमीन एक लोग कि उनसे उकर कौन सी कालते उकर कौन कालते कही करता कोंत्रा आर चाहे ला उ कुमाजे एक कोंत्रा जोन बोलता लिसित रहे के मतलब फ्रॉड नहीं चाहे ला गुजाफे कानूनी बगल से कुरेक रहे के यही देख ला एगो चीज है पहुंचा है एगो आदमी के कब एगो बने के एगो मजा फोइतनो सिर भी करे के अभी देख सब ओकर कौन कौन ओकर है मजा जीवा मारी बा तो हियाँ तो दिखला सा कब हो जाला इस सब कोंथा हो जाला तो एगो प्रॉब्लम नहीं हुएला फोद होई तो ऊ कोंथा हुआ नहीं मजा ओकर है बने अब एगो चीज है ये जब मिशवा गल है फोइतनोवा किनलक तो ओ रिस्पॉन्सिबल सब चीज के हई मिशवा तो कुमाजे अजगे धरा के पाछे बा सर ओके तो कुमाजे कोई उतर नहीं है जानी ई न निगोशिए करे बा ई न किनता ई न सब चीज करता तो ऊ ओब्लिगातो ऊ रिस्पॉन्सिबल
1: काहे के पिक्चर में तो ऊए लौकता जैसे जा जैसे बोलबा उही उही काम करता उही ओकरे नाम चलता वन
0: हां त ऊ दे और उही त खड़ा होके सब चीज करता त दिखल हिया उही चीज में कब ऊ एते फेयर करेला एगो प्रयत्नो करके कोनो चीज किने तो ओ रिस्पॉन्सिबल हाउ वुड मिया जो नहीं बा उ तो पाछे बा न उ तो कोई के नहीं जाने को देता तो देख लो हिया पूवे करे के ओकर एदा चीते फासिल हो पस कुता लो कता मैं जो नदमिया पाछे बगल बा खाली पुतनो वा जाने ला मैं ई तो नहीं जाने ना तो देख लो हिया कुछ चाहे ला तो पुतनो वा ओ रिस्पॉन्सिबल बा हमनी के कानून में
1: तो हाई में ऐसा रहेला कि मान ला एगो पुतनो के तू विदा करत हो उ चीज कीने के तो कॉन्फिडेंशियलिटी रहेला कि नहीं बोले कि हम कि न थी इस बात तोहरा विदा करत हई हई सब कॉन्फिडेंशियल रहेला
0: कॉन्फिडेंशियल रहल बा पस भी काहे मदा ते वा स्वाजरी करल बा पुतनोवा के न
1: अच्छा।
0: तो जाना था
1: नहीं मान ला जा जैसे तू बोलत हव जैसे उ जे रिस्पॉन्सिबल रही काहे के ओकर नाम चलता ओकर नाम में किनत हवन मान ला काल कुछो प्रॉब्लम हो जाए एगो इलीगल कुछो चीज हो जाए तो बोले सकी कि हम तो पुतनो हई
0: हाँ नहीं प्रयत्नो बा सकी बोले हम प्रयत्नो करते किसवा ना अभी देख लियो जो कब आ रहल तहु तो बोलू तो खाली प्रयत्नो रहल मैं जो कोंत्रा बनैले बा ऊ में बोला था कि रिप्रेजेंटे करता हौ आदमिया के और ओके त्वा नहीं रही रेलेवे करे के ओकर नाम जो मदतवा के
1: तो हाई सब कोंत्रा में लिखल जाला कि नहीं चाहिला नाम बोले के
0: नहीं सब... जे एगो माले है हा? तो उते एगो वकील के दे ऐसे एगो काम एक मजे ते एगो वकील फोसे उनको एगो बोली के एगो कॉन्ट्रा ऐसे बना के तो हजार गो तो रुपया ले वेला मैं ओकर कॉन्सिक्वेंस बड़का बा मतलब मैं उते एगो अबुका रही या वोई रही वो जाने ना कौन सी कैसे कौन सी दा कौन सी डाले ताकि कुमा जा कुवे करी दोनों बगल से तो हिया डाल दे ना उमे हई कॉन्ट्रा जोन बना हुआ था ओके दुआ नहीं बा फेटने वहां के रिलेवे करे के कौन आदमी के ओकर दे के जेकर करे था तो नहीं से क्यों बोले हुआ कोई जाए नुतेरू ही हाल पपीवा बनाए कौन तरह तो नुतेरा पूछी ना हाँ तोर नाम का है तोहरे है ना बोले एक बार नहीं बोले ला बोले हाँ ये हमरे है हई कामर कते दा चीते ओकर लाग देने सं शादी कर लो सब ओकर फॉर्मालिटी दे यो के तो हियाँ देख लो कबू बनावता ऊ जाने ला कि एक ना ता मटिया वो एगो दूसर पैतनो सिर भी करता मैं ये मटिया दूसर के है दूसर के नाम में एक मजे भी नहीं मैं लीगल मो पपीवा कोतरवा हुआ था नाम जुन बा पैतनोवा के कहीं दिख लो तब लेक वो आकुआ तब लेक वो कोतरवा नहीं ते मिने होई कुमाजे कहीं ता कोतरा नहीं बा जे नोटेर के आगल पपीवा हो लं रजिस्टर हो गल कोतरा ओकर नाम में हो गल तो वो प्रोप्रिएटर रहेला तो वो सब चीज जेने जैसे बोली सर ऊ कुमा जे आके कुमा जे रिस्पॉन्सिबल या अभी दू गो केस आ रखल लाकुर में नया नया अभी कुमार अपन सीते नहीं करब सर न मुँह तो ऊ आ रहा अनुमान ऐसे कुमा जे पैतनो में आल तो ही हमने सोचली सर कहीं ना हम कुमा जे गो हई करी सर
1: हमनी के जनता के जनाए के चाहिला कि कहाँ पर हई सेवी होला और ओकर कौन लीगल टर्म्स में देखबा तो ओकर लावतास देजावतास कैसे रहेला और जे मान ला जाए फोद करत हवा है नाम में तो कौन कॉन्सिक्वेंस रहेला है अभी थोड़ा घड़ी में जानब स कपिल देव रघुनंदन जी से काहे के प्रीत नो ही एगो

ऐसा हा कि लीगल बगल से यानी लाकू बगल से तोरा मिलेला परमिशन, पर ओकर बहुत बहुत कॉन्सिक्वेंस रहेला जेकर ध्यान में रखे के चाहिला। तो चलो आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावा जाओ, और है एक कार्यक्रम के हमनी के सहयोग प्राप्त हुआ था यूसुफ जी के टेक्निक पर, साथ ही साथ उरुसा बानू हमनी के संगे हवन हमार प्रोडक्शन असिस्टेंट, और शीतल लोबिन हमार प्रोड्यूसर जे है कार्यक्रम के तोहर तोहर ले पहुँचावत हवन सा। तो चला कार्यक्रम में एगो ब्रेक लेब जा गीत के, फिर उसे हाजिर होब जा आज की चर्चा कार्यक्रम में।

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं और आज हम बात कर रहे हैं फितनू, यानी अगर किसी मालिक ने, यानी एक व्यक्तिगत रूप से वास्तविक मालिक ने अगर किसी को वहाँ पर किसी कार्य के लिए, मतलब उन्होंने लीगली किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, चाहे वो जायदाद हो, ज़मीन हो या फिर गाड़ी हो या किसी चीज़ के लिए जब उनका नाम यूज़ किया जाता है, इसे कहते हैं फितनू। पर इसके एक बहुत अवैध कारण भी होते हैं कि किस रूप से लीगली या इलीगली इसका प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कई सारे केसेस को खुद रघुनंदन जी ने सॉल्व किया है, तो चला आज जानब सर कि ओकर लावांताज देजावांताज कैसे रहेला।
2: अरे पहला हमने देख ली सर लीगल, एगो कुमा जे गोदमी सकी लीगल में एगो फितनू करे, एगो फितनू बने से काल जाए कुछ ट्रांजेक्शन करे ई को रेख, तब तब फ्रॉड नहीं रही। अच्छा। एक एक्सेप्शन यही है। अब हम देखब सर इलेगालिते एगो फितनू के एगो कोंत्रा जे फितनू के है, वो जहाँ इलेगाल के मजे एगो ट्रांजेक्शन हुआ था। हमने के कानून बोलेला जे एगो आदमी सेवी करे को जाता एगो फितनू, वो एगो ट्रांजेक्शन करेला, तब ले फ्रॉड नहीं बा, वो कोंत्रा वा करे बा। तब मजे सब सकी इचिलीजे करे ऊ नमुआ फितनू।

0: बातों खरीदे
1: तो हैजा पर कानून देने से उन्हें पूछे लंच तोरा कहाँ से मिलल इतना पैसा तोर तो इनकम नहीं बा तो कैसे तोरा मिलता इतना पैसा
0: ओकर दुआ ही नहीं है आली हमी एगो कालेगो है एगो जमीन गप है खोजे तो कौन आदमी से हमके पूछे ए है कहाँ से तुके मिलल है पैसा हाँ एगो संगति यानी यार कोई सकी बोलिए तो ठग दे एगो बोली नहीं हो तो बोली पैसा नहीं बोली ना कि एगो पैसा चोरी कर बोली यार लिकुश में मिलल हमके लिकुश में हाँ एगो बड़का के लोथरिया तो नहीं सकी बताई बस कि काहे लोथरिया के तो सकी मांगे तो फेब तो लिकुशवा में तो यहाँ फेब नहीं बा बोले घोड़ा नहीं देखले एन पूछा रहल तो कितना पैसा दिले रही यही पैसा है घोड़ा के पैसा जो जितले रही उमे खरीद लें अब एगो चीज इलीगल के लीगल बन के मजे रीजों में बताओ था मैं हियाँ जो कुमा जब मिलल बा तब जो पैसा ओके कुमा जब दिले बा ओकर संगतिया के ई एगो कुमा जे मास्के करे के एगो फ्रॉड ब्लांसीमा करे के एगो लॉसन जो भाई एगो पैसा और जो ओके मिलल बा कि देख ई पैसा जो बा ई एगो पैसा लीगल हो मैं हियाँ कब कब एगो लंकित हो इसे देखल अभी रिसामा टेलीविजन में बतियाल लगाजे तुत में सब रह गया बड़का बड़का आदमी लोग बोले सन FCC के आगे जालन सन नहीं सकेलन सन बताई कि ई पैसा जोन से चीजवा खरीद ले होवन सन ई पैसा एगो पैसा लीगल है इलीगल के लिए फोर्ड के लिए जब एगो इतनो सर्वी करब तो ऊ चीजवा सब फिनियो जाला आली अब देखा का होला जे एगो आदमी एगो इतनो से एगो कॉन्ट्रा के एक्विजिशन कर लेबा खरीद लेबा एगो कुमा जे है एगो जमीन एगो लोटो या कोनो चीज के तो देखब ओके गवर्नमेंट ओके धोबा ऊ है के सेजी करे के एक बार ही नहीं देखा सीजी करके आके एक मजे FCC के ओकर हिया ओकर द्वार के आगे का कर ले वनसन सब लो तो हुआ बा एगो लंकित हुआ था ओके एक मजे आतान करत वनसन कौन आदमियाँ के एक मजे कैसे करी एक बगल लंकित हुएला सीजी करेला सन जब सीजी करेला उ का करेला सबकी कुमाजे ओके आदमिया के पुष्वीव करे सीजी कर ले भाई का ना तब ओके पुष्वीव करी ओके चैनला बता के इसे देखब ओके बोलावे लंसन आई के हुआ एक्सप्लिकेशन द तू कहाँ से तू ये पैसा अनला वो पुतनवा के गलबा है ये अब बहुत आदमिया तो पाछे बायो कोई ओके नहीं जाना
1: हाँ कोई नहीं जाना था
0: हाँ तो वो देख ला वो जाके हुआ ओके एक्सप्लिके करी कि कैसे ओके पैसा अब तो जनबे करेला जब ओके कुमा जे हाई आदमिया के पकड़ ला पेतनवा के जो किनलक ओकर में तो वो तक मजे लंकित हुआ करेलन सन सब किशों पूछियन सन तो बोले सन किरियोल में उमी कर देवेला सब के कर ले कौन ट्रांजेक्शन मारल कैसे तब का करेलन सन जो हौ आदमिया जो दिले रल है पेतनवा के वो तो रिजाशों जो तू ऐसे के खरीजे तब दोनों के बगल लंकित हुए अब हेकरो पैतनवा के एक मजे रही पैतनवा के वो भी सकी को दाने हो ये भी को दाने हुए कहाँ से पैसा कुमा जे नहीं है कर ले कुमा जे
1: इलिसिट
0: मिलल तो हियाँ देखब ओकर को था हुआ एगो अनिले हो जाला तो चीज हुआ इसी तब देखब का करेलन सन FCC का करेला ओके कब सीजी कर देला कब केस लाकुर पासे हो जाला तब सीजी कर देला तो वही लुतुआ बेच देवेलन सन बेच के पैसा लेके तो उपमा जब गवर्नमेंट के फोन में जाला ये देख ला एक एगो चीज जब पैतनवा अब तो ये तो हमने देख लेनी सर मैं पैतनवा के ओके का हुए ला अब तो हमने पहला चीज देख ली सर कि पैतनवा आल ओकर है आगे बस हुआ ओके देख लन सन एगो केस पुष्पीव कर लन सन पुष्पीव कर लन सन बाप अब ओके एगो ऑफेंस क्रिमिनल करी क्रिमिनल के मतलब जहाँ ला पुलिस पुष्पीव करेला ओके जब ओके ला पुलिस पुष्पीव करी और जीस या मजिस्ट्रा देखता कि वाह एगो कुमा जे ट्रांजेक्शन फोजिले रहल त का करी दोनों के बस वो तो रिवील कर दिल के ओके दिले रहल तो देखब हियाँ कोई सजा मिले लाकुल बगल से और ओकर सजा प्रिजों है प्रिजों शुरू रही 10 बरिस से 20 बरिस तक ओके मिली हाउ जोन पैतनवा सर्वी कर लेबा हाउ ओके देख लो पैतनो सर्वी
1: यानी दोनों के पारे मिलेला सजा
0: हाँ नहीं हाउ के कुमा जोन पैतनवा क्या रही देपा कौन कौन ट्रांजेक्शन वहाँ कर लेबा मैं ओकर वारिये करेला जीज एगो के कुमा जे शुरू करेला देख सके हमने के कानून में 10,000 से 20,000 तक या 50,000 तक अब उस जीज हुआ कब बैठेला मैं सवा तो वो दे सीधे करेला कि ऐसन कवा में एक कौन ओकर डिस्क्रिप्शन सेंटेंस

0: ओकर मजिस्ट्रा के हो वो कुछ करी हमने के कानून में बहुत सा सौतों से देखल कभी नहीं नेसेसर है कि ओके आदमिया के प्रिजों में डाल सके को लमान दे लमनो नहीं दे एगो कंडीशनल डिस्चार्ज दे नहीं कंडीशनल डिस्चार्ज नहीं दे दूसरा चीज एगो बोंद कंजुइट को मजे है ओके बोली करे के तो वो सब ऐसन कवा में नहीं दे कि बो कंजुइट करिए कि वहाँ चोरी करके बो कंजुइट करल जाए नहीं नहीं ऐसन का में ओके सजा देवेला है
1: कब ऐसन होल बा रघुनंदन जी मान ला जाए एगो व्यक्ति विदेश में हवन और हुआ से कोई के प्रतनो कर ले हवन और बोली हैजा पर तू जमीन किन लिए तोहर नाम पे किन लिए हम तोरा पैसा विदा करब तो ऐसन भी होल बा कबो
0: हम नहीं जानीला बाकी नहीं मैं तोरा बोलिया कर लीगल कौन सी है कैसे का हुएला ऐसन कवा में देखबा जे आदमिया हुआ देर से होई तो हिया प्रतनोवा प्रतनोवा के छाला बताई के कौन आदमिया है ना अरे जैसे बोलब सी बुझो बोले कुमा जे एगो अमिताभ ऐसन कर लेबा अमिताभ अनंगले तेर में बा तो ओकर नमुआ दे दिलक सब चीज लंकेट में हो गल बा एक के पुशवीव कर लेवन सन हां ओके तो नहीं सके सन पुशवीव करे काहे बस की विद इन ज्यूरिसडिक्शन नहीं बा मतलब देशवा में नहीं बा
1: नहीं बा
0: यहां से हुआ से नहीं सकी ना पुशवीव करे ओके एगो बोली के तो ओ हुआ रे में कोनो वक्त ओ हुआ से सी बोझो चलाल हिया ते देख बा कुमा जे है ओके पुशवीव करी बस वो केस पेंडिंग बा और नाम बा जैसे हमने बोले सा वांटेड वांटेड बा ना वो आदमीया ते देख बा हिया ओके पुशवीव करी अनसन
1: तब मान ला जा प्रेत नो जोन हा वो लीगल नहीं हा करे करे सकी अनसा कि नहीं करे सकी अनसा मान
0: ला करे सकी अनसा नहीं बोली सा पहला शुरू प्रेत नो लीगल हा एगो कंसिलम ओकर पर्पस ओकर बी जो चीजवा के
1: लीगल रहे के चाहिए
0: चाहे ला लेगा मैं कैसे मिला से हुई फौज से सब बिगड़ जाए
1: सब बिगड़ जाए
0: एक आदमी का जैसे हम दिखले सर एक बार कामे जैसे है ये था जक्षुआ जोन हो रहा जब उप मजक मज इलेगल कैसे कैसे को फोड है बस वो ब्लांसिया करता हो पैसवा जोन इलेगल ओके मिला रहल ओके करे के बता के मज ये बोला सा प्रूफ है तो यहाँ ऐसा काम में कुछ खरीदले हो इलीगल हो जाला जब एगो को के कानून देखेला कि कुमा जे हाँ एगो था साक्षों इलीगल है ऊ प्रतनोवा के तो जो चीज चीज खरीद ले बा वो देख बा कुमा जे सीजी हो जाला
1: जैसे जैसे प्रतनो कहाँ पर सेवी होला जैसे एगो जमीन किनत हुआ एगो गाड़ी किनत हुआ और कौन जगह पर प्रतनो के सेवी होला
0: एगो प्रतनो सब बहुत है कुमा जे है चीज में सेवी कर मैं जो हमने देख ली सर ये एगो कुमा जे जहाँ एगो मजे इलीगल में जैसे बोली ना पहले के जमाना रहल कब एगो देखब माँ बाप कैसे है पहला केसवा देखली सर हमने के जहाँ एगो मिसेवा खुशी रहन ओकर है कि एगो मामजिल के मजे ओकर कुंकुबिन जिसे हमने बोलिया सर ओकर बुढ़िया के नहीं जनावे कि देखे ये पैसवा जोन को मजे जमीनवा के नहीं सकेला कभी खरीदित हो ओकर नाम में पैसवा तो ओकर बुढ़िया के तो नहीं मिली ना जमीनवा तो के नहीं मिली ओकर नाम एगो एगो चीज ऐसने कहा तो बोली तू हे देख ऐसन काम में जमीनवा हम नहीं सकब जाके काल बोले हम तो के कादू देवत हैं बुढ़िया नहीं जाने अरे कोई जीवस हो जाए तो हूँ तो नहीं छाता ओकर बुढ़िया से एक सिपारी हुई के तो बोले देख जो हम तो के कुमार जाए इस जमीनवा में ये अवश्य नहीं हुए ये यहाँ नोमे करेला फितनों के ताकि उस जमीनवा ये जाके खरीजी मदमुआ ओकर नाम में आविक ले तेंशियों कि ऊ जमीनुआ एक दिन कैसे वो किसवा देख ली सा ओके गे तूने करी मिशीवा के ओकर से फिन से बेच दई तो देख ला हिया जगो ट्रांजैक्शन जो कर रहा था वंशन कुमा जब कुरे के नहीं बा बुढ़िया के नहीं मिला आई के खातिन एगो इलीगल करे के चीज तो मतलब ओके आई के
1: तब प्रतनो के मतलब द्वार रहेला मतलब मान ला एगो एगो व्यक्ति कोई के प्रतनो कर ले हवन एगो जमीन कीने खातिन उ जिस कीने खातिन ओकरा कर ले हवन उ बेचे सकी प्रतनो बेचे सकी
0: प्रतनो तब लिख ओकर नाम में हो जाला
1: हां हां
0: तो के प्रोप्रिएटर हुआ
1: वही
0: जब वो जो प्रोप्रिएटर हो गल बा प्रतनोवा में सिलमाई को कोतरा पैसा शुरू बोली से ना एगो अंडरस्टैंडिंग होएला हो आदमिया में मादवा में आर ई प्रतनोवा में कि देख वो कब सब चीजवा हो जाए तो नाम में डाल देले कोतरा तू ही की नत हुए मैं प्लीज एक दिन हम के तू ने करिए हैं वो जमीनवा खाली सर्वी कर ओकर नामे में प्रेत नो तू सर्वी करत हुए हमर नाम तोर में कैसे हो बोली सा है ये नाम दे पाई कैसे हुआ उसे
1: मान ला उको नो बेची या कुछ भी करी इलीगल करी बाद में हाँ मौदा नहीं जाना था तो उ सकी ओकरा पुशवीव करे
0: हाँ ओके पुशवीव करे कैसे हो केसवा में
1: हाँ।
0: बोली से ना मडमुआ जब ओके जमीनवा हो गल ओकर नाम में मिशवा पुशवीव कर लको के सके पुशवीव करी मिसिलमा अब
1: तोरा चाहिए लाएगो पापिये मतलब जे

0: बताई लीगल तरीके से कि तोहरा तोहर बा जैसे तू ओकरा प्रयत्नो कर ले हवा
1: और नई एक्सप्लिके करी कि नई बोले कर एकदम छीते ओके कुमार जे रिवील करे के आ एगो बोली के ऐसा एगो केस हो गल जक मा ओ आदमी वा अपन नाम में होई आदमी बोली नहीं हम कि नहीं हम अपन पैसा से सिपा ले ले हैला बैंक सिपा पैसा से भगत परिवार ई ओकर ह मैं हिया कौन कल से ट्रांजैक्शन कर ले बा हो आदमीया एगो ट्रांजैक्शन इलीगल हां सकी कभी देखब आके हो जो दे ले बा पैसा किने के ओ बिला जाए बस की काहे एकर नाम में बा ई बोली हमर हम किन ले हई बे एक बार केस में ही बोले लनसन जब करब एगो चीज एगो काम कुछ खरीद ले होई बा प्लीज रसी रख जे रसी सकी हो बुगवा पैतनवा बताई कि ओकर नाम में बा सब चीज मेम की ई पैसा दे ले बा तो नमुआ के कर नाम में बा जो नदमिया के रसी है बा जो उनके नाम के रसी बा
0: एगो प्रेव रही एगो एविडेंस रही
1: हां तो हिया देख ल उ जन सोच तो हिया एगो चीज ही बोल लेत है सर हमने के प्रोग्राम के आई मीडियम से कभी एगो आदमी के नई दिया प्रयत्न करे के पास की उ नाम सब उ प्रोपिएटी रह देख ल कानून तो जानी वो पोगे तेर है जो आदमियों के फिनेंसे कर ले बा दे ले बा पैसा वो समझना के नहीं तो कौंथा हुआ ओकर नाम हम एगो वकील रहती तो लड़ा के करती ऐसे ने को किस में तो हम तो बोली नहीं पूछनुआ कि है मैं सब बा है मिसेज इज ओकर नाम में सब बा एक बोला था सच बोला था मैं हिया हई का कर पूब बा ओकर नाम में बा कौंथा में बा जे है मैं ई इलीगल कर लग मैं वो नहीं हाँ मैं हिया सकी पपियोवा ओके कौंथ करे मैं जे पपियोवा नहीं रहत तो कौन प्रेव रहते कि मुझे को ट्रांजैक्शन ऐसे है तो देख ल तो एगो चीज इंपोर्टेंट है ऐसे का हमने एक्सप्लिक करेला सर एगो आदमी के बोले कि देख भैया जैसे हमने के सब भाई बहन लोग कम हमने के स्वयं करेला तो बोले तो और प्रोग्राम जोली जोली बा जोली जोली कौन से ही देवे ला आर क्यों कुमार जब बहुत चीज सीखी ला
0: और समाज में कबो कबो ऐसा हो जाला ढेर कोई नहीं समझे लन सर कि ऐसा का भी होल बा कि कोई तरह फितनो कर ले हवन तो ओकर कौन लीगल एक्शन लेवल जाला कैसे कैसे कुमार लीगली और इलीगली कैसे ओकर सेवी करे करत हवन ढेर कोई नहीं समझे लंसा कि कबो कबो तू नहीं जानत हवा सलमा जिन तोहर से है काम करावत हवन हो सके ऊ तोहर से इलीगल काम करावत हवा और तू नहीं जानत हवा ऐसा भी होल बा
1: होल बा एक बार केस बा और एगो चीज है हम तो बोलती कोई के कॉन्फिडेंस नहीं कर कोई रही पैतनो रही अरे एगो चीज है वक्त थोड़ा बा एगो बोली जा एगो आदमी एगो मौदा करे हम देखते हैं इसी बुजुर्ग अनंगले तेर में हई अब तोहरा हम जानी ला एगो चीज यहाँ घर जमीन सब बेचाता तो हम का कर ली तोहरा नोमे कर ली हमें गोर मदाते देख मदाते हुआ ओके कब नोमे होल बा कोई तो नहीं जाना था कि हम नोमे कर ली ना आले ई है कुरे जे पपिए हुआ हुआ रही नो तेर यहाँ गल हुई तो पापिए बोले ला तोहर नामे डाले के कर नाम में तीन कार आदमी यहाँ बोले ला हमरे नामे डाल मदाते हुए कि नमुआ में हई डाल देवे ला एगो बोली के वो आदमिया मर गल पोबिये तेरवा के है मदाते ना तब पसी मदाते हुआ हिया गलवा कर खरीजे हाँ जे ओके दिले हो एगो पापिए एगो आप वो के देख लो हुआ सोलिसिटर हई अनंगले तेर में हुआ दिले हो कि कमकुआ ई आदमिया के मदाते करेला तो हिया जाके जाने का करे लनसन मदाते हुआ किन लेवे लनसन अपने नाम में हुआ मिलल बा नहीं जाके बोली वो आदमिया के हमर के ऐतिल माम के नोमे कर ले भाई वो मद आते हैं ओकर नमुआ में हम खरीदते हैं जाके ऐसा करी कि वही वही खरीदता तो यहाँ तक सबको इलीगल में दिखब तो लौकी तो वही तो पोबियतेर हुआ है
0: जरूर
1: तो ई कब मजा का ऊ पोबियतेर हो गल तो कुछ करी एक बार आदमी के कब एगो मदा देब एगो दुआ देब बाप तोरा चाहे बहुत कॉन्फिडेंस रहे के उदमिया में कहा कि वो काल नहीं कि मैं तोहरा चोरी कर दे मैं आज के जमाना में जहाँ जीता ही सर जहाँ देख बस दुनिया कैसे हुआ था सब
0: कब कब एगो एगो व्यक्ति के नियत बदल जाला नहीं जन्म और कब तोरा प्रॉब्लम में एक डाल दे नहीं नहीं जन्म आज हाँ आज के कार्यक्रम के समाप्त करे के समय हो गल बात वाइंड अप करब सर तो हमने के हमार श्रोता लोगन के कौन एडवाइस तू देवत हवा फितनो करे के नहीं करे के और जे करे के तो कौन चीज ध्यान
1: हम तो बोलती पहला चीज जैसे है हमने के कानून बेलेला लिखल कानून है सब एगो आदमी के एगो फितनो नोमे करे मैं जो ट्रांजेक्शन वहां तू करब ओके खड़ा होके कराई के चाहेला लीगल ताकि लीगल रही तो काल खो तो हो कि कोई नहीं सके छुए न उ भी सके छुए न सेजी हो न कुछ हो देख तब तक सगब अपने ही से अपन काम कर नहीं नुमे कर

0: एगोद मी के प्रतनो मैं होलिए प्रतनो में एगो चीज करब कुमा जब माकिए करे के एगो एक साफे लेगाल इलेगाल बनाई के बा दू हला सोचिए बस कि जैसे कानून बा जैसे कानून बा
1: हाई में फंस जाइब
0: ई में फंस जाइब सब चीज जुन रही सब बिला
1: जाइब तो बिल्कुल है सब चीज बहुत समझे के बहुत जाने के और निमन से एगो एडवाइस लेवे के बहुत जरूरी हो डाला। तो आज के कार्यक्रम बिल्कुल हैजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा। हमनी के संगे हमर टीम में रहल यूसुफ, साथ रहल उरुसा और शीतल लोबिन हमनी के प्रोड्यूसर। है कार्यक्रम के तोहले पहुँचाई में उनकर सहयोग हमनी के प्राप्त होल। और बिल्कुल है कार्यक्रम के फेरों से तू सुने सकब दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर और 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच एक प्रसारण रही MBC के तीसरा चैनल पर। तो एक संगे आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करब जा। बैरिस्टर कपिल देव जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा और जितना श्रोता जितना दर्शक हमनी के सुनलन देखलन उन सब कोई के धन्यवाद। शुभ दिन। एगो फेरों से नवा कार्यक्रम के साथ उपस्थित रहब जा तबले हमनी के अनुमति दीजिए। नमस्ते। शुभ दिन सभी को।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। पानी के गंभीर संकट के कारण कोंलुवियो, एमिटाज, कोंफुको और सेंपोल के निवासी सड़कों पर उतर आए। छह दिनों से पानी न मिलने और प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल को संभालने के लिए पुलिस और एसएमएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। बुधवार 7 अक्टूबर से भावी लाभार्थी स्टेट एज पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल गुरुवार 8 अक्टूबर शाम 4 बजे तक प्लेटफॉर्म musap.gov.mu.org पर लगभग 1000 आवेदन दर्ज किए जा चुके थे। सामाजिक सुरक्षा मामलों के जूनियर मंत्री कुकान पाकापेन का कहना है कि मंत्रालय को लगभग 20,000 ऑनलाइन आवेदन मिलने की उम्मीद है। वे स्पष्ट करते हैं कि ये नई व्यवस्था, जिसके तहत 1 जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन मिलना शुरू होगी, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस साल 60 वर्ष के हो रहे हैं। आवेदन उनके 60 वर्ष के होने से 3 महीने पहले किया जाना

0: ई रिटायरमेंट पेंशन का लाभ उठा रहे हैं उन्हें कोई नया आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कुगान पागापे ने यह भी कहा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। 18वें यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट में 2 महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में मॉरिशस में तैयारियां तेज हो गई हैं। कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका इस सप्ताह अपना दूसरा तकनीकी दौरा कर रहा है। कार्यक्रम सहभागिता, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, प्रोटोकॉल आगामी 6 से 9 दिसंबर तक SBICC में होने वाले इस बड़े आयोजन से पहले हर चीज की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। और विदेश में फ्रांस में शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पेरिस समेत देश भर में कई जगहों पर गुरुवार को भी प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जबकि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने और आंसू गैस का इस्तेमाल करने की खबर है। छात्रों का ये आंदोलन तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu. kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस सुनते रहो।
3: चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पे इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। श्रोताओं, चलिए हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस प्रोग्राम में। तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा, आज का दिन शुक्रवार है और आपके लाए हैं शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत, सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का नाम लेंगे और आपको पता है भगवान गणेश जी जो है हम सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि जो भी बाधाएं आती हैं हमारी ज़िंदगी में वो सब टल जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।

0: तो चलिए श्रोताओं, 10:08 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुनते हैं शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। आज का विषय है वैदिक संस्कारों में आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद का अर्थ है आयु जमा वेद। इन दो शब्दों के मेल से आयुर्वेद शब्द बना है। आयु का अर्थ है जीवन की अवधि, वेद का अर्थ है ज्ञान। आयुर्वेद का अभिप्राय है सुखमय जीवन जीने की पद्धति। जीवन कैसे जिया जाए इसका ज्ञान आयुर्वेद से प्राप्त करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कथन है कि वेद में ही आयुर्वेद का मूल है। आयुर्वेद में केवल औषधि विज्ञान नहीं अपितु जीवन जीने की शैली भी है। आयुर्वेद के तीन स्तंभ हैं जिसे त्रिदोष कहते हैं, वात, पित्त और कफ। वात का अभिप्राय है वायु, जो शरीर में गति उत्पन्न करने का कार्य करता है। पित्त का अभिप्राय है अग्नि, जो भोजन पचाने का कार्य करती है। कफ का अभिप्राय है जल और पृथ्वी तत्व, जो शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। वात पित्त कफ के संतुलन में ही शरीर स्वस्थ बना रहता है। इनके संतुलन भंग होने से शरीर बीमार पड़ जाता है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? चरक संहिता में लिखा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं बीमार व्यक्ति के रोगों को ठीक करना आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। आयुर्वेद में अनेक औषधियों और रोगों के नाम पाए जाते हैं।

0: ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में अनामीवा शब्द आया है। अनामीवा का अर्थ है जहाँ रोग न हो, कोई पीड़ा न हो, अर्थात अनामीवा का विशेष अर्थ होगा रोग मुक्त अवस्था। अथर्ववेद में उल्लेख है अनामीवा सर्वे भवन्तु, अर्थात सब लोग रोग मुक्त हो। अनामीवम सर्वम अस्तु, हमारा घर, हमारा अन्न, हमारा शरीर सब रोग मुक्त हो। वैदिक संस्कारों में एवं हवन यज्ञ में जो पौष्टिक तत्वों एवं रोगनाशक औषधियों का प्रयोग होता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि संपूर्ण वातावरण स्वच्छ और रोग रहित हो, हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। वैदिक संस्कारों और वैदिक यज्ञों में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन को पवित्र और व्यवस्थित बनाने के लिए 16 संस्कारों का विधान है। सभी संस्कारों का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि है और आयुर्वेद ही वह विज्ञान है जो इस उद्देश्य को पूरा करता है। आयुर्वेद को जीवन का वेद कहा गया है। संस्कारों का पहला भाग गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कार है। इन तीनों संस्कारों का संबंध गर्भ और गर्भ में विकसित होने वाली संतान से है। गर्भाधान की प्रक्रिया एवं गर्भ की रक्षा आयुर्वेद से ही गृह सूत्रों और संस्कार ग्रंथों में आई। आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि गर्भवती स्त्री का आहार विहार कैसा हो, अपनी दिनचर्या का पालन कैसे करें, कौन सी औषधियों का सेवन करें और किन किन बातों से परहेज करें ताकि संतान बुद्धिमान, स्वस्थ और दीर्घायु हो। संस्कार विधि में भी गर्भ संबंधी आयुर्वेद की बातों को अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से समझाया गया है। जात कर्म और नामकरण संस्कार में भी आयुर्वेद की झलक मिलती है। जात कर्म का अर्थ है जन्म के तुरंत बाद का कर्म। जात कर्म संस्कार में नवजात शिशु के जीभ पर सोने की शलाका द्वारा शहद से ओम लिखा जाता है और शिशु के कान में वेदो असीति शब्द सुनाया जाता है। पुनः शिशु को शहद चटाया जाता है जिसे मधु प्राशन विधि कहते हैं। आयुर्वेद में मधु व शहद को औषधि माना गया है। मधु रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बुद्धि को तेज करता है। यहाँ पर एक सीख मिलती है कि मनुष्य को अपनी पवित्र जिह्वा का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई और मीठा बोलने के लिए करना चाहिए। स्वाद और शब्द हमारे जीवन को नित्य प्रति प्रभावित करते हैं। शहद सुस्वाद और अमृतमयी औषधि का प्रतीक माना गया है। वेदो असीति तरंग रूपी औषधि एवं शब्द ब्रह्म का संकेत माना गया है। पहले लोग सोचते थे कि मुंडन संस्कार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, परंतु यह धार्मिकता से जोड़ दिया गया है ताकि इस संस्कार को अनिवार्य रूप से किया जाए। आयुर्वेद के अनुसार यह शिशु के लिए एक चिकित्सा है, इसे फुल हेड हाइजीन और ब्रेन स्टिम्युलेशन के लिए किया जाता है। मुंडन संस्कार शिर की शुद्धि और मस्तिष्क के विकास के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में सिर को उत्तम अंग कहा गया है। बाल ज़्यादा बड़े होने पर पसीना, खुजली, फोड़ा फुंसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप छोटे बच्चों में पित्त और कफ बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मुंडन करने से सिर ठंडा रहता है, दिमाग शांत रहता है। मुंडन न करने से जूं, डैंड्रफ, जटा और इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद की मान्यता है कि मुंडन संस्कार करने से शिशु की आँखों की रोशनी तेज हो जाती है और दांत निकलने में सहायता मिलती है। मुंडन संस्कार में हवन करने का विधान है। घी और रोगनाशक द्रव्यों के प्रयोग करने से रोगाणुओं का नाश होता है। मुंडन के बाद बच्चे के सिर पर प्रतिदिन तेल लगाना चाहिए, यही तो आयुर्वेद की दिनचर्या है। इसी प्रकार कर्णवेद संस्कार केवल श्रृंगार के लिए नहीं, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार यह नसों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। जनेव व उपनयन संस्कार को देखें तो उपनयन के समय ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन का सेवन और दिनचर्या का पालन आयुर्वेद पर ही आधारित है। विवाह संस्कार में भी आयुर्वेद की झलक है। विवाह संस्कार केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, अपितु स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण का आधार है। विवाह संस्कार से पूर्व गुण कर्म स्वभाव एवं प्रकृति का मिलान आवश्यक बताया गया है। जिस कुल में भयंकर रोग, अनुवांशिक रोग व रक्त संबंधी दोष हो तो उस कुल में विवाह करना वर्जित माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों को इसलिए देखना चाहिए ताकि स्वस्थ और दोष रहित संतान उत्पन्न हो। विवाह संस्कार में मधुपर्क ग्रहण करने का विधान है। मधुपर्क भी एक आयुर्वेदिक पौष्टिक आहार है, एक औषधि है। इसमें 6 गुणा दही, 4 गुणा मधु अथवा 4 गुणा शुद्ध गाय का घी, इन तीनों के मिश्रण से मधुपर्क बनता है। मधुपर्क एक औषधीय आहार है। विवाह से पूर्व हल्दी के उपटन लगाने की परंपरा है। हल्दी केवल श्रृंगार करने का द्रव्य ही नहीं, अपितु यह एक एंटीसेप्टिक और स्वास्थ्यवर्धक औषधि भी है। हल्दी रक्त को शुद्ध करती है और त्वचा को कांतिमय, स्वस्थ, रोग रहित और सुंदर बनाती है। अंत्येष्टि कर्म मृत शरीर का अंतिम संस्कार है और यहाँ भी आयुर्वेद पंचमहाभूत का सिद्धांत बताता है। अंत्येष्टि कर्म मृत शरीर का अंतिम संस्कार है और यहाँ भी आयुर्वेद पंचमहाभूत का सिद्धांत बताता है। यह पार्थिव शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से बना है। अग्नि क्रिया के द्वारा उसे फिर से उन्हीं तत्वों में विलीन कर दिया जाता है, उसी को अंत्येष्टि कर्म कहते हैं। अंत्येष्टि कर्म में औषधीय प्रयोग मृत शरीर के दाह के समय घी, चंदन, आम की लकड़ियाँ, औषधि कारक सामग्रियों का प्रयोग केवल धार्मिकता का संकेत नहीं, अपितु इनसे निकलने वाली ऊर्जा रोगाणुओं को नष्ट करता है और शरीर के तत्वों को प्रकृति में विलीन कराने में परम उपयोगी सिद्ध होती है। अंत्येष्टि कर्म के बाद घर को पुनः स्वच्छ किया जाता है। स्नान के पश्चात पुनः यज्ञ करने का विधान है। उस यज्ञ से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। शोक से युक्त परिवार को धैर्य और शांति की अनुभूति होती है। दुखी मन को शांत करने के लिए यज्ञ करना एवं सांत्वना प्रदान करना एक आयुर्वैदिक तथा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है। वैदिक संस्कार शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को संस्कारित करते हैं और आयुर्वेद शरीर, मन और बुद्धि तथा आत्मा को स्वस्थ बनाकर उस संस्कार को धारण करने योग्य बनाता है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

10:21 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोता भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है कि कुछ ही दिनों में हम नवरात्रि पर्व मनाएंगे, और आपको पता है कि ये पर्व जो है बहुत ही धूमधाम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है मॉरिशस में। तो चलिए, आज है शुक्रवार, शुक्रवार का दिन भी हम समर्पित है। जी हाँ, आज का दिन समर्पित है भगवान माँ दुर्गा को। तो चलिए, चंद भक्ति गीत उनके नाम हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में।

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। आपको पता है कि माँ दुर्गा हमें ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है और उनके नव रूप को हम पूजते हैं और हर एक रूप का अलग अलग जो है सीख हम पाते हैं। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं ये अगला भक्तिगान अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

उनके नव रूप को जब हम पूछते हैं तो हर एक रूप का अलग अलग महत्व जो है हमें संदेश देती है। और माँ जो है जितने भी अस्त्र शस्त्र जो है उनके हाथों में होती है, हर एक अस्त्र और शस्त्र से हमें सीख भी मिलती है। तो चलिए श्रोताओं, इन 9 दिनों में हमें श्रद्धा के साथ हमें माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है विश्वास के साथ।

चलिए श्रोताओ, जाने से पहले आइए सेंट्रल एक्स बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुने मेरठ के रहने वाले निवासियों को, जिनमें विलाशो, दुमोरिस, दुसंगुलेट, उत्पाया, मेबर्ग, सिम के आसपास के

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणी, सभी को नमस्कार। बुधवार 7 अक्टूबर से भावी लाभार्थी स्टेट एज पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुरुवार 8 अक्टूबर शाम 4 बजे तक प्लेटफॉर्म musap.gov.mu.org पर लगभग 1000 आवेदन दर्ज किए जा चुके थे। समाज सुरक्षा मंत्री जूनियर मंत्री कुगान पाहापेन का कहना है कि मंत्रालय को लगभग 20,000 ऑनलाइन आवेदन मिलने की उम्मीद है। वे स्पष्ट करते हैं कि ये नई व्यवस्था जिसके तहत 1 जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन मिलना शुरू होगी, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस साल 60 वर्ष के हो रहे हैं। आवेदन उनके 60 वर्ष के होने से 3 महीने पहले किया जाना चाहिए। पानी के गंभीर संकट के कारण कॉलोव्यू, एमिताज, कॉफुको और सैंपल के निवासी सड़कों पर उतर आए। 6 दिनों से पानी न मिलने और प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण माहौल को संभालने के लिए पुलिस और एसएमएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। 18वें यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट में 2 महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में मॉरिशस में तैयारियां तेज हो गई हैं। कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका इस सप्ताह अपना दूसरा तकनीकी दौरा कर रहा है। आगामी 6 से 9 दिसंबर तक SVICC में होने वाले इस बड़े आयोजन से पहले हर चीज की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। और विदेश में सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को धमाकों के बाद धुआं उठता दिखाई दिया है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे पर खड़ा एक विमान हुती के मिसाइल हमले का

शिकार हुआ और उसमें आग लग गई है। इसके चलते वहां पर विमानों का आवागमन रोक दिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 63 रोड दे पॉम्पलमूस सेंट क्रॉ पोर्टलुई में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रानी बोगाली पैदाइशी नाम कैलाश और जो इंदिरा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है।

0: हार्ट हाफ पॉस्ट वन। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

आउज़ बिल्लाही मिन अश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला बहुत गौर से सुनता है, फिर वो अपना दर्द किसी और को नहीं सुनाते हैं। मौजूद सामीन, उम्मीद है आप फजल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को। हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। मौजूद सामेईन, आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, नातो सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। कुरान पाक की फजीलत बेशुमार है जो अल्लाह के कलाम और रहनुमाई का ज़रिया है। कुरान पाक हिदायत, नूर और शिफा है जिसे पढ़ने, समझने और अमल करने से दुनिया व आखिरत की कामयाबियां हासिल होती हैं। कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तो आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल कहफ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

सदक अल्लाहु अज़ीम। अभी आप समाअत फरमा रहे थे सूरह अल कहफ़ की तिलावत। ऐ पाक परवरदिगार हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन।

वो रब करीम जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बंद हुजरे में बेमौसम फल भी भेज सकता है, जो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में साहिब औलाद बना सकता है, वही रब करीम हमारी ज़िंदगी में ख़िज़ा ख़त्म करके बाहर भी भेज सकता है, क्योंकि वो क़ादिर है, वो क़दीर है, मुक़्तदिर है। बस उस पर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जैसा तवक्कल रखें कि वो पाक परवरदिगार किसी भी मोड़ पर हर चीज़ हर काम करने पर कातिर है। मौज़ सामईन, इस वक्त इस स्टूडियो की घड़ी में 11:34 हो चुके हैं। जुम्मे का दिन है, जी हाँ, माह रबीउस्सानी का आखिरी जुम्मा आज माह रबीउस्सानी की 27 तारीख है, अक्टूबर की 9 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं, 5251-7005। इसी के साथ आइए समाप्त फरमाइए एक ऐलान। सनीचर 10 अक्टूबर, जी हाँ, सनीचर 10 अक्टूबर शाम के 4 बजे उर्स शरीफ हज़रत सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम किया जा रहा है आलिमिया कॉलेज हाईलैंड्स फिनिक्स में। तमाम ख़वातीन हज़रात को शिरकत की दावत है।

जुमे का दिन अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और मगफिरत की उम्मीदों से भरा हुआ दिन है, मुबारक दिन है, जिसे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दिनों में बेहतरीन करार दिया है। गुज़र रहा है ज़माना, संभलने की घड़ी है, खुदा के दर पे झुकने की यही तो ज़िंदगी है। ना जाने फिर मिले ना मिले ये जुम्मे की साथ, दुरूद पढ़ लो कि इसमें बड़ी बरकत रखी है।

मौज़ सामीन, जुम्मा महज़ हफ़्ते का एक दिन नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए इज्तिमा, इबादत, ज़िक्र इलाही और रूहानी तरबियत का एक अजीम मौका है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अल जुम्मा की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, ऐ ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जा हो जाओ और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, यही

ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। ज़रा गौर फरमाइए, हमारा रब हमें दुनिया की मसरूफियात से निकाल कर अपनी इबादत की तरफ बुला रहा है। हम सारा हफ्ता दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हैं, कभी रोज़गार की फ़िक्र, कभी औलाद की फ़िक्र, कभी बीमारी की परेशानी और कभी घरेलू मसाइल। लेकिन जुम्मे का दिन हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया के तमाम काम अपनी जगह, मगर अपने रब से ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ जुम्मे का दिन है, बहवाला सही मुस्लिम शरीफ। इसीलिए हमें चाहिए कि इस दिन नमाज, तिलावत कुरान पाक, दुरूद पाक, दुआ और नेक आमाल का खुसूसी एहतराम करें। आइए इसी के साथ समाप्त फरमाइए एक और ऐलान। मंगल 13 अक्टूबर खुसूसी महफिल 11वीं गौस बड़ा का एहतमाम किया जा रहा है। सुबह 10 बजे अलमदीना हॉल कॉन्फोको फिनिक्स में उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

थोड़ी देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ए अरहमुर राहिमीन, आज जुम्मतुल मुबारक के इस बाबरकत दिन में हम तेरे आजिज़ बंदे तेरे हुजूर हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, हमारे मुल्क मॉरिशस पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे मुल्क में पानी की कमी है, ज़मीन बारिश की मुंतज़िर है, हमारे खेत बागात और दरख्त तेरी रहमत के मोहताज हैं। या अल्लाह, तू चाहे तो खुश्क ज़मीन से चश्मे जारी कर दे, तू चाहे तो बंजर ज़मीन को सरसब्ज कर दे, तू चाहे तो आसमान से रहमतों की बारिश बरसा दे। या अल्लाह, हम तेरी रहमत के मोहताज हैं, तू किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारी ख़ताओं को बख्श दे और हमारे वतन के आसमान पर रहमत के बादल बारिश भेज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

श्री वेंकटेश्वर स्वामिनी भक्ति तो प्रार्थिस्ते कष्टालु तुलगी मनसुकु प्रशांतता लभिस्तुंदनी भक्तुला नम्मकम। भक्तुलु तम कोरिकलु नेरा नेरिना तरवाता स्वामी वारी की मुक्कुलु चेल्लिंचुकुंटारू।

回首从前，曾经是莽撞少年，曾经度日如年，我是如此平凡，却又如此幸运。我要说声谢谢你们，早

回首情已远，身不由己在天边，才明白爱恨情仇最伤。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद।
2: चलिए शो क्या आपकी पसंद कार्यक्रम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे हम आपके आग्रह अनुसार और आप सभी सुनने वालों को

चलिए श्रोता, हो आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। सुदेवी जी है वाकवा की रहने वाली, हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है। ये अगला गीत जाने वाला है त्रियोला की दीदी ललिता के लिए। कुशल परिवार है दीदी सुनीता देवीना माला बिंदु मालेंगा के कृष्ण कृष्णी प्राणिता कामगतन परिवार कुआ परिवार खागुबा परिवार जालू।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। अगला गीत जो है हमारे साथ इस समय जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए ये अगला गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय। जी हाँ, इस समय विश्वानी डुमन जी है वाकवा की रहने वाली। ये गीत जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए, उनकी बहनों के नाम इंदिरा है, शारदा, साथ में उनकी सहेलियाँ नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में गीता जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, विद्या जी है यूनियन पार्क की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए ये अगला गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए। जी हाँ हमारे साथ इस समय जो है दीप चाची कुमारी का जन्मदिन है। तो ढेर सारी विशेष जो है आई है बबीता की तरफ से। हेमंत है, भारती, किरण, वैशाली है, बेटा है प्रकाश, समस्त नामा परिवार है लाफलोगा के रहने वाले और साथ में यूनियन पार्क के रहने वाले समस्त नामा परिवार है। तो बहुत ही बढ़िया सा गीत जो है हम चाची कुमारी जी के जन्मदिन के अवसर पर चला रहे हैं। एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, जितने भी लोग आज जो है अपना जन्मदिन मना रहे हैं, एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया सा गीत है, इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं।

आपकी पसंद का कार्यक्रम श्रोताओं, इसे हम जारी रख रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर। अगला गीत हमारे साथ जो है इस समय दे रही है आप है सरिता, जो है कतुबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ रहती है। तो चलिए अगला गीत उनकी फरमाइश पे हम चलाने वाले हैं। साथ में त्रिवेणी जी, गुलेंस की रहने वाली, उनके पति है अनिल जी, सभी मोहन परिवार के लिए ये अगला गीत। केश जी है कतुबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, और उनकी दो बेटियां हैं नेहा नितिशा, उनके दामाद है एल्विन, और उनके समस्त परिवारों के लिए बहुत ही प्यारा सा गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में।

0: आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज सुबह 9 बजे तक 184,000 से ज्यादा करदाताओं ने टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म सुपुर्द कर दिया था। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी याद दिलाती है कि मोहलत के ढल जाने पर जो लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे उन्हें पेनाल्टी लगेगी। करदाताओं की मदद के लिए इस सप्ताहांत को खास तौर पर पोर्टलुई का दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा और 15 अक्टूबर को रात 8 बजे तक खुला रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक टैक्स नहीं भरा है उनके पास ऐसा करने के लिए देर से देर 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक की मोहलत है। फरवरी 2025 में दिलावर के मकान पर 114 मिलियन रुपए से भरे लगेज के सिलसिले में जांच जारी है। इसके तहत आज श्रीमती कविता जगन्नाथ आज सुबह फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मुख्यालय पहुंची। उनके साथ सितंबर 2025 में पूछताछ की जा चुकी है, जिस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि वे इसके बारे में अन्य जानकारियां देंगी। उनके वकील उनके साथ आज मौजूद रहे। उनके साथ पूछताछ 14 अक्टूबर को जारी रखी जाएगी। आज विश्व डाक दिवस है। इस अवसर पर मॉरिशस पोस्ट द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 20 नवंबर तक आप पोर्टवी के पोस्टल म्यूजियम में इसका दौरा कर पाएंगे, जहां आप दशकों से देश की डाक सेवाओं में हुए बदलावों और विकास से रूबरू होंगे। विदेश में मलेशिया में घने धुएं के कारण सभी स्कूल बंद किए गए हैं, गतिविधियां खास प्रभावित हैं। इंडोनेशिया की जंगलों में पिछले हफ्तों से लगी भीषण आग के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ये धुआं सिंगापुर और फिलीपींस तक भी जा पहुंचा है, जहां वायु प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड पार कर गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रारो दामिचे में 79 साल के 79 years old के श्री कौपानेन स्वामी तंजापेन जो विष्णु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी शाम 5 बजे उनकी पत्नी विनोदा मंगापति के मकान रारो दामिचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 5 PM। आलेजाक घोंबा में 88 साल के 88 years old के श्री सन्मत गंगा बिसुन पैराशिनाम बुधन और जो मामाहा मेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान आलेजाक घोंबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट हाफ पास्ट नून। पेटिट काबान कौन दे मास्क पावे में 78 साल के 71 years old के श्रीमती ऋषि कुमारी दसोई पैराशिनाम गोपुल और जो ऋषि के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विराज दसोई के मकान पेटिट काबान कौन दे मास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौन दे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है। Your news on NBC Play.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम सपहर के 3:04 हुए हैं। आइए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। रेजिडेंस

0: निवासों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों की प्रतिक्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है और ये आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।
1: आपकी पसंद
0: तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे में ये अगला गीत हमारे साथ इस समय जो है हम ये अगला गीत चलाने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया सा गीत जो है हम फिल्म नमक राम से लिया गया ये गीत जो है जाएगा हमारे साथ राधा जी है बिची वैसे सैंपिया की रहने वाली साथ में है गांव गुप की सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

जी है, आप भोपाल की रहने वाली है। ये गीत जो है आपके शोहर कसम के लिए, साथ में है आपकी बहन आंसू, भाई आज़ाद है, साथ में आपकी भाभी है सैबुन, साथ में है आबिद और सबीना। तो इन सभी श्रोताओं के लिए ये प्यारा सा गीत, फिल्म जो है लैला मजनू से लिया गया ये प्यारा सा गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, एक सालगिरह गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और ये प्यारा सा गीत जो है बर्थडे गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए। आप हमारे साथ, लीला जी है बुआशेरी की रहने वाली, ये गीत जाएगा संजय भंजन जी के लिए जो कि लाफलोगा के रहने वाले हैं, साथ में है उनकी पत्नी प्रीति है, दो बेटियां खुशी है नंदिता जो इस समय कनाडा में है, लोचन परिवार, चिकोरी परिवार, भंजन परिवार साथ में है, जहां बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त परिवारों के लिए संजय जी के नाम उनके जन्मदिन पर। तो चलिए एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से भी आपकी लंबी उम्र की कामना हम करते हैं। तो चलिए ये अगला गीत जो है बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक। फ़ोन नंबर वही है 4028085। तो बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है आपके नाम इस समय हम कर रहे हैं। तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा नज़ाना इन समस्त श्रोताओं के नाम हम कर रहे हैं। फिल्म का नाम है मीत मेरे मन की।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये अगला गीत फिल्म मकरांति से लिया गया। जाने वाला है हमारे साथ दिलीप जी हैं कुंगोमा के रहने वाले, हमेशा हमारे साथ जो है जुड़े रहते हैं। तो चलिए ये अगला गीत जो है उनके नाम उनके सभी परिवारों के लिए, संगीता है कृष्णवी, योगेश, कविता, निशान, मनीषा, अरव, इंदिरा। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत फिल्म प्रेम रोग से लिया गया और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ इस समय। जी हाँ, हमारे साथ इस समय आप है सुनीता जी, प्रोविडेंस की रहने वाली। ये गीत जाएगा आपके पति संजीव के लिए। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। अगला गीत जो है जाने वाला है राजा लक्ष्मण के लिए, लफलोगा के रहने वाले हैं, और ये गीत जो है उनकी पत्नी माला के लिए बेटी है प्रार्थना, बहन है मानती और भगिनी है उर्मिला। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चलाएंगे। प्यारा सा गीत जो है जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम चलाएंगे।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मोइन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है ख्वाया से। अगला गीत नीरव बेनी के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं भाई निहाल की तरफ से। येशना है साथ में अविनाश, अविनाश उनके पापा है, येशना है उनकी मामा, दादी है अविनाश है, नीलम है, निया, निक्षु, दादा चान है, दादी मोन है, तो इन सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए एक बढ़िया सा गीत हम नीरव के जन्मदिन पर चला रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू नीरव।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं अंतिम नजाना आप सभी सुनने वालों के नाम, और बहुत ही खूबसूरत संगीत जो है जाने वाला है हमारे साथ, जो है अनिता जी जुड़ी हुई है साथ में है उनकी बहन की तरफ से भी ये अगला गीत हम चलाएंगे। तो खूबसूरत सा नजाना जो है तीसरी कसम फिल्म से लिया गया, और ये जरा सा गीत जो है इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो जाएगा। तो चलिए साथ निभाने के लिए धन्यवाद, और ये प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सब भी सुनने वालों के लिए, और ये हम आपको इशारा करें कि कुछ ही घड़ी में हम चलाएंगे

0: मोहतशम सामईन, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज हैं। ये रेडियो मॉरिशस हैं और आप इस वक्त महव समात हैं खास गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम अदब, तहजीब, मोहब्बत और खुशबू उर्दू से मुअत्तर। इस दिलनशी बज़्म में हम आप तमाम लोगों का दिल की अता गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। याद रहें, ये प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ज़ेर एहतमाम नशर किया जाता है। जिनके किरदार से आती हैं सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हैं सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। कहते हैं कि चिराग खुद जलता है मगर दूसरों की राहों को रोशन करता है। उस्ताद भी ऐसा ही एक चिराग हैं जो अपनी मेहनत व मुशक्क़त, अपने इल्म से नस्लों के मुस्तकबिल को मुनव्वर करता है। सामईन, हर साल 5 अक्टूबर को यौम असातिज़ा मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से आज का हमारा ख़ास प्रोग्राम उन अजीम असातिज़ा के नाम जो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि ज़िंदगी जीने का सलीका, ख्वाब देखने का हौसला और कामयाबी की राह भी दिखाते हैं। ज़रा तस्वुर कीजिए, एक बच्चा जब पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। वो उस्ताद ही हैं जो उस नन्हे से जहन में इल्म का चिराग रोशन करता है, उसके सवालों को सिमत देता है, उसकी गलतियों को सवारता है और उसके ख्वाबों को परवाज अता करता है। इसीलिए कहते हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह जरूर बना देता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए असातिज़ा की शान व अज़मत में एक होनहार तालिबा ज़िबा दोगाहिद की ज़बानी एक खूबसूरत नज़्म समाअत करते हैं।
1: अस्सलामु अलैकुम सामईन, मेरा नाम ज़िबा दोगाहिद है। मैं सिवा बापू SSS के ग्रेड 8 की तालिबा हूँ। आज

0: योम असातिज़ा के मौके पर मैं आपके लिए एक खूबसूरत नज़्म पेश करने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं असातिज़ा की शान में एक दिलकश नज़्म। शुक्रिया। कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर इल्म सिखाते हैं हमारे उस्ताद। तोड़ देते हैं जहालत के अंधेरों का तिलिस्म, इल्म की शमा जलाते हैं हमारे उस्ताद। मंजिले इल्म के हम लोग मुसाफिर हैं, मगर रास्ता हमको दिखाते हैं हमारे उस्ताद। जिंदगी नाम है कांटों के सफ़र का, लेकिन राह में फूल बिछाते हैं हमारे उस्ताद। सबको तहजीब व तमद्दुन का सबक देते हैं, हमको इंसान बनाते हैं हमारे उस्ताद। खुद तो रहते हैं बहुत तंग व परेशान, मगर दौलत इल्म लुटाते हैं हमारे उस्ताद। हम पे लाजिम है कि हम लोग करें उनका अदब, कि हम लोग करें उनका अदब। किस मोहब्बत से बढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, किस मोहब्बत से बढ़ाते हैं हमारे उस्ताद। शुक्रिया।
1: सामईन, अभी आपने एक नज़म समात फरमाई एक तालिबा ज़िबा दौगाहिद की ज़बानी। इन्होंने नहायत खूबसूरती और एतमाद के साथ अपने असातिज़ा को खैराज अकीदत पेश किया। उनकी उस्तानी मोहतरमा फरहानाज फतादिन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ज़िबा को इस नज़म के लिए तैयार किया। उस्ताद सिर्फ ये नहीं बताता कि पढ़ना क्या है, बल्कि ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी को कैसे पढ़ना है। वो सिर्फ अल्फाज नहीं सिखाता, वो अल्फाज के पीछे छुपी हुई दुनिया से रोशनास कराता है। वो सिर्फ इम्तिहान के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि ज़िंदगी के इम्तिहानात के लिए इंसान को मजबूत बनाता है। कभी उसकी डांट में फिक्र छुपी होती है, कभी उसकी खामोशी में नसीहत, और कभी उसके चंद हौसला अफजा अल्फाज एक तालिबे इल्म के लिए उम्मीद का पूरा आसमान आबाद कर देते हैं। सबको तहजीब अखलाक देते हैं, सबको तहजीब अखलाक देते हैं, हमको इंसान उस्ताद बना देते हैं। मोहतरम सामईन, मॉरिशस में हमारे असातिज़ाए कराम की गिरा कदर खिदमात बिला शक व शुबा काबिले दाद व तहसीन है। उर्दू ज़बान की हमारी ज़िंदगी में क्या मकाम व मर्तबा है, इससे हम बखूबी वाकिफ हैं। उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं, बल्कि हमारी तहजीब की निशानी है, हमारी शनाख्त है। हमारे काबिल एहतराम असातिज़ा नहायत इखलास, मोहब्बत, लगन के साथ उर्दू ज़बान की तरवीज व इशात में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो सिर्फ ज़बान नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि इस खूबसूरत शीरी ज़बान से वाबस्ता हमारी तहजीबी और सकाफती विरसे को नई नस्ल तक मुंतकिल कर रहे हैं।

0: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: अपने ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे फरमाता है। दरअसल इस सूरत में हमारे लिए बहुत से पैगामात पोशीदा हैं। दुनिया की मसरूफियात अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, रोज़मर्रा के काम अपनी जगह, लेकिन जब जुम्मे की नमाज के लिए पुकारा जाए तो मोमिन के लिए सबसे मुकद्दम ज़िक्र इलाही और उसकी बारगाह में हाज़िरी है। सामईन, आइए जामा मस्जिद पोटली में पेशकर्दा यानी आज पेशकर्दा खताब की रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं। आज जामा मस्जिद के खतीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामत बरकातुगमालिया ने अपनी तकरीर के लिए जिस अहम लाजमी मौजू का इंतखाब किया था वो है नमाज इस्तिस्का। ये ख़ास नमाज तब पढ़ी जाती है जब बारिश नहीं होती। इसी मुनासिबत से मुफ्ती साहब ने नमाज इस्तिस्का की फजीलतों पर बात की। आइए इंतहाई तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए।
1: والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال نبينا الرحيم الرؤوف يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه مئة مرة في كل يوم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر جیسا کہ معلوم ہے کہ मॉरिशस में बारिश न होने की वजह से पानी थोड़ा सा रह गया, बहुत कम है। एक तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि पानी बहुत एहतियात से और जितनी नीड हो इतना वाटर यूज करें। नंबर दो ये कि हम और आप और पूरी उम्मा बिलखुसूस अहलियान मॉरिशस इज्तिमाई तौर पर अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से बख्शिश मांगे। हदीस के मुताबिक बारिश न होने के असबाब में से एक गुनाहों का ज्यादा होना है। इस्तिग़फ़ार, seeking forgiveness from Allah, Allah से बख्शिश मांगना, इसके जहां और बहुत से benefits हैं वहां कुरान करीम फुकाने

सामईन कराम, अभी आपने सूरा जुम्मा की तिलावत समात फरमाई। इस मुख्तसर सी सूरत में अल्लाह तबारक वताला ख़ुद हमें हमारी मसरूफ़ दुनिया से निकल कर

हमीद सूरह नूह के मुताबिक बारिश का बरसना भी है। अहादीस की किताबों में, फिर फिक्ह में बाकायदा मुहद्दिसीन ने और फुकहा ने सलातुल इस्तिस्का ये बाब बांदा चैप्टर इस्टेब्लिश किया। प्रेयर फॉर सीकिंग रेन, नमाज मांगने के लिए, बारिश मांगने के लिए और बरसात के लिए नमाज। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में आने वाला जो संडे है 9 बजे ईदगाह में सलातुल इस्तिस्का का अहतमाम, बारिश के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज होगी, दुआ होगी। आप तमाम अहबाब उसमें ज्यादा से ज्यादा शरीक हैं, ताकि मॉरिशस को किसी भी हवाले से किसी मुश्किल का सामना ना हो और अल्लाह पाक अपनी बारान रहमत अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ओ बिलीवर्स, ऑल ऑफ यू आस्क अल्लाह टू फॉरगिव योर सिंस एंड योर फॉल्ट्स, लअल्लकुम तुफ्लिहून दैट यू मे बी सक्सेसफुल। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत को अल्लाह ने मुखातब किया, फरमाया, ए मोमिनों, तुम सब के सब तौबा करो, अपनी खताओं की और गुनाहों की बख्शिश अल्लाह से, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी दुनिया की हो या कामयाबी आखिरत की, सक्सेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड सक्सेस इन द हियर आफ्टर, फलाहु दुनिया व फलाहु आखिरा, दोनों सच्ची तौबा से वाबस्ता है। और जाहिर है कि उनमें से बारिश और पानी का होना भी है। हमारी बहुत सारी दुनियावी और दीनी हालतें हैं जो पानी से और बारिश से वाबस्ता है। इसलिए आज सब के सब इज्तिमाई तौर पर इंशाअल्लाह खिताब के एंड में हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, बख्शिश मांगेंगे और अल्लाह से बारिश के लिए सवाल करेंगे, दुआ मांगेंगे। सही मुस्लिम में हदीस पाक है, हुजूर सलाम ने फरमाया, ايها المسلمون توبوا الى الله واستغفروا। حضور السلام says in his beautiful hadith, in every hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is very very beautiful,

0: ताकि इसकी बरकत से बारिश, इसके गवाह अवाम भी है, मैंने पूछा अइम्मा और उलमा भी है। जब ये नाच पड़ी गई तो उसी वक्त बारिश बरसने लगी और 24 घंटे तक मुसलसल बारिश बरसी। एक दूसरा वाकया भी मॉरिशस का है जिसकी मुझे डिटेल नहीं मालूम। और हमारे यहां वतन अजीज में भी ऐसा हुआ। सईद हाशमी गालिबन रहमतुल्लाह अलैह जो मारूफ नात खान थे, वो एक महफिल में आला हजरत का ये कलाम पढ़ रहे थे, दो बूंद यहां भी गिरा गिरा कि महबूब आपके जूदो आता के दो कतरे ड्रॉप्स हमें भी मिल जाए। तो उन्होंने ये खुद बयान किया, यूट्यूब पे है, आप सुन सकते हैं कि जब उन्होंने कहा कि दो बूंद यहां भी गिरा जाना तो उस वक्त बारिश बरसना शुरू हो गई। इसलिए इंशाअल्लाह संडे को ईदगाह में जब सलातुल इस्तिस्का होगी तो उसमें ये कलाम भी पढ़ा जाए। रात भी नौजवानों की महफिल में हमने ये कलाम इसी नियत से पढ़ा कि अल्लाह पाक मॉरिशस को और पूरी दुनिया को हुजूर सलाम के वसीले से बारान रहमत अता फरमाए। बड़ी आसान दुआ है बारिश के लिए, आप सब मेरे साथ पढ़ें और इसको मेमोराइज करें, इंडिविजुअली भी इस दुआ को पढ़ा करें, न जाने किसकी दुआ हो जाए। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना محمد وبارك وسلم اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تجعلنا من القانطين ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انا نستغفرك لكل ذنب يورث قحط وعدم المطر اللهم نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك اے اللہ ہم سب اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں بخش دے، हमारे गुनाहों को मिटा दिया और हम पर बारान रहमत बरसा दे। वमा अलैना
1: इल्ला। सामईन इकराम, अभी आपने जामा मस्जिद पोटली के खतीब आला मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामत बरकातो मालिया की ज़बानी आज का खताब समात फरमाया। आपने नमाज इस्तिस्का की फजीलतों पर बात की। बारगाह खुदावंदी में दस्ते दुआ है, दस्ते दुआ बुलंद करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम हमारे जज़ीरा मॉरिशस पर अपनी रहमत के बादल बरसा, अपने फजल व करम से बारिश नाजिल फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इस ईमान अफरोज बयान के बाद आइए आज का खुतबा जुम्मा समात करते हैं।
2: وافتخار البرية ومختار البرية، نحمده على أن أكرمنا بهذا الرسول ذي المقامات العلية، وعم عباده بالمغفرة صبحا وعشيا.

सामईन कराम, आप इस वक्त उर्दू नचरियात बज़्म नूर समात फरमा रहे हैं। आइए चंद ऐलानात गौर फरमाइए। सबसे पहला और अहम ऐलान ये होगा जो अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया, इतवार 11 अक्टूबर को ईदगाह वाली पीतो में सुबह के 9 बजे नमाज इस्तिस्का पढ़ाई जाएगी। ये नमाज मुफ्ती साहब खुद पढ़ाएंगे। तमाम मर्द हजरात से गुजारिश हैं कि वो इसमें शिरकत फरमाएं। शनिचर 10 अक्टूबर को शाम के 4 बजे हलकाए कादरिया इशात इस्लाम की जानिब से अलीमिया कॉलेज कैंपस हाईलैंड्स फिनिक्स में गौसे पाक रहमतुल्लाली का उर्स मनाया जाएगा। आप सभी को शिरकत की दावत है।

सामईन कराम, इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह तबारक व ताला है बहुत जल्दी मान लेता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता और अपने दर से कभी मायूस नहीं लौटाता। सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बराई, उसकी शान वज़मत का तसव्वुर वो पहाड़ की तरह है जिस पर अक्लें कदम नहीं जमा सकती और दिल रास्ता पाते ही झुक जाते हैं। वो ज़ात अक़दस जिसकी कुदरत ज़मीन से आसमान तक फैली हुई है, जब ज़बान कहती है अल्लाहु अकबर, दिल कहता है मेरे रब से बड़ा कोई नहीं, जब ये कलमा उफक पर गूंजता है तो ज़माना बदलता है, दिल बदलते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं।

सामईन इकराम, बसा औकात जब हम कोई नेक इरादा करते हैं या हमारे सामने कोई अपना नेक इरादा जाहिर करता है तो हम उस इरादे के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहते हैं। दरअसल इंशाअल्लाह कहना सुन्नत मुबारक है। कुरान मजीद में कई मकामात पर इंशाअल्लाह का जिक्र किया गया है, मिसाल के तौर पर सूरह हुद, सूरह यूसुफ और सूरह कहफ में अंबिया कराम के इंशाअल्लाह कहने का बयान हुआ है।

हमारे प्यारे आका सैयद आलम नूरे मुजस्सम जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा किसी बात का इरादा फरमाते तो अक्सर इंशाअल्लाह कहा करते थे। सामईन, फ़िलहाल सबकी ज़बान पर एक ही दुआ है, इंशाअल्लाह ज़वजल बारिश ज़रूर होगी।

नस नस से वाकिफ हैं रग रग जानता है, नस नस से वाकिफ हैं रग रग जानता है, हमें हमसे बेहतर हमारा रब जानता है। मोहतरम सामईन, इसी शेर के साथ हमारी आज की उर्दू नशरियात बज़्मे नूर अख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद है आपने आज के प्रोग्राम को पसंद फरमाया होगा। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये वक्त दिया कि हम दीन की बातें आम करें, आज का बयान खुतबा समाप्त करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की नेक जायज़ तमन्नाएं दुआएं पूरी फरमाए, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और जो बीमार हैं फ़िलहाल उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सामीन, अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए, आइए आखिर में सलातुस्सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: गीत और गजल रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर।

रेडियो मॉरिशस की लहरों पर गीत और गजल कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आपका साथ देने यहां पहुंची हूं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर कुछ बेहतरीन गीत और गजलों के साथ। आशा करते हैं कि आज की ये शाम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगी। तो चलिए कुछ ऐसी गजलों के साथ आज जुड़ते हैं और प्यार भरे कुछ अल्फाजों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। जो दिल के करीब है वो मेरे अजीज है, मैंने गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। जो समझ ही नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें जख्म दिखाना छोड़ दिया। जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया। जो महसूस ही नहीं करते ज़रूरत मेरी, मैंने उनका साथ निभाना छोड़ दिया। जो चाहते हैं रहना बस नाराज़ मुझसे, मैंने उन्हें बार बार मनाना छोड़ दिया। जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे ज़रूर मुझे, मैंने बेवजह बंदी

वक्त ने धीरे से सिखाया कि कुछ अपना भी पराया होता है, जिसे थामे रखना चाहो वही हाथों से छूट जाता है, और जो रहना हो तकदीर में वो दूर होकर भी दिल से कहां दूर जाता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। कुछ लोग मिलते नहीं, बस जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। कुछ यादें कभी जाती नहीं, बस दिल में उतर जाती हैं।

गीत और गजल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और आपका साथ दे रही है रत्ना और स्मिता चक्रवर्ती की आवाज़ में रखी हुई ये नज़्म हमने अभी भी सुनी, बहुत ही प्यार से सजाई गई थी। भटक गए हमराहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां हमें कुछ पाना नहीं था।

अगर मोहब्बत हो किसी से इंसान हर हाल में निभाता है, तू जिस तरह गया छोड़ कर इस तरह भला कौन जाता है। तू तो मुझे अपना कहता था, तू तो मुझे अपना कहता था, बता अपनों को कौन रुलाता है। मेरी तो कोई खता भी नहीं, फिर मुझे तू क्यों सताता है। इंतज़ार है तेरा बस आ जा लौट कर, लौट आने में तेरा क्या जाता है। लिखता है तेरी याद में नज़में, बेखबर तो कितना मुझे चाहता है। और इस वक्त कई सारे हमारे श्रोता साथ दे रहे हैं। सुनीता जी इस वक्त गांव गोप से जुड़ी हुई हैं और लीला जी बहुत शेखी से एंजॉय कर रही हैं खाना बनाते हुए गीतों और गज़लों को।

भी होंगी, गहरी या हल्की निशानियां भी होंगी। जवानी का दौर और पहला प्यार है। उम्र के इस दौर में नादानियां भी होंगी, सामने महबूब और ये सर्द सालम, दिल में थोड़ी सी बेईमानियां भी होंगी। दोनों तन्हा हैं दोनों ही जवां बदन, लाजमी है ऐसे शैतानियां भी होंगी। कैसे निभा दिया हमने इश्क में साथ तुम्हारा, देखने वालों को ये हैरानियां भी होंगी। पंकज उदास साहब की ये प्यारी सी गजल आपके नाम करते हैं। इस वक्त 5:38 और गीत और गजल का ये सफर जारी रखते हैं।

पंकज उदास साहब की मखमली सी आवाज। जिंदगी भर की दवा बनना चाहते थे, दो दिन का खुराक बन के रह गए। किसी की हकीकत बनना चाहते थे पर महज इत्तफाक बन के रह गए। यूं तो किसी की खुशी बनना चाहते थे पर सच पूछो तो मजाक बन के रह गए। गीत और गजल कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं अशोक खोसला जी की आवाज में रखी ये प्यारी सी नज़्म।

मसूद राणा साहब की आवाज़ में रखी हुई ये नज़्म इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं प्रीति जी। प्रीति जी, आपको ये गज़ल बेहद पसंद है और हमारे, और इत्तेफाक की बात भी ये है कि आज के हमारे इस प्लेलिस्ट में हमने ये गज़ल सजाई हुई है आपके लिए। तो चलिए, आशा करते हैं कि इस गज़ल को सुनकर आपके चेहरे की मुस्कुराहट और दुगनी हो जाएगी।

दोस्तों, कभी कई बार ऐसा होता है कि कोई चाहने वाले दिल को बस यूं ही ठुकरा देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कद्र नहीं करते प्यार करने वालों की, और इसी के साथ बिल्कुल जिंदगी में हमेशा अकेले रह जाते हैं। तो जाते जाते बस यही कहेंगे कि बात बात पर यूं दिल दुखाना क्यों है, जो ना समझे तुम्हें उन्हें बार बार समझाना क्यों है, जो ना समझे तुम्हें उन्हें बार बार समझाने में वक्त गवाना क्यों है। रहने दो मग्द उन्हें उनकी दुनिया में, उन्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना क्यों है। चलिए इसी के साथ आज की इस शाम को इस आखिरी गजल के साथ यहाँ पर समाप्त करेंगे। सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में रखी हुई ये नज़्म आपके नाम, और इसी के साथ आशा करते हैं आज की ये सफ़र, आज का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। और बिल्कुल 6 बजे आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति आज की शाम आप सभी के लिए प्यारे प्यारे गजलों की तरह रंगीन रहे। फिर मिलेंगे एक और ऐसे नए सफर में, तब तक के लिए शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सैंपल समेत देश के कई इलाकों में पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ी। CWA के पास शिकायतों का सिलसिला जारी और पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की मदद ली जा

0: रही है। मॉरिशस में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियां अब आखिरी दौर में। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने आज आयोजकों से मुलाकात की। नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन से पहले उसके अधिकारों और भूमिका को लेकर कई सवाल उठे। नागरिकों की निगरानी, नई एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति और पुराने उन उलझे मामलों की दोबारा जांच पर कानूनी विशेषज्ञों ने की चर्चा। विदेश में मानवाधिकारों के लिए दशकों तक चली लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। दक्षिण अफ्रीका की 50 वर्षीय वकील नावी पिले को इस साल का नोबेल पीस प्राइज देने की घोषणा। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। नलों में पानी नहीं, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। सैंपल समेत देश के कई इलाकों में पानी की कमी से नाराज लोग CWA से शिकायत कर रहे हैं। CWA के शिकायत केंद्र पर लगातार फोन आ रहे हैं, जबकि पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की मदद ली जा रही है, लेकिन बढ़ती मांग के बीच लोगों तक पानी कैसे पहुँचाया जा सके। CWA इस स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने आज यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के आयोजकों से मुलाकात की। पोर्टवी में हुई इस बैठक में कॉरपोरेट काउंसिल और अफ्रीका की फ्लोरिजेल लीजिए मौजूद थी। बातचीत में सम्मेलन की तैयारियों और मॉरिशस के लिए व्यापार के नए अवसरों पर चर्चा हुई। सम्मेलन 6 से 9 दिसंबर तक पाइक के स्वामी विवेकानंद सेंटर में लगेगा, जिसमें करीब 2,500 लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉरिशस में 2 महीने बाद होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। सम्मेलन का आयोजन करने वाले कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की एक टीम इन दिनों मॉरिशस में है। एबन में आयोजकों ने तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान विदेश मंत्री रितेश रामफल ने बताया कि मॉरिशस विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर खासकर कोंगो में एबोला बीमारी के फैलाव पर नज़र रख रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन से जांच व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा और नई एजेंसी के अधिकार कितने व्यापक होंगे, इन्हीं सवालों पर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की ओर से एक चर्चा आयोजित की गई। नई एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति और अधिकार, नागरिकों की निगरानी को लेकर चिंताएं और पुराने अनसुलझे मामलों की दोबारा जाँच जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। अंजुराम गुलाम की रिपोर्ट। विवरण गीता सुनारन।
1: कानून जगत की 3 प्रमुख हस्तियां और 2 अहम विधेयक चर्चा के केंद्र में रहे। पहला है पुलिस एंड क्रिमिनल जस्टिस बिल, जिसके तहत अंतरिम आरोप लगाने की व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। दूसरा है नेशनल क्राइम एजेंसी इंटरिम बिल। इसमें सबसे अधिक चर्चा दूसरे विधेयक पर की गई। एक नई व्यवस्था के तहत नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जगह लेगी। इसका दायरा पहले से व्यापक होगा। ये वित्तीय अपराधों, साइबर अपराधों और गंभीर जटिल या संगठित अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करेगी। चर्चा के दौरान अनसुलझे अपराधों का भी जिक्र किया गया, जिनमें नाजिन दौंचे और वानिसा लाशेसर की मौत के मामले शामिल हैं। DPP के निदेशक राशिद अमीन कहते हैं, NCA के पास जो जानकारियां होंगी, कानूनों में प्रावधानों की पहचान की गई है, जिनसे ज्यादा गहराई के साथ जांच की जाएगी। NCA को अपने अधिकार क्षेत्र के कुछ मामलों में पुलिस द्वारा की जा रही जांच अपने हाथ में लेने, किसी जांच को पुलिस को सौंपने या पुलिस के साथ मिलकर जांच करने का अधिकार होगा, लेकिन अंतिम फैसला कौन करेगा? क्या NCA के महानिदेशक को पुलिस आयुक्त के ऊपर अधिकार प्राप्त होगा? नई व्यवस्था को लेकर ये भी एक अहम सवाल उठाया गया। अंतोन डोमेंग कहते हैं, सहयोग को कम नहीं किया जाएगा। मेरे विचार से एक साधारण कानून या एक प्रोटोकॉल पुलिस कमिश्नर की संवैधानिक जिम्मेदारी पर हावी नहीं होना चाहिए। इसलिए कानून में स्पष्ट सुरक्षा प्रावधानों और वास्तव में स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था की मांग की जा रही है। ऑटोन डोमेंग कहते हैं, आजकल एक फोन में

न सिर्फ संदिग्ध से संबंधित जानकारियां हैं बल्कि पूरे परिवार से संबंधित जानकारियां हैं। धारा 60 और 63 में सफाई देने का प्रावधान है और ऑडिट्स हैं जो जानकारियों पर आधारित हैं। गुप्त और व्यापक निगरानी के मामलों में विधेयक के तहत एनसीए के महानिदेशक के साथ साथ एक न्यायाधीश की भी भूमिका होगी। न्यायाधीश ये सुनिश्चित करेंगे कि निगरानी का कदम मामले की जरूरत के अनुपात हो और आवश्यकता से अधिक व्यापक न हो। गाविन ग्लोवर कहते हैं, सबसे पहले

0: निदेशक की स्वीकृति होनी चाहिए, एक जज चैम्बर का आदेश चाहिए, जज को संतुष्ट होना चाहिए कि प्रस्तावित टेक्निक्स अनुपात में हो। एनसीए की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी और इसके लिए लगभग 2 साल का समय लग सकता है। इसके गठन और कामकाज को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए जाना प्रस्तावित हैं। सरकार की योजना इस नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कुल 9 विधेयक पेश करने की है।
1: इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख अब करीब है। 15 अक्टूबर तक अपनी आय का ब्यौरा नहीं देने वालों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। एमओआरए के अनुसार आज सुबह 9 बजे तक 1,84,000 से ज़्यादा करदाताओं ने अपना रिटर्न जमा कर दिया था। लोगों की सुविधा के लिए पोटवी में एमओआरए का कार्यालय इस शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा, जबकि आखिरी दिन यानी 15 अक्टूबर को रात 8 बजे तक सेवाएं उपलब्ध होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की पत्नी कविता जगनाथ आज फिर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंची। मामला फरवरी 2025 में दिलावन के घर से मिले 114 मिलियन रुपए से जुड़ा है। सितंबर 2025 में हुई पूछताछ के दौरान कविता जगनाथ ने जांच अधिकारियों को कुछ और जानकारी देने की बात कही थी। आज वे अपने वकीलों के साथ FCC पहुंची। अब 14 अक्टूबर को उनसे दोबारा पूछताछ होगी। देश में गहराते जल संकट से निपटने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर आपात योजना की जरूरत है। रासेंबले मोमोगिसियन के नेता नंद बुधा ने सरकार से तुरंत और मिलकर कदम उठाने की मांग की। उनका प्रस्ताव है कि एक राष्ट्रीय नियंत्रण केंद्र बनाया जाए जो पानी के बंटवारे की निगरानी करे और लोगों तक समय पर सही जानकारी पहुंचाए। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: महोबाकवा जलाशय में आई कमी ने चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार यहां से पानी प्रतिदिन लगभग 1,10,000 क्यूबिक मीटर से घटकर कल केवल 56,000 क्यूबिक मीटर रह गया। एक प्रेस सम्मेलन में नंदू बुडा ने इसे राष्ट्रीय आपात स्थिति बताया। हम एक आपात स्थिति में हैं। संबद्ध अधिकारी, नगरपालिका, सभी को एक साथ काम करना चाहिए। इस स्थिति से निपटने के लिए रासेंबले मोमोगिसियन के नेता नंदू बुडा ने एक राष्ट्रीय नियंत्रण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रयासों के बीच तालमेल बिठाना, लोगों तक सही जानकारियां पहुंचाना और निजी क्षेत्र के संसाधनों को जुटाना है। इसमें पानी वितरण के लिए ट्रकों की व्यवस्था भी शामिल है। तूफान जैसी स्थिति है, जब तूफान आता है तब चेतावनियां होती हैं। जनता को सूचित करना चाहिए वरना वो सड़क पर उतर आएगी। उन्होंने जल विज्ञान और जियोटेक्निकल अध्ययन कराने की भी मांग की। इन अध्ययनों से ये समझने में मदद मिलेगी कि इस स्थिति के पीछे सूखा है या जलवायु परिवर्तन का भी कोई असर है। नंदू बुडा का कहना है कि आपातकालीन उपायों के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि देश के सबसे बड़े जलाशय में पानी के उत्पादन में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सके।
1: अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन भर किए गए संघर्षों को अब दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मान मिला है। दक्षिण अफ्रीका की जानी मानी वकील नवी पीले को 2026 का नोबेल पीस प्राइज देने की घोषणा की गई है। 85 वर्षीय नवी पीले ने रंगभेद के दौर में नेल्सन मंडेला सहित कई लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। उन पर पेश है ये रिपोर्ट।
0: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए नवी पीले को 2026 का नोबेल पीस प्राइज देने का फैसला किया है। भारतीय मूल के तमिल परिवार में जन्मी नवी पीले एक अग्रगणी वकील और कानून विशेषज्ञ बनी। उनका जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबान शहर में उस दौर में हुआ जब लोगों के रंगों के आधार पर भेदभाव होता था। 85 वर्षीय नवी पीले को मुश्किल से मुश्किल मामलों को शांति से हल करने के लिए जाना जाता है। उनके इसी काम को ध्यान में रखकर नोबेल समिति ने उन्हें शांति के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। समिति ने कहा कि उनका काम शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने, ताकतवर देशों और व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने और पीड़ितों की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व को रेखांकित करता है। नवी पीले दक्षिण अफ्रीका के हाई कोर्ट, रुआंडा के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के तौर पर रह चुकी हैं। नोबेल पुरस्कार

0: विजेता नवी पिल्ले ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर राष्ट्रसंघ जांच आयोग की अध्यक्षता भी की है। वे म्यांमार पर नरसंहार के आरोपों से जुड़े मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज हैं।
1: जैसे कि हम आपको बता रहे थे, मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा करदाताओं से मांग की जा रही है वे कि वे अपना रिपोर्ट सुपुर्द डिक्लेरेशन फॉर्म भर के सुपुर्द कर दें। उनके पास 1:30 से 1:15 अक्टूबर रात 12 बजे तक की मोहलत है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: इनकम टैक्स रिटर्न और भुगतान करने के इस समय में पोर्ट लुइस स्थित मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के मुख्यालय में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, बावजूद इसके कि अधिकांश करदाता अपना रिटर्न पहले ही ऑनलाइन जमा कर चुके हैं। हालांकि एमओआरए ने आश्वासन दिया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई
3: है। Ils donnent temps normal, le travail à 10 à 20 comptoirs, mais le fait qu'il y ait un grand nombre de taxpayers qui viennent avec un petit doute et un petit question qu'ils ont envie de poser, alors nous mobilisons à peu près 40 à 45 staff juste pour la période de e-filing. Depuis cette semaine-ci, nous commençons ouvert vers les 8h30 juste pour les taxpayers qui viennent au bureau.
2: इनकम टैक्स फिलिंग अनिवार्य है जो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक अर्जित आय से संबंधित है।
4: Si on reçoit un revenu pendant l'année qui dépasse 500 000, alors automatiquement on a une obligation de faire un return de la taxe. Si on a un business et ou gross income, ce qui nous dit, c'est-à-dire au revenu total de l'année, toujours mon répète-li, total de l'année, c'est de juillet 25 à juin 2026. Si au revenu total pour sa business, ça dépasse 2 millions, ou une obligation pour se mettre au return tax. Si toutefois, un salarié et qu'on trouve qui ou quand ou l'employeur in de nous ou statement of emolument et n'a un tax in coupé là-dedans qui nous appelle le pay as you earn, ou une obligation de faire le return tax. Si ou dans le business, ou bien un rental qui est un sujet à ce qu'il nous appelle le tax deducted at source, TDS, là où vous pouvez faire le return de la taxe, ou simplement si on a un chargeable income qui peut dépasser 500 000 qui logiquement peut faire payer une taxe, alors là où vous avez l'obligation de faire le tax return.
2: शुक्रवार 9 अक्टूबर की सुबह तक एमओआरए को 1,84,000 से ज्यादा टैक्स रिटर्न प्राप्त हुए। लगभग 58,900 करदाताओं को कुल 646 मिलियन रुपए से अधिक की राशि चुकाए गए हैं। वहीं एमओआरए ने लगभग 1.4 बिलियन रुपए जमा किए हैं।
4: Faites attention quand vous mettez votre numéro de compte à la banque, pas faire erreur, vérifiez-le bien, prenez-y le temps, vérifiez-le bien, parce que si vous pouvez faire une erreur au numéro de compte à la banque, si toutefois on a un refund, on est capable de tarder, et si toutefois on a un paiement et au numéro de compte pas bon, peut-être nous allons risquer pas réussir à prendre ce paiement-là à temps. Pour nous capables mieux servir la population, le bureau il décide pour ouvrir ce week-end là, donc les pour commencer à partir de 9h jusqu'à 4h après-midi. Et aussi dernier jour qui est le 15 octobre 2026, donc jeudi, nous pour ouvrir jusqu'à le soir 8h.
2: इसके अलावा एमओआरए टैक्सपेयरों को कैश प्राइज वाले दो प्रतियोगिता लकी ड्रॉ और टैक्स सेटिस्फैक्शन सर्वे में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करता है।
1: माँ दुर्गा की आराधना, शक्ति, भक्ति और आस्था के 9 दिन। 11 अक्टूबर से देश भर में नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक मंदिरों में विशेष पूजा, प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने आज एक प्रेस सम्मेलन में तैयारियों की जानकारी दी। इस पर ज्यादा विस्तार मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के महासचिव गौतम मांतादीन दे रहे हैं, उनको सुनते हैं।
5: हमारे सभी जो रजिस्टर्ड मंदिर हैं वो नवरात्रि आरंभ कर रहे हैं संडे, यानी कि रविवार, संडे 11 अक्टूबर 2026 जहां पर कलश स्थापना से शुरुआत होगी और दुर्गा जो कथा है वो हर रात्रि को चलेगी सभी मंदिरों में। और सोमवार 19 तारीख अक्टूबर जो है वहाँ पर सभी मंदिरों में यज्ञ और पूर्णाहुति होगी, और मंगलवार जो है 20 तारीख जो है वहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। कुछ मंदिर जो हैं मूर्तियों जो वो स्थापना की हैं वो लोग विसर्जन करेंगे, और कुछ लोग जो हैं दशहरा या जो हम कहते हैं विजयादशमी वो हम मनाते हैं उस दिन।

0: ब्लैक रिवर में 100 साल से भी पुराने बरगद के पेड़ों को काटने का मामला अब एक नए मोड़ पर है। बैनियन स्क्वायर बिजनेस हब के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। जिला परिषद ने यह आदेश दिया क्योंकि निर्माण की अनुमति साल जून में समाप्त हो चुकी थी। पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान के हस्तक्षेप के बाद कुछ पेड़ों को बचाया जा सका है।
1: पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बरगद के पेड़ की रक्षा करने के लिए उसके तने के चारों ओर जंजीर से बांध लिया। ये गिबियानुओ में मुख्य सड़क के किनारे स्थित एक निर्माण स्थल पर हुई।
2: La prothèse à pied là, en même temps, pas empêche du bout de la fesse au développement, parce qu'il y a un droit à fesse au développement. Et c'est à cause de nous prendre ici, il n'y a aucun contact qu'à un moment donné, nous ne prenons sa mesure là, mais nous connaissons, nous partions un droit. Rendre une propriété privée, mais nous n'appartient à aucune possibilité, nous n'appartient à aucun des autres choix.
1: दरअसल रियल एस्टेट परियोजना बनियन स्क्वायर बिजनेस हब के प्रोमोटरों ने बरगद के पेड़ों को काट कर निर्माण कार्य जारी रखने का फैसला किया। कॉन्ट्रैक्टर और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्यासी यिप तोंग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिबियानुओ पुलिस स्टेशन में 6 घंटों से अधिक समय तक पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस के अनुसार ये मामला रोग एंड वैगाबन से संबंधित है।
3: Quand on construit la case, on a un panneau qui donne 15 jours pour l'opinion publique, la population qui a droit de porter plainte. Donc, qu'il faut qu'il y ait la loi au Parlement, qu'il n'y a pas un droit coupier ancestral et nous pas donner priorité à la propriété immobilière aveuglément. Il n'y a pas qu'on dit, mais faire en harmonie avec la nature et aussi avec l'aval et le contentement des habitants. Parce que nous qui habitons là,
1: इस बीच पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। मंत्री राजेश भगवान ने कहा कि उन्होंने ठेकेदार से उन 5 अन्य पेड़ों को बचाने का आश्वासन प्राप्त कर लिया है जिन्हें काटा जाना चाहिए था। गिबियानुओ जिला परिषद भी परियोजना के प्रोमोटर लक्स लिविंग के खिलाफ निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी करेगी। पता चला है कि प्रोमोटर का निर्माण परमिट जून 2026 में ही समाप्त हो गया था। खेमराज ओटू कहते हैं,
4: En ligne MBL, depuis en 2021, il y a une contestation, un habitant qui conteste, il y a une judicial review, qui rentre en caisse à cour. En 2023, il y a un jugement en faveur de la promoteur. Et en 2023, quand il y a un jugement, ce billet loupé est valide. Et alors, il est supposé, d'après la loi, et quand il y a un billet loupé, auparavant, avant 2025, il y a 10 ans pour commencer au projet, maintenant il y a 3 ans. Et l'État m'a fait l'enquête, valait 10 jours, et l'air qui m'a fait cause avec vous, ce BLUP n'est plus valide. Et m'a fait une décision au jour du même, c'est une notice qui est bizarre et tout ce développement.
1: पेड़ों की कटाई फॉरेस्ट्री कंसर्वेटर के अधिकार क्षेत्र में आती है। इस संबंध में पूछे जाने पर पूजनराज खुरन ने कहा कि उनका विभाग निजी संपत्तियों में जाकर पेड़ों की कटाई रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्रोमोटर से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने के लिए उन्हें नए परमिट हेतु आवेदन करना होगा।
0: विदेश की खबरों में प्रशांत महासागर का बढ़ता तापमान दुनिया के मौसम में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। एलनीनियो के और ताकतवर होने की संभावना है जिससे कई देशों में गर्मी, सूखे और असामान्य बारिश का खतरा बढ़ सकता है। भारत में तापमान और बारिश को लेकर नए अनुमान सामने आए हैं। उधर चिली में अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका के दक्षिणी तट पर एक शक्तिशाली तूफान का खतरा बना हुआ है।

जानते हैं कि स्थानीय मौसम का हाल अगले 24 घंटों के लिए कैसा रहेगा। हमारे देश में हल्की हवाओं का असर है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल कल सुबह से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात मौसम अच्छा रहेगा। कल दिन के दौरान ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे। दोपहर बाद पश्चिमी और दक्षिण उत्तर पश्चिमी इलाकों पर सेंट्रल प्लेटों पर भी हल्के बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश हो सकती है। हवा आज रात को पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगा। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 5:44 पर, शाम को सूर्यास्त 6:10 पर होगा।

देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने पूरे न्यूज़ विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। प्रिंस दे गाल स्ट्रीट सिनेमा का सेट्रियोले में, प्रिंस दे गाल स्ट्रीट सिनेमा का सेट्रियोले में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कालावती ओकलू, श्रीमती कालावती ओकलू पैदाशी नाम हुकुम सिंह और जो दादी इंदिरा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान प्रिंस दे गाल स्ट्रीट सिनेमा का से थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची पेचराफर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। Cremation tomorrow at 11 a.m. Avenue Pamplemousse, Camp de Pêcheurs, Grande Rivière Sud-Est, Mai. Avenue Pamplemousse, Camp de Pêcheurs, Grande Rivière Sud-Est, Mai. Panchanvi Salki, 95 years old, Ki. Shrimati Sindarmani Tengri, Shrimati Sindarmani Tengri. Jo Chinta ke naam se zyada jani jati thi, unki mrityu ho gayi hai. Arthi, kal din ke 11:30 baje unki beti, Binta Kedu ke makan, Avenue Pamplemousse, Camp de Pêcheurs, Grande Rivière Sud-Est से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM। रुइला प्लास मेबर्ग में, रुइला प्लास मेबर्ग में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी फातमा लालू, मिसिज बीबी फातमा लालू पैदाशी नाम खेतु और जो कालाफाते के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज रात 7:30 बजे उनके मकान हुइला प्लस मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले नमाज़ जनाजे के लिए मस्जिद मेबर्ग की जुमा मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस रिविया दे क्रेओल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7:30 AM। बेलरोज नंबर 3 एवेन्यू कोराराम में, बेलरोज नंबर 3 एवेन्यू कोराराम में 74 साल की 74 years old की श्रीमती प्रतिमा देवी सिवरतन, श्रीमती प्रतिमा देवी सिवरतन पैदाशी नाम बुधू और जो लता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10:30 बजे एलियन सन्स बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। पिछित काबान कौन दे मास्क पावे में, पिछित काबान कौन दे मास्क पावे में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ऋषि कुमारी दसोई, श्रीमती ऋषि कुमारी दसोई पैदाशी नाम गोपल और जो ऋषि के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विराज दसोई के मकान पिछित काबान कौदे मास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदे मास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। एवेन्यू विरासामी अयर मोसलमो राफ्रे ले ओ शेते अरूज में, एवेन्यू विरासामी अयर मोसलमो राफ्रे ले ओ शेते अरूज में

42 साल के 43 इयर्स ओल्ड के श्री दिनेश रामनियाल जो बंटी और बैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बीच सेंट ज्वेल औकात की नूपोट्री में बीच सेंट ज्वेल के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी रविवार को दिन के 12 बजे उनके मकान एवेन्यू विगासामिया यर मोसलमा खफ्रेलो शेत्याहोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूई ले वाले दिपत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट नून। आलेजाक ग्रांबोआ में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री सनमत गंगा बिसुन पैदाशी नाम बुधन और जो मामाहा मेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके मकान आलेजाक ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 12:30 नून। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री सुकी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान रॉयल रोड मिडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की उपयुक्त की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM। एवेन्यू बोजो बुआशेरी मुका में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हरिवंती गुलाम पैदाशी नाम फुली और जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे अविकाश सिंह गुलाम के मकान एवेन्यू बोजो बुआशेरी मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोस्टांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल शनिवार 10 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक रेजिडेंस लाक्विया और आसपास के इलाकों में रॉबर्ट स्कॉट, क्राउनलैंड रॉबर्ट स्कॉट, टी रोड्रिग और CW लाक्विया में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रविवार 11 अक्टूबर को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक पिटी राफ्रे और आसपास के इलाकों में मौसेश, हाई हुआ रेस्टोरेंट, मों मस्काल और काजा जुला में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
0: नवरात्रि के शुभ अवसर पर 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक इन इन मंदिरों में दुर्गा माँ की पूजा का आयोजन किया गया है। वाक्वा क्लेफों हिंदू प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, आशुतोष गीता मंदिर जुपों स्ट्रीट बोबासैन, श्री करुमारी आमन कोविल सैंक ऑपां कॉफोक्रो, नुवेल फ्रांस टाइल नाइगी कोविल, उमा शंकर मंदिर नुवेल फ्रांस, शिव मंदिर क्लेफों रोड नंबर 1 वाक्वा,

0: Providence, त्रिलोकीनाथ धर्म मंदिर एसोसिएशन। कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में शनिवार 10 अक्टूबर को दोपहर बाद के 1:30 बजे हिंदी स्पीकिंग यूनियन ओक्टावियो ऑडिटोरियम में हिंदी दिवस का आयोजन कर रहा है, जिसके अंतर्गत 2025 के एससी और हायर स्कूल सर्टिफिकेट 2025 परीक्षाओं के बेहतरीन हिंदी के 10 शेष छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। शनिवार 10 अक्टूबर को सुबह 9 से दिन की 12 बजे तक स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से फिनिक्स रोटरी क्लब फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन कर रहा है वाकवा म्यूनिसिपैलिटी टाउन हॉल में। शनिवार 10 अक्टूबर को लॉन्ग माउंटेन के हिंदी प्रचारिणी सभा द्वारा सुबह नौ से दिन के बारह बजे तक इन परीक्षा केंद्रों में छठी कक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं। महेश्वरनाथ गवर्नमेंट स्कूल थ्रियोले, पॉम्पलमूस गवर्नमेंट स्कूल पॉम्पलमूस, एम फुगवा गवर्नमेंट स्कूल लॉन्ग माउंटेन, डी हरी गवर्नमेंट स्कूल गुडलैंड्स, बी महादू गवर्नमेंट स्कूल रिविया जुरांपा, लुई नेलान गवर्नमेंट स्कूल कैथ्रबोन, यंग मेन्स गवर्नमेंट स्कूल रेमी ओलिये पोर्ट लुइस, एस बिसुंडोयाल गवर्नमेंट स्कूल लालमाटी, जुपेर गवर्नमेंट स्कूल मेबर्ग, सर एस बुलेल गवर्नमेंट स्कूल सेबास्टोपल, रेव्ड ई वॉल्टर गवर्नमेंट स्कूल कार्टे मिलिटेर, Rivière des Anguilles Government School, Rivière des Anguilles, Rosebel North Government School, Rosebel May, Grand Bois Government School, Grand Bois May, KK Aryan Vedic Morcellement Saint-André May, Ramnath Jita College, Central Flak May, Kyopip College, Kyopip May, Mauritius Arya Ravived Pracharini Sabha ke Tatwavdhan May, Vinoba Bhavan Shakhan Number 4, रविवार 11 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे सिया कॉन्स्टांस सैंपिया में यज्ञ का आयोजन कर रहा है। वेंकटेश्वरा देवालयम बेलवी मोगल की ओर से रविवार 11 अक्टूबर को शाम 5:00 बजे श्रीवरी कल्याणा महोत्सवम का आयोजन हो रहा है।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। सभी सुनने वालों को आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, शुक्रवार का दिन है और आज का दिन समर्पित है माँ भवानी को। और आपको पता है शुक्रवार का दिन बहुत ही पावन दिन होता है, उनकी पूजा अर्चना करने का, व्रत धारण करने का। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करने जा रही है चंद प्यारे प्यारे भक्ति गाना आपके लिए। शुरुआती दौर पर भगवान गणेश जी का हम नाम लेंगे।

चलिए श्रोताओ, भजले प्रभु का नाम को हम आगे बढ़ाएंगे। शुरुआती दौर में हमने कहा से आज जो है हम माँ भवानी को पूजते हैं, और आपको पता है कि हम यही संदेश पाते हैं कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भीतर से शक्ति भी जागती है। जीवन में कितनी भी कठिन राह क्यों ना हो, माँ का स्मरण मन को आशा और आत्मविश्वास देता है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, भजरे प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस पे ये कार्यक्रम जो है इसे हम आगे बढ़ाएंगे। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि माता भवानी शक्ति का वह स्वरूप है जो भय में साहस और निराशा में आशा जगाती है। जिस मन में माँ भवानी के प्रति श्रद्धा हो, वहाँ विश्वास की ज्योति कभी बुझती नहीं। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

जय जयकार हम कर रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं माँ भवानी जो है हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी सामर्थ्य में नहीं बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास में होती है। माँ का स्मरण मन को शांति देता है और जीवन की कठिन राहों पर आगे बढ़ने का हौसला देता है, है ना?

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम। हम आपसे यही कहेंगे, जब मन डगमगाए, माँ भवानी का नाम विश्वास की एक नई किरण बन सकता है। तो आइए, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है हम नवरात्रि जो है मनाने वाले हैं, और इसकी तैयारियाँ जो है सभी लोग कर रहे हैं। दुनिया भर में, मॉरिशस भर में हम बहुत ही धूमधाम के साथ नवरात्रि हम मनाते हैं। तो आइए, माँ दुर्गा की जो है उनकी महिमा हम सब पर बने रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बने रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। आपको हम कहेंगे।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर यह रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है, हमारा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत और नूर मुजस्सम रसूल खुदा हबीब किबरिया नबी रहमत शफाए मशर मालिक दो जहां खतमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप तमाम सामईन खैर आफियत से हैं। मजीद सामईन जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं, महफिल शब में आपका खैर मकदम है। मजीद ताखिर न करते हुए महफिल का आगाज़ करते हैं। इस कलाम के साथ मुलाहिजा फरमाइए।

ए मालिक दो जहां, ए खालिक कायनात, तेरी हम्द सना है। सबसे बड़ी इबादत तेरी रहमत के आगे। सब खताएं हैं माफ, तू ही कारसाज, तू ही है बेमिसाल। नाइब रसूल अल्लाह पीरान पीर, रोशन ज़मीर, कुतब रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, गौस समदानी, महबूब सुभानी, मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैह, एक बहुत जलील उल क़द्र आलिम बाअमल वली अल्लाह गुजरे हैं। यकीनन हर मुसलमान उनसे बड़ी अकीदत व इरादत रखता हैं और उनकी ज़ात व बाबरकत व बाकरामत के गोशे गोशे से वाकिफियत रखने की लगन रखते हैं। चुनांचे रबीउल सानी की 11वीं रातों के बाद भी उनको अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हैं।

घौस पर तो कदम नबी का हैं, उनके ज़ेर कदम वली सारे, हर वली ने सही पुकारा है। वाह क्या बात गौस आज़म की। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है, उर्दू नशरियात महफिल शब में रात के 9 बजे तक। मज़ीद सामीन, गौस पाक रहमतुल्लाही अलैह बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत और कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे। आप रहमतुल्लाही अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक ख़त्म करते रहे और रोज़ाना 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाते रहे। शामिल मोहतरम, नेक बंदों के दिल मोहब्बत इलाही और परहेजगारी से आबाद होते हैं। ये अपने दिलों से दुआ की मोहब्बत निकाल देते हैं। इनकी रूहें जिक्र इलाही के बग़ैर बेचैन व बेकरार रहती हैं, इसीलिए वो हर लम्हा याद इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। ये मकाम वज़ीज़ामीन इबादत और रियाजत में सख्त मेहनत करने से हासिल होता है। अल्लाह पाक हम सब को राह सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्कार, भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो स्वागत करते हैं जहाँ जहाँ हुई बजाओ जा पर हमने के साथ दिया जाए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मॉरिशस पर हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जहाँ हमने के यानी कि तोहर और हमर हमने के टीम के हमने के सब जनता लोग के कार्यक्रम और ये कार्यक्रम में तोहर स्वागत करते करते हमने के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा तोहर लोग के दिन बहुत अच्छा से गुजरल हो। आज सुख के सांझ बा, सुख के रात बा, शायद थोड़ा सा आराम करे के और मौका मिलल रही तोहर के पूरा सप्ताह तो लोग काम उम करके आज थोड़ा आराम करे के सकेला निश्चय कर ले हो जाए। शायद ना भी शायद कोई के काम अभी जारी हो तो जहाँ हो जाए जैसन सिचुएशन में हो जाए तोहर मनोरंजन करे खातिर हम सुरेखा चला रहे। हमी के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में स्वागत करते करते हमने इतना याद दिला दे इतना बता दिला जाता हूँ लोग के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव बा, कार्यक्रम में नहीं बल्कि कार्यक्रम में कांटेक्ट करके थोड़ा सा बदलाव बा। आज तो लोग टेलीफोने भी करिए जा 5025107005 पर और मिसाज भी है ये पर भेजा जा, जा। मिसाज भेजे खोजब या फिर टेलीफोने करे खोजब तो दोनों एक गो नंबर पर करिए जा। आज सैंक सैंक पर टेलीफोने भी करिए जा और मिसाज भी भेजा जा कहे कि आज हमने के थोड़ा सा बदलाव आने के पड़ल और उम्मीद करते हैं जा कि जल्दी जल्दी ये बदलाव खत्म हो जाए और हमने के सब कुछ सामान्य पर लौट आए। अरे चलो हमने प्रस्तुत करी जा हमने के पहला गाना और ये हमने के पहला गाना है सुमन रामतोहल जी के गावल सुमन के जलसा। चलो सुनी जा सुमन के जलसवा कैसे होएला, सुमन के गमटवा कैसे होएला और ये गीत सुनते सुनते तहलक के मिसाज भी पढ़ जा और तहलक के कॉल भी लेवा जा।

चले दोस्ती बढ़ाए ला जा, दोस्ती गाना सुनी ला जा। विजेश गणपत जी गाना मंगले गाना गईले होवन, मंगले तो हवन गीता जी कौफुको से, कौफुको से गीता जी गाना मंगले होवन अपन पिताजी खातिर, अपन माता जी खातिर और अपन भाई रोहन खातिर।

चला सुनी जाई तो संगीत सुन के ही समझ गए लजा रंभा राम तो हर जी के गावल गाना हर रंभा राम तो हर जी हमने के भोजपुरी दुनिया में खूब रोशनी दिले होवन रंभा राम तो हर जी और ये रंभा राम तो हर जी के गावली गाना हमने गायत्री जी खातिर मंगा बजवात है जान वेलफॉर्म से गायत्री जी गाना मंगले होवन अपन बेटा अजय खातिर अपन मामी कल्याणी मोहन जी खातिर और अपन बेटा अजय के साथ साथ मोतायलों के भाभी शकुंतला खातिर नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का ई तड़का तो बड़ा स्वाद होला लगता। इमें हम के श्रोता लोग के फरमाइश के तड़का लगता। बड़ी अच्छा छोंक बा, बड़ी अच्छा खुशबू बा, बड़ी अच्छा स्वाद भी महसूस हुआ था। भोजपुरी तड़का में चला बढ़ी जा हमने के अगला गाना बगल। और ये बहुत उम्दा गाना है, ज्ञानमयी पतलाल जी के गावल गाना है, महान कलाकार के गावल गाना है। आत्माराम जी मंगले हवन ये गाना। और ये गीत बेलिया से आत्माराम जी अपन बहन लोग के नाम करत हवन, ललिता जी के नाम, सुदेवी जी के नाम, छोटी जी, प्रभावती जी। और ये गाना पूरा इस्नू परिवार के नाम करत हवन, बेलिया के इस्नू परिवार के नाम करत हवन आत्माराम जी। तो चला सुनी जाए गाना हमने।

तो चला भोजपुरी तड़का में अभी कुछ सुनी जा हमनी संभावती दुमन जी के गावल गाना। ये गीत संभावती दुमन जी होला मंगले हवन थ्रियोले से ललिता कुशल जी। ललिता चाची गाना पन बहिन लो खातिर मंगले हवन। बहिन सुदेवी, देवीना, ज्ञानी, छोटी जी, प्रभावती जी, हरीश जी और आत्माराम जी खातिर और सुखलाल मौसी जी खातिर।

9:39 होल बाउरी हमनी बढ़ते बढ़ते चलत है जा हमनी के पूर्वज लोग की कहानी बगल हमनी के पूर्वज लोग के आगमन के बात चर्चा करब जा। विक्रम कुलाचन जी गए हमनी गीत हरी गाना मंगले हवन हर वैसा कलिते हमनी के श्रोता अबू जी वाकवा से गाना मंगले हवन आफेज खातिर असलम आया जायान जाहिरा खातिर काला चौथी खातिर और अपन संगतिया अपी खातिर और उनकर पत्नी खातिर।

पता चला अभी कुछ देखे जा हमने दुख भरी दास्तान रहेला जब तो भोजपुरी गीत कैसे ई दुख भरी दास्तान हम देखे सुनावेला कविता मंदिर जी के गावल गाना चला सुनी जा हमने और ई गाना हमने बजावत है जा गौगुप के सुनीता जी के पसंद पर गौगुप के सुनीता जी गाना अपन बहन विमाला खातिर मंगले हवन कुंगुमा के और ये अपन बहन अमृता और वीना खातिर मंगले हवन

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

बस चला अभी बढ़ा जा हमने गणपत सत्यनिसन जी के गावल गाना संगे और ये गाना मंगले हवन हमने से सुदेवी जी मंगले हवनी गीत त्रियोले के दीदी ललिता और कुशल परिवार खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मानेगा के पूरा राम रतन परिवार खातिर और ये गाना हमने के सब सुने वाला खातिर मंगले हवन

साजन के सड़िया चला सुरिजा सुनीता ननकूजी से। सुनीता ननकूजी के गावली गीत हमने बजा होता है जा साधना जी के फरमाइश पर का थो बोन से साधना जी गाना मंगले हुआ अपन बेटा अरविंद खातिर और अपन बेटी सुने।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का में चला सरिता बुद्धू जी के एल्बम के एगो गाना प्रस्तुत करब जा। उ गाना जन बहुत साल पहले से हमने सुनते आ रहे जा, और ई गाना साजिद जी मंगले हवन अपन बचपन याद करे खोजत हवन। बचपन में ई गाना खूब गैले रहलन, सुनले रहलन और एकर से खूब मस्ती करले रहलन। तो चला सुनी जा हमने ई गाना।

वैसे भी अभी पानी के जितना दुख पड़ल बा हमनी के चाहिए पानी पर बहुत ध्यान दे के पानी के जियान ना करे के। चला ई बात पर हमनी जरूर अमल करी जा। अभी संभावती दुमन जी के गावल और एक गाना हमनी सुना।

अभी हम प्रस्तुत करब तोहर खातिर एगो ललना और ई ललना पूर्णिमा फकीराज के गावल है। पूर्णिमा जी गाना अपन बेटा के जन्मदिन के अवसर पर बजवाए खोजत हवन। इंग्लैंड में हवन उनकर बेटा प्रवेश, उनकर जन्मदिन बाज और जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन पूर्णिमा जी उनकरा। और प्रवेश जी के जन्मदिन के शुभकामना उनकर पत्नी कुष्मा उदीन भी देवत हवन उनकरा। और उनकर माता जी के संगे संगे उनकर पिताजी लाला, बहिन हवन पूनम, पिंकी, प्रवीणी, पूजा और फकीरा परिवार, कल्याचेती परिवार, दसोई परिवार, देवी दयाल परिवार फ्लाक के। और यही गाना पूर्णिमा जी मंगले हवन SSON के अपन सब संगतियालो के नाम, सब जितना कोई रात के काम करते हवन जा उन सब कोई के नाम।

और अब चला हमने जलसा के रात पर तनी ध्यान दे ला जा। आज सुख के रात है, काफ़ी जगह पर जलसा के रात है आज के सुख के रात, तो चला यही जलसा के रात में हमने भी शामिल हो जाए ला जा। ये गाना हमने राजन लक्ष्मण जी के पसंद पर बजावत है जा, और ये राजन लक्ष्मण जी गाना मंगले हवन सृष्टि तुलसी खातिर, फिर अपन पत्नी जी खातिर, बेटी प्रार्थना और प्रगति खातिर, और ये अपन बहन खातिर यूनियन पॉप के, और अपन भगिनी खातिर। तो चला ये गाना हमने कुणाल हीरी लाल के गावल प्रस्तुत करते जा राजन लक्ष्मण जी के पसंद पर।

गाना हमने सुनीता नंद को जी के गावल सुना था जा विश्वानी दुमन जी के पसंद पर विश्वानी दुमन जी गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर अपन बहिन शारदा और इंदिरा खातिर अपन सखी नीला और प्रतिभा खातिर शोभा जी खातिर और गीता गजाधर जी खातिर

रात्रि के स्वागत में हम तैयारी करते हैं जाओ री तैयारी माता दुर्गा के स्वागत के कल्याणी जी भी करत हवन वाशेगी से कल्याणी जी मंगले हवन दुर्गा माता के गो गाना और ये गाना बिस्वानी दीपुआ जी के गावल चला सुनी जा ये गाना कल्याण जी मंगले हवन गीता राधे किशन खातिर बड़की मुनोवा खातिर संगीता बीका फूलो विकास राम के रावण खातिर

दुर्गा माँ की कृपा बनले रही हमनी के सब कोई के सिर पर, हमनी के सब श्रोता लोग के सिर पर। कोनो भी गलती, कोनो भी त्रुटि, कोनो भी बाधा आए, दुर्गा माँ हमनी के बाधा अवश्य दूर कर दी है।

हमने के गीत में शायद कोनो खराबी नजर आवता, ये गाना हमने नहीं चला सकते हैं, जा हर घड़ी रुक जाता चला। उम्मीद करते थे जा अभी कुछ फिर से एगो कोशिश करी जा फिर से चलाई ला जा चल जाए तो दुर्गा माँ की कृपा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में भक्ति गीत के फरमाइश तभी थोड़ा घड़ी आगे कल्याणी जी कर लेन अभी कुछ अनीता जी भी एगो भक्ति गीत के फरमाइश कर ले हवन अफ्रीकों फ्लाग के अनीता जी मंगले हवन गाना बहल गौरी जी के गावल उनकर भाई के संगे संगे उनकर आवाज़ मिलल मिलल ही गाना है और ये गाना हमने बजवाएला जा अनीता जी बगल से उनकर संगति आलोक खातिर और उनकर पूरा परिवार खातिर।

अब प्रेमीला जी के संदेश के बगल बढ़ब जा। प्रेमीला जी गाना मंगले हवन गीता गजाधर जी के गावल माँ बाप के मोल और प्रेमीला जी का तो बोन से गाना मंगले हवन एक संदेश देवे भी दिले हवन संगी पितृपक्ष के माहौल बा। और पितृपक्ष में हमने अपन पूर्वज लोग के अपन दादा दादी लोग के अर्पण उन लोग के पानी अर्पण करी ला जा और कई तरह के विधि विधान भी करी ला जा। बस प्रेमीला जी के यही संदेश बा कि पूर्वज लोग के तना ही भुलाब जा अपन दादा दादी के तना ही भुलाब जा। हमने के माता पिता जो अभी हमने के संगे हवन जा अभी हमने के इर्द गिर्द हवन सा हमने के बीच में हवन जा उनकर आप बहुत अपनापन देवे के उनकर ख्याल रखे के और उनकर महत्व उनकर महसूस कराए के ताकि उनकर मन खुश रही और हमने के मन में उनकर आशीर्वाद के जरिए बहुत सुख शांति बनल रही। सब परिवार में माता पिता के बड़ा जन लोग के बहुत आदर हो ये उम्मीद के साथ प्रेमीला जी गाना मंगले हवन। ये गाना अपन बेटी विद्या खातिर अपन दामाद प्रवेश खातिर मंगले हवन और ये निर्वाण और विहान उनकर दुकान नाती खातिर मंगले हवन बहुत प्यार से बहुत दुलार के साथ। और ये गाना देवनारायण परिवार और बिसेसर परिवार के नाम कर लेवन प्रेमीला जी।

चल सुनिजा पिति पिति छोकरी और शहर के छोकरी दोनों गाना के मिलन ना ये गाना हम सुनब जा सुदेश बोझू जी के गावल और जहाँ हो बजा ये गाना सुन के कर एक इंजॉय तो कर बही जा ये गाना में जितना तरह के कॉमेडी बात पर जरूर ध्यान दिया जा। चले ये गाना हमने बजवावत हैं जा उर्मिला जी के पसंद पर। उर्मिला जी रहे लन गौ गोब। ये गाना मंगल हवन पूरा परिवार खातिर।

अब सुने थे जहाँ हमने सुखदेव राम खिलावन जी के गाँव वाल गाना यही गाना रही हमने के अंतिम गीत हमने के आज के कार्यक्रम के और चटनी चटनी रानी गाना हमने सुनते सुनते समाप्त करब जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के तो लोग भाग लेला जाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी प्यार से हमने के कार्यक्रम में भाग लेला जा बहुत बहुत धन्यवाद आओ थला फिर मिलब जाए गो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लेके तब तक खातिर शुभरात्रि नमस्ते।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। शुक्रवार की रात है, हफ्ते भर की भागदौड़ी के बाद अब जरा ठहरने का वक्त है। मैं हूं नीलमणि और आज की रात हम चलेंगे यादों की उन गलियों में जहां 60s, 70s और 80s के नगमे आज भी उतने ही जवां हैं।

0: क्या खूबसूरत नगमा था। कुछ आवाजें वक्त के साथ दूर नहीं होती है बल्कि और करीब आ जाती है। आपके पास भी जरूर कोई ऐसा गीत होगा जिसे सुनते ही दिल कहता है ये तो मेरे जमाने का है।
1: हुरिया, हुरिया, हुरिया, हुरिया, हुरिया।

फ्राइडे की रात और मोहब्बत के गीत, इससे बेहतर संगम और क्या हो सकता है। चाहे मोहब्बत मिली हो, अधूरी रही हो या सिर्फ ख्वाबों में बसी हो, एक अच्छा गीत हर एहसास को अल्फाज दे देता है।

बेटी ये भारत है या रोम? मंगल, बुध, जुमेरात,

just occurred to me. It's all down. Oh, down. Hey. और प्रेम कर्नाटक होता है उस घर को बस राम बचाए घर का

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो,
1: नहीं जी
0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
2: आई डोंट नो,
0: यू
1: मैं क्या बोलू जी,
0: यू टेल मी
2: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी
1: मैं क्या बोलू जी।
0: ओ बाप
2: अल्लाह,
0: ओ दादाजी जी
1: मेरी बात तो
0: बेटे,
1: ओ बाप
0: पिताजी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो
1: बेटे, मेरी बात तो सुनो,
0: पिताजी मेरी बात तो सुनिए।
2: इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला कल अदालत में होगा।
3: एक पल के लिए आज की दुनिया को भूल जाइए, ना नोटिफिकेशंस, ना मैसेजेस, ना भागा दौड़ी। बस आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपको 70s या 80s की एक शाम जीने का मौका मिले तो किसके साथ होगी और कौन सा गीत चल रहा होगा।

जो मेरा बहता। लोतन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

वैसे 60s के गीतों की बात ही निराली थी, सादगी सुर और अल्फाजों का ऐसा मेल कि आज भी दिल को छू जाए। चलिए उसी खूबसूरत दौर का एक और नगमा सुनते हैं आपके ही सुनहरे पल में।

दिन में हम अक्सर दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन रात हमें अपने लिए थोड़ा वक्त देती है। तो आज रात किसी पुराने गीत के साथ बैठिए, हो सकता है आपको अपने ही दिल की कोई पुरानी बात याद आ जाए। तो इसी के साथ मैं नर्मनी आपसे इजाजत लेती हूँ। शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस।
1: आज 19 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
1: आज 19 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो

0: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके साथ वेस्ट 98.3 रेडियो
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो
0: सेंटर
2: 95.5
0: नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.3
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

आपके संग एनबीसी रेडियो। आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एनबीसी रेडियो।

किसी को बुलाए, फिर जान पहचान हो, फिर जीना आसान हो।

जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी।
1: चुप चुप देखा देखी नजर दीवानी,
0: जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो।

0: अजनबी हसीना से घूम लगा हो गई।
1: खूबसूरत
0: बातें।